सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5 बजकर

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव

0: ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वृंदावन का मनमोहन कान्हा, नंद गोपाल, यशोदानंदन, वहाँ की परम भक्त ब्रज गोपी जनों के मन में हर समय रहते हैं, परंतु ब्रज गोपिकाओं को नेत्र बंद कर उनका दर्शन करना नहीं सुहाता। वो तो वहीं चल देती हैं जहाँ कन्हैया की बांसुरी बजती है।

हे परमपिता, मैं आपका दास इस संसार में आकर सत्कर्मों को छोड़ बस भ्रम के माया जाल में ही उलझ गया। अब जरा के कारण व्यथित हूँ, मुझे अपनी शरण लेकर मेरे भय का नाश कीजिए।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संपूर्ण जीवन प्रेरणाप्रद है। जब वे अवधराज होकर भी जंगल के राजा गुह को गले लगाते हैं तो समस्त नगरवासी श्री राम जय जय राम गा उठते हैं।

0: आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जो भक्ति रचनाएं सुनी उन्हें स्वर दिया हरिओम शरण जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, राजेंद्र काचरू, और ये देशभक्ति परक रचना आपने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से पाठ। आलेख और वाचन दामोदर शास्त्री का है।
1: तपस्वी अकोधनो होती अनुपनाही, तपस्वी अनुसुकी होती अमच्छरी। सच्चा तपस्वी क्रोध और वैर से रहित होता है। जो तपस्वी सच्चा होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से मात्सर्य नहीं रखता। अत्त दीपा भिक्खवे विहरथ अत्त सरणा अनन्य सरणा, यम अकुशलम तम अभिनिवेज्ये यासि, यम अकुशलम तम समादाय वत्ते यासि, इदम खोतात तम अरियम चक्कवत्तिवतम। हे भिक्षुओं, आत्मदीप होकर, स्वयं प्रकाश होकर और आत्मशरण होकर यानी स्वावलंबी होकर विहार करो। किसी दूसरों के भरोसे मत रहो। जो बुराई है उसका त्याग करो और जो भलाई है उसे स्वीकार करो। यही सबसे श्रेष्ठ आर्य व्रत है। अधनानं धने अननुपदीयमाने दालिद्रयं वेपुल्लमगमासी, दालिद्रये वेपुल्लं गते अदिन्नादानं वेपुल्लमगमासी। निर्धनों को धन न दिए जाने से दरिद्रता बहुत बढ़ गई, और दरिद्रता के बढ़ जाने से चोरी बहुत बढ़ गई। धम्मो वसेठो जने तस्मि दिठ्ये चेव धम्मे अभिसंपरायंच। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस जन्म में भी और परलोक में भी वह हमारा हितकारी है। पाणातिपातो अदिन्नादानं मुसावादो च उच्यति, परदार गमनं चेव न प्रशंसन्ति पंडिताः। जीव हिंसा, चोरी, झूठ और परस्त्री गमन, ये सब कुत्सित कर्म हैं। इन कर्मों की पंडित लोग कभी प्रशंसा नहीं करते। छन्दागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति, दोषागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति, मोहागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति, भयागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति। मनुष्य पाप कर्म जो करता है वो राग के वश होकर करता है, द्वेष के वश होकर करता है, मोह के वशीभूत होकर करता है और भय के वशीभूत होकर करता है। छंदा दोषा भया मोहा यो धम्मं नातिवत्तति, आपूरति यसो तस्य सुखपक्खे वचन्दिमा। जो व्यक्ति राग को, द्वेष को, भय को और मोह को छोड़कर धर्म का पालन करता है, धर्म का अतिक्रमण नहीं करता, उसकी कीर्ति उसी प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें। जूतप्रमादत्थानानियोगो भोगानम अपा

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरितमानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज शाम 7:30 से आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स लंदन से मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। इस दौरान आप हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए सुन सकेंगे। सांध्यकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10 बजे से। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें। अदरक की खेती, इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। प्रातः 7 बजे का समय होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। जी हां, इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं हमारे कुछ पुरानी फिल्में गीतों को। प्रातः 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का।

का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। आज हमारे श्रोता सुन सकेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने ही पसंद के फरमाइशी लोकगीतों को। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 से और प्रातः 9 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ भजन। गायिका होंगी श्रद्धा व्यास। सामयिक चर्चा का प्रसारण होगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रातः 9:15 से। कार्यक्रम आबोहवा प्रातः 9:25 पर आप सुन सकेंगे। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा मानसिक एवं वैचारिक प्रदूषण। आलेख और वाचन हुकुम चंद जैन का होगा। कार्यक्रम बाल गोपाल आपको सुनवाएंगे प्रातः 9:30 से। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी वन महोत्सव पेड़ों से दोस्ती करें और जानकारी प्राप्त कीजिएगा पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। इसी कार्यक्रम में बच्चों को सुनवाई जाएगी वार्ता।

वार्ता का विषय रहेगा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान। और इसी कार्यक्रम में आप सुनते हैं बच्चों के मुख से कविता, कहानी, चुटकुले और पहेलियां भी। प्रातः 10 बजे आपको सुनवाएंगे पत्रिका कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। इस कार्यक्रम में आज के प्रमुख आकर्षण होंगे साहित्यिक चर्चा, समकालीन हिंदी साहित्य में प्रकृति और पर्यावरण चेतना, वन महोत्सव के संदर्भ में सुनिएगा रजनीकांत मित्तल, प्रभागीय निरीक्षक सामाजिक वानिकी विभाग मथुरा से एक बातचीत। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे वार्ता जिसका विषय रहेगा प्रकृति, पर्यावरण और हिंदी साहित्य, हरित चेतना की परंपरा। वन महोत्सव और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सुनिएगा ये वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजनाथ। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे ऋतु नागर का काव्य पाठ और सुनिएगा साहित्यिक समसामयिक गतिविधियां। इस कार्यक्रम में आलेख, स्वर और प्रस्तुति सहयोग होगा चंद्रिका कुमार का, संयोजन और प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की होगी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 बजे से और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर आएंगे दिन में 11:30 से। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। आज के कलाकार होंगे ब्रजलाल नागर और इस मास का गीत आपको सुनवाएंगे 1:10 से। दोपहर 1:15 का समय होगा धर्मवीर अज्ञानी की लिखी हुई झलकी, भूत का इलाज आप सुन सकेंगे, प्रस्तुति होगी हरीश त्रिहन की। श्रोताओं का प्रिय कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 1:30 से। कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 से। हमारी पहली सभा का समापन होगा दोपहर 3 बजे। सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ आज की बात का क्रम रहेगा और आप सुन सकेंगे एक नाटिका घर परिवार, प्रस्तुति होगी एसपी सिंह की, प्रस्तुति आलेख होगा एसपी सिंह का और प्रस्तुति होगी राजेश सिंह की। संध्या 6:15 पर सुनेगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण जिसमें चर्चा होगी खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और पर्यावरण का संबंध, इस विषय पर चर्चा का क्रम जारी रहेगा। और मन भावन कार्यक्रम भी आप सुन सकेंगे आज के ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में। संध्या वंदन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 6:45 पर और 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य मकरंद। आज के कवि होंगे अटल राम चतुर्वेदी। शाम सुहानी कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 7:31 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 8:30 से। सुहाने तराने आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर और हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप।

0: संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। अदरक की खेती, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, अदरक की बुवाई करके उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे तो किसान भाइयों को इसकी बुवाई जून के महीने तक संपन्न कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो किसान भाई अभी तक अदरक की बुवाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस कार्य को संपादित कर लें। इसके लिए जो किस्में हैं उसमें बायनाइड लोकल जो किस्म है, सौंठ तैयार करने के लिए अच्छी किस्म है, मारन एक किस्म है, केरल से विकसित की गई किस्म है। इसके अतिरिक्त बायनाइड मेनन भी एक अच्छी किस्म है अदरक के लिए। जहां तक इसकी खेती का सवाल है, भूमि का सवाल है, तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन ध्यान ये रखना है वहां पर उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। बुवाई जो की जाती है, कंदों की बुवाई की जाती है और करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 से 20 क्विंटल कंद लग जाते हैं। कंद बुवाई के लिए स्वस्थ होने चाहिए, 2-3 गांठों वाले होने चाहिए। कंद को बोने से पहले उसको उपचारित किया जाता है और उपचारित करने के लिए 2 ग्राम बेविस्टीन प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटे कंदों को डुबो करके रखा जाता है। और जब कंद अंकुरित गांठों वाले कंद जिनका वजन करीब 20 से 25 ग्राम हो उसको बुवाई के काम में लाया जाता है और इसमें बुवाई 25x25 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। कंद को करीब 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है और बोने के बाद पत्तियों से इसको ढक देते हैं जिससे कि शीघ्र ही इसमें अंकुरण निकल आए। जहां तक खाद और उर्वरक देने का सवाल है तो 200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय ही दे देनी चाहिए और साथ ही 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास के साथ 30 किलोग्राम नत्रजन का भी प्रति हेक्टेयर देना जरूरी है। तो ये बात रही खेत की तैयारी की। जब आप कंदों को बो देंगे और बुवाई के करीब 30 दिन बाद आपको करीब 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना होगा और बुवाई के 60 दिन बाद भी 30 किलोग्राम नत्रजन ही आपको देना होगा। मिट्टी चढ़ाना भी बहुत जरूरी है, 3 से 4 माह बाद इसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
3: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्यनिर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000 वर्षान्तं यावत् भारते पञ्च सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि।

0: भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीयतन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य विंशतिदिनाङ्कादगस्तमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 7 बजे हैं।

प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत चितलकर की आवाज में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अलबेला से। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत है सी रामचंद्र का।

बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत बाहरी किस्मत, किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे।

हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी

0: पतिता फिल्म का ये गीत आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में। इस गीत को रचा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में और आइए सुनते हैं दास्तान फिल्म का ये गीत सुरैया और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है नौशाद का।

बात एक रात की, इस फिल्म का ये गीत सुनिए हेमंत कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है एस डी बर्मन का।

बात एक रात की। इस फिल्म के हेमंत कुमार के गाए हुए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन

0: एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली और कल 1 पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। ये परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी

0: आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
1: विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई सम्पन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट, आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंद

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुनबे बारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैयाओं आप सबन को खूब खूब स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में ब्रज माधुरी में। और आज रविवार को दिना है तो आप अपने पसंद के फरमाइशन के लोकगीतन को सुनोगे हमारे कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी में। लगातार हमें संदेश प्राप्त हो रहे हैं और भैयाओं ये जो समय है, जो चौमासा को समय है, सब जुड़ के बैठ जाए हैं और झूला कजरी मल्हार ये सब भावे हैं मन को। और हरियाली की बात करें तो बिना हरियाली के जो झूला चौमासा की बात अधूरी सी लगे है। और झूला चौमासा मल्हार कजरी बरखा खेतन की बात होए और हरियाली की बात ना हो तो फिर हरियाली शब्द कोई कहाँ मतलब रह जाए है। और हरियाली होए है तो जाके लगे है कि इन सब की बातें हुए हैं, हरियाली होए है तो मयूरा नाचे है, मयूरा नाचे है तो फिर ये समझ में आवे कि मयूरा नाचे कहाँ जब बन्नाए होए तो जाको मतलब यही समझ में आवे कि जे सब एक दूसरे के पर्याय हैं और जे सबरे पर्याय हरियाली और बन से जुड़े भए हैं। तो अगर मन मयूरा नाचे है तो जो कि मतलब कि हम हरियाली में रहें, वन में आनंदित होएं, तब जाके प्रसन्नता होएगी। तो भैया वन संभव तब हैं जब हम अपने लगातार प्रयासन ते विन को संरक्षण करें। और संरक्षण तब करेंगे जब मन में दृढ़ संकल्प होएगो हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हरियाली वातावरण वन को प्रदेश धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हो। तो वाके प्रति अपने मन में नेक दृढ़ संकल्प जगावें जब वर्षा के मौसम में चौमासा के समय में एक एक वृक्ष का रूप दें भैया। तो ये वन महोत्सव को जो समय चल रहा है ना जुलाई के पहले सप्ताह में वाको सार्थकता है जाएगी। तो प्रयास तो जरूर करो कि अपने साधारण से अपने विशेष से जिस समय आपको समय मिले अपने जीवन से वासे में जाके एक सुंदर सो पौधारोपण करो। और बाकी बाद भूल मत जाओ पौधारोपण के बाद में वाको ख्याल खबर रखो भाई कि आपके लगाए भाई पौध की बढ़वार कहाँ तक भाई। वाए कोई गैया तो ना छवाए गई, वाए कोई रौन तो ना गयो। नेक जैसे अपने बालकन के संरक्षण करें हैं वैसे ही जिन पेड़ पौधान को हम लगावें विन के प्रति प्रेम मन में होना चाहिए, तभी तो जाके वो छोटो सा पौधा वृक्ष बन पाएगा। और भैया अब हमारे वृक्ष से वापस आ जाएं अपने जा कार्यक्रम की तरफ। और कार्यक्रम में लगातार संदेश आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं भैया। और बात तो मैंने निकलते निकलते निकल गई, अब बाय रोकें और सबसे पहले पढ़ें आपके जा पत्र को जो संदेश आए गए है वह संदेश को पढ़े हैं जी। पहलो संदेश आयो कार्यक्रम में अमलता समरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश के श्रोतान को जे संदेशो है योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेम भाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय और श्रीमती ललता भाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल ते, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता शमनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, ग्राम पोस्ट बाया तहसील रीटा, जिला सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े भए हैं हमारे श्रोता अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय, कोशाबाई भारतीय और इनके सगरे संगी साथी जिनके संगे संग एक और संदेश ले हुए हैं जी हैं भोली, मनीष, कान्हा, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, प्रीति।

पिंकी, यादराम, वीरेंद्र कुमार, ओमवती, सावित और इनके सगरे संगी साथी जिन्हें ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सवरे, इनको संदेश आयो है ग्राम उस पार ते। हमारे अगले श्रोता को संदेश पढ़े हैं शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी प्रजापति, पुरंजय प्रताप प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और समस्त परिवारी जन संदेशे को लिखे बारे हमारे जे श्रोता हते। और छत्रपति संभाजी नगर पार्थ रेडियो क्लब के हमारे जे श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और जे संदेशा आए गए है हिमांशी, आरना, क्रियांश, पवन और समस्त परिवार संदेशों लिख रहे हो है मंडी रामदास मथुरा ते। हमारे जे श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान ते, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और समस्त इनके परिवारी जन। तो आओ सुने हैं इन सब श्रोतान के पसंद पर संवेद स्वर में जा लोकगीत को।

आटा के ऊपर घटा चढ़ई, अब ये आपने सुनो जा लोकगीत को संवेद स्वर में, और पढ़े हैं आपके संदेश को। अगलो संदेश हम ले रहे हैं प्रदीप भैया बिरला नगर ग्वालियर से, इन्होंने संदेश भेजो है। और जी हमारे श्रोता हैं पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जे श्रोता हमारे जुड़ गए हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन और इनके सगरे संगी साथी। जे हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद मुरली वर्मा। और जे श्रोता जुड़ गए हैं बुलंदशहर मोहल्ला चौंखुटी से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सबरे सदस्य। जे श्रोता हैं भूड़ चौराहा बुलंदशहर से, पंकज सिंह, चंचल सिंह, राशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह और एम एस अब्बासी, यमुनापुरम बुलंदशहर से, धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा सोलंकी, शौर्या और मून सोलंकी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा को जिस संदेश मिलो। और नरगुड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोता जुड़ गए हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सबको सुनवावे हैं सावित्री देवी की गायब है जा लोकगीत को।

सावित्री दीक्षित के सुर में अभी आपने सुना ओझा लोकगीत को और पढ़े हैं आपके संदेशन को। अगले संदेश के ताई जे हमारे श्रोता जुड़े हमारे संग। जसवंत नगर जिला अटाबा से गोकर्ण सिंह, दिव्या नैतिक, संगीता हाथर से विपिन कुमार, प्रीति कुमारी युवान और विहान। जे संदेश आयो है राजू लवानिया, पंकज कुमार, अर्पण जी, खीम जी, पंचम लाल चतुर्वेदी, खंडौली आगरा ते और मथुरा आकाशवाणी को नमस्कार करते हुए जे सभी श्रोता जुड़ गए हैं हमारे जा कार्यक्रम में, आप सभी को नमस्कार। और जे हमारे श्रोता हैं विष्णुपुरी मथुरा ते, श्याम सुंदर गौतम, गिरधर गोपाल गौतम, कृष्णा गौतम, यामिनी गौतम, माधवी गौतम, दुर्गेश गौतम और संग ही संग एक और संदेशो मिल चुको है चौक बाजार गली रामपाल ते रीता राजन अग्रवाल को। और जे श्रोता हैं बघेल श्रोता संघ के सबरे संगी साथी हैं नगला देवी सिंह सेमरी से, लाला बघेल, बल्लो रघु, भूला रमेश, हरि सिंह, दुर्गेश बघेल और समस्त परिवारी जन इनके संग जुड़े भए हैं हमारे श्रोता। ग्राम फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और इनके संगी साथी। दतरेंगी ते भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवारी जन। जे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र ते विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार, कुमकुम गुड़िया और प्रमोद कुमार, ये हैं हमारे श्रोता। खुर्जा उत्तर प्रदेश ते तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और सगरे इनके संगी साथी। जे श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ते और जे हमारे श्रोता हैं सादाबाद जिला हाथरस ते मुरारी लाल प्रजापति, राजकुमारी देवी, जितेंद्र कुकू प्रजापति, भूपेंद्र कुमार, निशा प्रजापति, आयुष प्रिया प्रजापति और इनको समस्त परिवार। तो आओ सुने हैं आप सबकी पसंद पे मीरा दीक्षित के गायब है जा लोकगीत को।

अब नाए पहरूं चमक नो जोड़। अब भाई आपने जा लोकगीत को सुनो मीरा दीक्षित के स्वर में, और अगले लोकगीत को सुनवावे के ताई फरमाइश लगातार आ रही है। और जे हमारे श्रोता हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, छोटा भांजा, बड़ा भांजा, इनकी दीदी अंश, मोहिनी, गोलू, नीरज, करण, काजल, भारतीय, आरती, बाबू, ये समस्त बुंदेलखंड निवासी छतरपुर से जो संदेश भेज रहे हैं। और जे संदेश है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा को, जे हमारे श्रोता हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के श्रोता रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन, हमें लगे जय संदेश को जे दोबारा भेज रहे हैं। और जे हमारे संदेश भेजे बारे श्रोता हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब ते, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मैं खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल और संजीव कुमार जिंदल, जिनके संग जी हमारे श्रोता हैं यादव बंधु बस स्टैंड लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड ते, राजेश यादव। और जी श्रोता हैं डोंगरगढ़ गांव राजनंद गांव छत्तीसगढ़ ते, राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबीये। और जे भैयाओं जे श्रोता कुछ हमारे जो बार बार धन्यवाद ज्ञापित करें ना बाकी चक्कर में, और जो श्रोता उनके नाम पीछे रह जाएं, तो कृपा करके अपने गीत को सुनने के बाद आनंद लो आप सभी। और जी हमारे श्रोता हैं उमा शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौली प्याऊ मथुरा ते, जे श्रोता जुड़ गए हैं ग्राम नगला पोला ते, धनी राम, भूरी, जानू, नमन, रमेश, पत्तो वाला, छोटू, छोटे और इनके सगरे संगी साथी। और अगले श्रोता हमारे जो जुड़े हैं वो हैं जे, तो इन्होंने तुरंत अपनो नाम, अच्छा चलो जे हैं हमारे भैया मुताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर रतनमाला और इनके सगरे संगी साथी। तो अब आपको सुनवावे हैं दीक्षा गुप्ता के स्वर में जा लोकगीत को।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी को समय तो समापन की ओर है, लेकिन अपने सभी श्रोतान से जे निवेदन जरूर करेंगे हाथ जोड़ के कि आप सभी मिलजुल के वृक्षारोपण करके अपने पर्यावरण और अपने आसपास की जो आपके ग्राम हैं, आपके नगर हैं, विन को अच्छे नागरिक है वे को जो प्रयास है वो आप जरूर करिए वृक्षारोपण करके। और अब कार्यक्रम की समय सीमा तो है गई समाप्त, तो आपसे करें हैं हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे

0: सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में

0: भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी

0: बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना। 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा। ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: Udaan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui hai. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ऑल्सो सेड दैट द लॉन्च ऑफ द विकसित उड़ान स्कीम विल मार्क द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज रीजनल कनेक्टिविटी जर्नी। मिस्टर नायडू सेड द स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विद एन आउटले ऑफ ओवर 28,840

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम गीतांजलि का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाज में, फिल्म प्यार किए जा से। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

प्यार किए जा इस फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं संगम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए इस गीत को आपने सुना फिल्म संगम से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनुराग से।

इसका द्वारा हम बच्चों को ही नहीं बड़ों को शिक्षित व गरीब लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं तथा इससे फैलने वाली भयंकर बीमारियों व संक्रमण के बारे में हमें बताना होगा, जिससे वे इससे सबक लेकर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकें। इसके साथ साथ शिक्षा का व्यवस्था ऐसी हो जिसमें पाठ्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्रदान की जाए तथा उसको रोकने के उपाय भी बताए जाएं। समाज में समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित रैलियां निकाली जाएं, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हों तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन तथा एनजीओ द्वारा लोगों को पर्यावरण प्रदूषण व उससे होने वाले प्रभावों के बारे में बताया जाए तथा उनको रोकने के लिए उपाय भी बताए जाएं। इसके साथ साथ समय समय पर सरकार तथा समाज के जागरूक संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण प्रदूषण पर लेख व विचार लिखवाने चाहिए, जिससे लोग उनको पढ़कर जागरूक हो सकें। हमारे द्वारा समय समय पर बड़े बुजुर्गों युवाओं द्वारा छोटे बच्चों के साथ पर्यावरण प्रदूषण आदि पर चर्चा होनी चाहिए तथा उन्हें पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाने चाहिए, जैसे पॉलीथीन का प्रयोग न करना, खुले में शौच आदि न करना, पॉलीथीन आदि जलाना व पेड़ पौधों आदि को नष्ट न करना आदि। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाना तथा एक वृक्ष को कटने से अवश्य रोकना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण को रोकने के लिए हरे बड़े पेड़ पौधों को लगाने और बचाने से पर्यावरण शुद्ध होता है तथा प्रदूषण को कम होता है। हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक घर में थोड़ी बहुत फुलवाड़ी होनी चाहिए, जिससे हम घर का वातावरण शुद्ध रहता है तथा पर्यावरण संरक्षण होता है। इसके साथ साथ हमें अपने घर के आसपास हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा परिवार व मोहल्ले के बड़े व सेवानिवृत्त लोगों को एक संगठन बनाकर पर्यावरण प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहने चाहिए, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सरकार द्वारा इस पर पूर्ण व प्रभावी रोक लगाए जाने चाहिए। हमारा समय समय पर अपना प्रयास होना चाहिए कि जो लोग घरों में अथवा हमारे आसपास व सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाएं, उन्हें तुरंत ऐसा करने से रोकना चाहिए तथा इससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए तथा समय समय पर उनको प्रदूषण स्तर मानकों के अनुसार चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हरे वृक्षों को काटता है अथवा नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर अथवा वन विभाग को सूचित करना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। समय समय पर हमें जिला प्रशासन तथा पर्यावरण द्वारा अनेक जागरूक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम शहर व गांव दोनों स्तरों पर निरंतर चलते रहने चाहिए। इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए तथा समय समय पर साफ सफाई करनी चाहिए तथा गंदगी फैलाने वाले लोगों को भी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागृत करना चाहिए। समय समय पर हमारे द्वारा पर्यावरण प्रदूषण संबंधी चार्ट, चित्र, बैनर, पोस्टर आदि बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने चाहिए, जिससे लोग उनसे प्रभावित हो सकें। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास पार्क, गली आदि में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नियमित रूप से उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कभी किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर तुरंत अवसर मिलने पर शुरू कर देना चाहिए। इसमें हमें शर्म व हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस सबसे दूसरे लोगों को भी आपसे प्रेरणा लेकर पर्यावरण प्रदूषण के महत्व को समझ सकेंगे। हमें अपने घर तथा आसपास के कूड़े कचरे को सड़कों तथा नालियों आदि में नहीं फेंकना चाहिए, उसको उसके समुचित स्थान पर डालना चाहिए तथा यथासंभव कूड़ेदान व गड्ढों आदि में दबा देना चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों को, खास करके बड़े वाहनों को, व्यस्तम भीड़ वाले स्थानों पर बहुत आवश्यकता होने पर ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि इससे बहुत बड़ा जाम लग जाता है और घंटों अनेकों गाड़ियों से काला गहरा जहरीला धुआं निकलता रहता है, जो कि हमारे और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण को

0: रोकने के लिए हमें नदियों आदियों में पूजा पाठ की सामग्री, धार्मिक किताबों, मूर्ति आदि को नहीं डालना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमारा अपना प्रयास हो, यदि हम रिहायशी क्षेत्रों में कल कारखाने, फैक्ट्रियां स्थापित हों तो उन्हें शासन प्रशासन को अवगत कराकर शहर से दूर स्थापित कराना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला जहरीला व काला धुआं, रासायनिक गंदा पानी नदियों व नालियों में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यदि हम इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखें तथा खुद व दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें तो निश्चय ही हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अहम योगदान साबित होगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास कभी कभी बड़ी चेतना बन जाते हैं और यही प्रयास समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। उन लोगों के लिए जो विकराल समस्या को महत्व नहीं देते, हमारा अपना विश्वास है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और थोड़ी सी मेहनत व जागरूकता निश्चय ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक उत्तम व स्वच्छ पर्यावरण दे सकेंगे। कहा जाता है कि जिस देश की युवा पीढ़ी जिस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लेती है, निश्चय ही उस ओर से परिणाम सुखद व संतुष्टिपूर्ण आते हैं। इसलिए यदि हम लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें कि वह प्रकृति से प्रेम करें, उसके महत्व को स्वीकारें तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो, तो वह दूसरे लोगों को भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो निश्चय ही वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण रूपी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और निश्चय ही हम एक साफ स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना कर सकेंगे।
1: बच्चों, अभी अभी आपने वार्ता सुनी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान। वार्ता का अर्थ है दीन बंधु समाद्य। और बच्चों, इसी बात के साथ अब हम आपको सुना देते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, शरारत नहीं करते, बस अच्छी अच्छी बातें करते हैं।

तो चलिए बच्चों, आपने गीत भी सुन लिया है और अब समय हो गया है पता बताने का, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है टिक टिक टिक टिक करके। तो जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281-003। बच्चों जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश किया सुनंदा अग्रवाल ने।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज संध्याकालीन सभा में संध्या 7:30 से आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026।

0: के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स लंदन से मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। इस दौरान आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। ये समय है पत्रिका कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्यिक पत्रिका भंगिमा का। आइए सुने ये कार्यक्रम। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का है। संयोजन और प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका भंगिमा।

श्रोताओं नमस्कार। साहित्यिक पत्रिका भंगिमा की जुलाई अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, वर्षा ऋतु अपने साथ हरियाली, नवजीवन और नई ऊर्जा लेकर आती है। यही समय हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण भी कराता है। हिंदी साहित्य ने भी आदिकाल से लेकर समकालीन साहित्य तक प्रकृति को केवल सौंदर्य का विषय नहीं माना, बल्कि जीवन दर्शन, संवेदना और पर्यावरण संरक्षण का आधार बनाया है। इसी भावना को केंद्र में रखकर प्रस्तुत है भंगिमा का ये विशेषांक। इसमें आप सुनेंगे समकालीन हिंदी साहित्य में प्रकृति और पर्यावरण चेतना पर साहित्यिक चर्चा। वन महोत्सव के संदर्भ में सामाजिक वानिकी विभाग के विशेषज्ञ श्री रजनीकांत मित्तल से विशेष बातचीत, डॉक्टर राजनाथ सिंह की विचारोत्तेजक वार्ता, प्रकृति, पर्यावरण और हिंदी साहित्य, हरित चेतना की परंपरा और कवित्री ऋतु नागर का काव्य पाठ। आइए साहित्य के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करें और एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हरियाली केवल जंगलों में ही नहीं बल्कि हमारे विचारों और व्यवहारों में भी दिखाई दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आरंभ करते हैं साहित्यिक पत्रिका भंगिमा का जुलाई अंक। श्रोताओ, प्रकृति केवल मनुष्य के जीवन का आधार ही नहीं बल्कि उसकी संवेदना, संस्कृति और सृजन की प्रेरणा भी रही है। हिंदी साहित्य में प्रकृति का चित्रण प्राचीन काल से होता आया है, किंतु समकालीन हिंदी साहित्य में प्रकृति का स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक और चिंतापरक हो गया है। आज जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, जल संकट और प्रदूषण जैसी चुनौतियां मानव अस्तित्व के सामने खड़ी हैं, तब साहित्यकार केवल प्रकृति का सौंदर्य वर्णन नहीं करता बल्कि उसके संरक्षण का संदेश भी देता है। कविता, कहानी, उपन्यास और निबंध सभी साहित्यिक विधाओं में पर्यावरण के प्रति गहरी चिंता और जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। समकालीन रचनाकार ये संकेत करते हैं कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो मानव सभ्यता का भविष्य भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए साहित्य हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व

0: का मार्ग दिखाता है। वे बताता है कि वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, वन्य जीव और जैव विविधता केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर है। वन महोत्सव जैसे अवसर इस चेतना को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम बनते हैं। ऐसे समय में साहित्य की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साहित्य केवल विचार नहीं जगाता बल्कि संवेदनाओं को भी जीवित रखता है। यही संवेदनाएं हमें प्रकृति के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं। निसंदेह समकालीन हिंदी साहित्य की पर्यावरण चेतना हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति की रक्षा ही मानव की रक्षा है। यही हरित चेतना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का आधार बन सकती है। श्रोताओ, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसी संदर्भ में वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण विषय को लेकर हमने बात की सामाजिक वानिकी विभाग मथुरा के प्रभागीय निरीक्षक रजनीकांत मित्तल से। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वन विभाग से जुड़े हुए हैं तो मानव जीवन के लिए वन किस रूप में उपयोगी है आपके अनुसार?
1: मैम, मानव जीवन के लिए वन बहुत उपयोगी हैं और ये सबके हिसाब से ही है, केवल मेरे हिसाब से नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या साइंटिफिक रिसर्च हो या हमारे पुराण और आध्यात्मिक ग्रंथ हो या सामाजिक जो परिचर्चा है वो हो, सबके हिसाब से जो वन है वो जीवन का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। कोरोना काल में हम सबने देखा भी हुआ है कि मानव जीवन के लिए जो आवश्यक है वो चाहे ऑक्सीजन हो या जल हो या छाया हो या फल हो, इकोसिस्टम सर्विसेज, चाहे वो मृदा का अपरदन रोकना हो या भूगर्भ जल का बढ़ाना हो, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वन हम लोगों को देते हैं। और अगर वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये प्रत्येक प्राणी का हम लोगों में कर्तव्य है कि जिस अवस्था में हमको ये भूमि मिली है, पर्यावरण मिला है, हम इसको बेहतर करके जाए ना कि खराब करके जाए।
0: बिल्कुल।
1: आजकल की जीवन शैली हो गई है, जितना प्रदूषण हो गया है, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या वृक्ष काटना हो डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए या अदरवाइज लकड़ी के लिए या अन्यथा, उस हिसाब से ये ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ग्लेशियरों का पिघलना हो रहा है या देख रहे हैं बिना एसी कोई रह नहीं पाता, ये सारी स्थितियां हो गई हैं। ये इसीलिए हो गई हैं कि जो मानव है या जो समाज है वो पर्याप्त जितना ध्यान देना चाहिए उतना एज ए होल नहीं दे रहा है। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल ज्यादा दे रहे हों, लेकिन एज ए होल जो सामाजिक चेतना है वो जितनी सजग होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए उतनी नहीं है। तो सबसे मेरी आपके माध्यम से अपील है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें, उनकी सुरक्षा जरूर करें और लालन पालन करके उनको आगे बढ़ाएं, जैसे कि हमारे गांव देहात में हमारे बुजुर्ग पुरखे करते रहे हैं।
0: जी सर, आपने बहुत विस्तार से परिचय दिया वन के संरक्षण के लिए। हम वनों के संरक्षण के महत्व को दे, इसके लिए आपने अपील भी की सभी श्रोताओं से जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक बात और जानना चाहूंगी सर, जो वन है हमारे वो मानव जीवन के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ वन में रहने वाले जो वन्य जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए वन किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं?
1: आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे फूड चेन होती है, फिर एक फूड वेव होती है, तो इको सिस्टम होता है। ये धरती केवल मानवों के लिए नहीं है। सबसे पहले एक सिंगल सेल एनिमल आए, फिर धीरे धीरे डायनासोर हुए, फिर बाकी प्रजातियां हुई और सारी प्रजातियां, वो चाहे कीटाणु हो या वृक्ष हो या वो एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, एवीज हो, कुछ भी हो, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये जो अपना इकोसिस्टम है, ये जो अपना हैबिटेट है, ये हम ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर पे, और ये सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तितली है, मच्छर है, चाहे वो शेर है या आदमी है, अगर जो प्रजाति कोई एक या दो नष्ट हो जाएंगी तो पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे हैबिटेट पे, पूरी बायोडायवर्सिटी डिग्रेड होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे ये नष्ट होते चले जाएंगे, इसके साथ पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: जी, यानी जो सृष्टि करता है उसने जब सृष्टि का निर्माण किया, वनों का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, इन स्रोतों को रचा या प्रकृति के स्रोत उसने बनाए, तो सभी को एक पिरामिड के रूप में ऊपर वाले ने संचारित किया, उसका सृजन किया और उस पिरामिड को हमें बनाए रखना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास वनों की अनधुन कटाई भी होती है, वनों को काट लिया जाता है लेकिन नए वृक्ष नहीं लगाते हैं जो आम जनता है, तो इसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: मैम, जैसा आप जान रही हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है एक

0: निर्मा के नाम, उसके अंतर्गत पूरे देश में ही लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से वृहद स्तर पर हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है और इन पौधों का न केवल लगाया जाता है बल्कि इनके सुरक्षा संरक्षण के लिए भी विशेष निर्देश और विशेष प्रयास किए जाते हैं। और इसी वजह से जो अभी स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट आई है उसमें यूपी का पूरे कंट्री में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है जो हरियाली आवरण है उसमें। और इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से, जनमानस के सहयोग से, सामाजिक सहयोग से और सरकारी सहयोग से निश्चित रूप से जो वनाच्छादन है, जो हरितमा का आच्छादन है, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, हम लोग बेहतर से बेहतर सिचुएशन में आते जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात कही। जो हमारी सरकार है सर, वो इस वनों के संरक्षण को लेकर काफी जागरूक है और एक जो मुहिम चली है माँ के नाम एक वृक्ष, उसके लिए भी आम जनता प्रयास करती है। एक बात ये जानना चाहूंगी कि जैसे आम जनता अगर वृक्ष लगाती है तो क्या वन संरक्षण विभाग के लोग उस लगाए हुए वृक्ष के पौधे को संरक्षण प्रदान करते हैं क्या?
0: देखिए, तकनीकी सहायता अगर पौधा लगाने में या अदरवाइज चाहिए होती है तो बिल्कुल हम लोग हमेशा रेडी हैं। उसके लिए एनजीओ भी हैं, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उसके लिए विभाग भी है, उसके लिए सरकार भी खड़ी है। पौधा लगाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उसी तरीके से पौधा लगा के उसका संरक्षण करना, हम सब लोग जब एक साथ करेंगे तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाएंगे।
1: जी सर, यानी सरकार और जनता दोनों मिलकर अगर साथ आएंगी तो चाहे वो वन संरक्षण को लेकर कार्यक्रम हो या वनों को लेकर जो समस्याएं क्रिएट हो गई हैं, जल को लेकर समस्याएं क्रिएट हो गई है, वातावरण को लेकर समस्याएं बन गई हैं, उन सब से हम एक दिन जरूर निजात पाएंगे। श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज?
0: आपके माध्यम से मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा जनता से कि पहले वो एक तरीका भी समझें पौधे को कैसे पकड़ना है, कैसे लगाना है, कब कब पानी देना है, कब सुरक्षा देनी है। तो अगर अपना ले मैन एटीट्यूड से करेंगे, जैसे जो हमारी एक ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर आजकल जो है वेबसाइट गूगल वगैरह से पता करके उसका टेक्निकल तरीका ही पता कर सकते हैं। हम लोगों ने भी एक मथुरा स्पेसिफिक बुकलेट बनाई है और वेबिनार्स के माध्यम से सारे प्रधानों को, ग्रामीणों को जन जागरूकता करने की उसमें प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ग्रीन चौपाल का आयोजन करने का एक शासनादेश भी हुआ है। माह के प्रत्येक तीसरे शुक्रवार को जैसे ग्रीन चौपाल आयोजित किया जाएगा और उस ग्रीन चौपाल में ये सब चीजें डिस्कस होंगी, कौन से प्रजाति के पौधे या किस तरीके से लगाने हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके माध्यम से निश्चित रूप से एक सामाजिक चेतना में अगर कहीं कमी होगी तो वो भी बढ़ेगी। और ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ले रही है, जैसे ग्रीन चौपाल वगैरह हो गए या सही भावों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराना हो गया, उसका लाभ लेते हुए सबको अधिकाधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा लालन पालन अपने बच्चों की तरह करना चाहिए। जैसे हरिशंकरी के बारे में बताते हैं, पीपल पाकड़ बरगद, एक भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, एक भगवान विष्णु का स्वरूप है, एक भगवान शंकर का स्वरूप है। तो उस चेतना में या मानस में उस तरीके से कनेक्ट करने से हम लोग बेहतर तरीके से उनका संरक्षण वगैरह कर पाएंगे।
1: जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, श्रोताओं को बहुत अच्छा संदेश भी दिया। यानी धर्म से जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रहे थे उन्हें ज्ञात था कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही ये व्यवस्था कर रखी थी कि वृक्षों को देवता के रूप में पूजा जाए, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, आदि सभी में देवताओं का निवास बता करके वृक्षों के संरक्षण को महत्व दिया गया। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को, आपने कार्यक्रम में हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमको मौका दिया बात रखने का।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है वार्ता जिसका विषय है प्रकृति, पर्यावरण और हिंदी साहित्य, हरित चेतना की परंपरा। वार्ताकार है डॉक्टर राजनाथ।
2: इस संसार में जो भी दृश्यमान आवरण है हम उसे पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से हुई है। पर्यावरण एक अविवाह समष्टि है जिसमें क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा आदि पंच महाभूत में वनस्पति, औषधि, जलचर, खेचर, सरीसृप, कीट आदि तथा पशुओं के समूह पर्यावरण कहलाता है। यह प्राणी मात्र का है और मानव जीवन का अभिन्न अंग है। पर्यावरण भौतिक वातावरण का द्योतक है जिसमें मानव निर्मित तत्व तथा प्रकृति के तत्व शामिल हैं। एक संतुलित पर्यावरण हमें जीवन का आधार देता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और हमारे आर्थिक व सामाजिक विकास का आधार बनता है। पर्यावरण के केंद्र में भले ही मनुष्य जीवन हो, तथापि संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व, विकास तथा भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। साहित्य, संस्कृति एवं प्रकृति की बहुआयामी संबंधों को लेकर हिंदी के रचनाकारों ने पर्यावरणीय संवेदना की अभिव्यक्ति विविध रूपों में की है। हिंदी साहित्य में

प्रकृति सदैव रचना का विषय रही है, जिसमें मात्र पेड़ पौधे नदियों पर्वतों का ही वर्णन नहीं बल्कि प्रकृति को जीवनदायिनी और पालन पोषण करने वाली शक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया है। साहित्य सदैव मनुष्य को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करता रहा है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक कालखंडों में प्रकृति के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति तथा उसका मनोरम वर्णन हुआ है, लेकिन आधुनिक युग के समकालीन साहित्य में औद्योगिकीकरण, अंधाधुंध शहरीकरण, जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण आदि विषयों पर खूब लेखनी चलाई गई है। साथ ही साहित्यकार हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को सजग भी करता है कि यदि हम समय रहते न सुधरे तो बाद की स्थिति बड़ी ही भयावह होगी। लीलाधर मंडलोई ने पॉलीथीन की थैलियां शीर्षक कविता में पॉलीथीन से उत्पन्न भयावह त्रासदी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें बतलाना चाहते हैं कि एक छोटी पतली सी पॉलीथीन हमारे पर्यावरण का दम घोट रही है और जब तक हम इससे निजात नहीं पाएंगे तब तक हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ नहीं कर सकते। मंडलोई जी इस समस्या का चित्रण करते हुए लिखते हैं, करोड़ों या अरबों कितनी हो सकती हैं पॉलीथीन की थैलियां, कितनी नदियों का दम घुट सकता है इन थैलियों में। पॉलीथीन पॉलीथीन, तंग हूं मैं इस पॉलीथीन से। एक दूसरे कवि ज्ञानेंद्र पति अपनी कविता नदी और साबुन शीर्षक में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखते हैं, नदी तू इतनी दुबली क्यों है और मैली कुचली, मरी हुई इच्छाओं की तरह मछलियां क्यों उतर आई हैं तुम्हारे दुर्दिन के दुर्जल में, किसने तुम्हारा नीर हरा, कल कल में कलुष भरा, बाघों के जुठारने से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल, आह लेकिन स्वार्थी कारखानों का तेजी पेशाब झेलते बैगनी हो गई है तुम्हारी शुभ्र त्वचा, हिमालय के होते हुए भी तुम्हारे सिरहाने हथेली भर की एक साबुन के टिकिया से हार गई हो तुम युद्ध। नरेंद्र सिंह मेहता लिखते हैं कि धरती माँ हम सब का एक पत्र लिखती है और कहती है, तुम लोग खुश हो या नहीं, चैन से हो या बेचैन हो पता नहीं, मैं तो वैश्विक ताप से तप रही हूँ, असहाय वेदना से तड़प रही हूँ, या कहकर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट देना तो दूर, मैं तुम्हें कष्ट में देख भी नहीं सकती, तुम सभी ने मुझे अपने अपने ढंग से कष्ट दिए, तपिश दी, मुझसे मेरी हरितिमा छीनी, मेरा सुहाग श्रृंगार को नष्ट किया। S.R. हारनोट की कहानी भाग देवी का चाय घर वैश्वीकरण के उपरांत फैले कंपनी के माया जाल से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट की कहानी है। यह कहानी कंपनी के आने से नदी झरने जंगल के विनाश के साथ साथ मोबाइल टावर के लगने से फैलने वाले विकिरण के दुष्प्रभाव को बयां करती है। कहानी में भागदेवी कंपनी वालों का प्रतिरोध करती है, वह इस पर जोर देती है कि मनुष्य की रक्षा के लिए हर पशु पक्षी का जिंदा रहना जरूरी है, जंगल का बचा रहना जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए राजेंद्र शर्मा अक्षर जी अपनी गजल के माध्यम से कहते हैं, जल के लिए तो सोचो, कल के लिए तो सोचो, निश्चल प्रकृति से अपने छल के लिए तो सोचो, बोने से बीज पहले फल के लिए तो सोचो, 100 तक जियोगे कैसे पल के लिए तो सोचो। वहीं सचिंद्र भटनागर जी लिखते हैं, तीर्थ का वातावरण वैसा नहीं अब शुद्ध है, वायु जल आलोक सबकी शुद्धता अवरुद्ध है, भीड़ भवनों की बढ़ी है, प्राकृतिक सुषमा घटी है, घटे वन उपवन प्रकृति उनसे हुई ज्यों क्रुद्ध है। अपनी दूसरी कविता में भटनागर जी लिखते हैं, किंतु हमने सूर्य की भी शक्ति का दोहन किया, व्योम जल पृथ्वी पवन का भी सतत शोषण किया, कम समय में ही अपरिमित प्राप्त करने की ललक ना धरा पर मानवों का भारवत जीवन किया है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री व साहित्यकार डॉक्टर K.M. मुंशी ने वृक्षारोपण अभियान का राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया, जिसे हम 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। हमें वृक्षारोपण के साथ साथ पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाना होगा, नदियों पहाड़ों को प्रदूषण से बचाना होगा, तभी जाकर हमारा भारत स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हरा भारत।

0: हमारा भारत कहलाएगा।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था प्रकृति, पर्यावरण और हिंदी साहित्य, हरित चेतना की परंपरा। वार्ताकार थे डॉक्टर राजनाथ। और अब समय है काव्य पाठ का, तो लीजिए सुनिए हिंदी काव्य पाठ। कवित्री हैं ऋतु।

प्यासी धरती को क्या खूब सुकून मिला, प्यासी धरती को क्या खूब सुकून मिला, जब बारिश की बूंदों ने इस धरती को छुआ, जब बारिश की बूंदों ने इस धरती को छुआ। हरियाली ने ओढ़ ली मोतियों की चादर, हरियाली ने ओढ़ ली मोतियों की चादर, पेड़ ने झूम कर नृत्य किया। वो मिट्टी की खुशबू, वो बादलों की सरगम पर नाचती हवाएं, वो मिट्टी की खुशबू, वो बादलों की सरगम पर नाचती हवाएं, वो मोर का खुशी से इतराना, सुनो बारिश का तो यही है अफसाना। बादलों से कह दो सोच समझ कर बरसें, बादलों से कह दो सोच समझ कर बरसें, अगर मुझे उनकी याद आ गई, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। कभी जोर से बरसती है कभी गुम सी है, कभी जोर से बरसती है कभी गुम सी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है। इस बार बारिश ने न जाने कौन सी दुश्मनी निभाई, इस बार बारिश ने न जाने कौन सी दुश्मनी निभाई, पूरे शहर में बरसी पर मेरे घर ना आई, पूरे शहर में बरसी पर मेरे घर ना आई। जितने सावन तेरे बिन गुजारे उन सबका हिसाब रखा है, जितने सावन तेरे बिन गुजारे उन सबका हिसाब रखा है, बस मैंने तेरे आने तक दिल को थाम रखा है, बस मैंने तेरे आने तक दिल को थाम रखा है। ख्वाहिश है कि इस बार सावन बूंदों के साथ तुम्हें भी लाए, ख्वाहिश है कि इस बार सावन बूंदों के साथ तुम्हें भी लाए और बारिश के साथ मुझे भी भिगो जाए। मिल जाते हैं यूं तो जिंदगी में चलते चलते कई लोग, मिल जाते हैं यूं तो जिंदगी में चलते चलते कई लोग, मगर वो खास ही होता है जहां दिल ठहर जाता है, मगर वो खास ही होता है जहां दिल ठहर जाता है। इस मतलबी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में एक बेमतलब सा लगाव है तुमसे, क्यों करोड़ों की भीड़ में एक चेहरा खास हो जाता है, हम लाख भुलाना चाहें तो भी वो वक्त बेवक्त याद आता है। वक्त रहते अगर तुम्हें जान जाते, वक्त रहते अगर तुम्हें जान जाते, तो ये वक्त बेवक्त हर वक्त तुम याद ना आते, तो ये वक्त बेवक्त हर वक्त तुम याद ना आते। छोड़ दिया है अब उन बातों को सोचना, छोड़ दिया है अब उन बातों को सोचना, जो सिर्फ तेरी याद दिलाए, जो सिर्फ तेरी याद दिलाए। तू कभी तो याद करेगा मुझे, तू कभी तो याद करेगा मुझे, बस इसी आरजू में ये साल भी गुजर गया, बस इसी आरजू में ये साल भी गुजर गया। यूं तो जिंदगी सभी गुजार लेते हैं, यूं तो जिंदगी सभी गुजार लेते हैं, मगर हम तो तुम्हें याद करके इसे खुशनुमा बना देते हैं, मगर हम तो तुम्हें याद करके इसे खुशनुमा बना देते हैं। दिल जिगर नजर यह सब किताबी बातें हैं, दिल जिगर नजर यह सब किताबी बातें हैं, तुम जान मांगो जान। ये तो तुम थे इसलिए थोड़ी गुफ्तगू कर ली, ये तो तुम थे इसीलिए थोड़ी गुफ्तगू कर ली, वरना हम किसी को मुड़ मुड़ कर देखा नहीं करते, वरना हम किसी को मुड़ मुड़ कर देखा

0: नहीं करते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दिल से चाहो वो दिल से जाते ही नहीं। जिसे दिल से चाहो वो दिल से जाते ही नहीं। अच्छा हुआ तुम बदल गए, अच्छा हुआ तुम बदल गए, हम भी जरा संभल गए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर वो तकलीफ से गुजरे ये हमें गवारा नहीं, मगर वो तकलीफ से गुजरे ये हमें गवारा नहीं। तुम्हें जाना है तो बेशक चले जाओ, तुम्हें जाना है तो बेशक चले जाओ, अब हमें किसी के आने जाने या ठहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमें किसी के आने जाने या ठहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी सुकून से कट जाए, जिंदगी सुकून से कट जाए, अगर कुछ लोगों के ख्याल दिल से निकल जाए, अगर कुछ लोगों के ख्याल दिल से निकल जाए। आप किसी को कितना भी अपना समझ लो, आप किसी को कितना भी अपना समझ लो, वो साबित कर ही देते हैं कि वो गैर हैं। वो बहाने बनाते गए, वो बहाने बनाते गए, और हम उनसे दूर जाते गए, और हम उनसे दूर जाते गए। न जाने ये दिल उसी पर आता है, न जाने ये दिल उसी पर आता है, जिसे हमारी कद्र नहीं होती, जिसे हमारी कद्र नहीं होती। वो जो भूल गया उसे क्यों अपनी याद दिलाई जाए, वो जो भूल गया उसे क्यों अपनी याद दिलाई जाए। वैसे भी हमें फुर्सत कहाँ कि किसी को नज़र भर के देखें, वैसे भी हमें फुर्सत कहाँ कि किसी को नज़र भर के देखें। कितना अच्छा होता अगर जो हुआ वो ना होता, कितना अच्छा होता अगर जो हुआ वो ना होता, न रातों की नींद खोती न दिन का चैन खोता। कितना अच्छा होता अगर न तेरी याद आती न दिल का सुकून खोता। अब इस दिल को कैसे समझाए कोई कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता, कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता। दिल जिगर नज़र ये सब किताबी बातें हैं, दिल जिगर नज़र ये सब किताबी बातें हैं, तुम जान मांगो तो जान हाजिर है, तुम जान मांगो तो जान हाजिर है। तू होगा मशहूर लोगों के बीच, तू होगा मशहूर लोगों के बीच, पर हमें तो बस तुम्हारी बात करने की अदा पसंद है, पर हमें तो बस तुम्हारी बात करने की अदा पसंद है। वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, और एक हम हैं जो हवाओं के रुख बदलने की दुआ मांगते हैं, और एक हम हैं जो हवाओं के बदलने की दुआ मांगते हैं। कुछ लोग अपने तो होते हैं, कुछ लोग अपने तो होते हैं, मगर सिर्फ बातों से, मगर सिर्फ बातों से। हम अब तक यह समझ नहीं पाए, हम अब तक यह समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा भी क्या खास है तुम में, कि आखिर ऐसा भी क्या खास है तुम में, कि तुमसे ऐसे उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं पा रहे, कि तुमसे ऐसे उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं पा रहे। क्यों इस पत्थर दिल दुनिया में, क्यों इस पत्थर दिल दुनिया में, कांच सा दिल लिए फिरती हूँ मैं, क्यों इस पत्थर दिल दुनिया में, कांच सा दिल लिए फिरती हूँ मैं। खत तो बहुत लोग लिख लेते हैं, खत तो बहुत लोग लिख लेते हैं, पर उसमें सच्ची भावनाओं की शाही बहुत कम लोग डालते हैं, पर उसमें सच्ची भावनाओं की शाही बहुत कम लोग डालते हैं। बर्बाद करने के तरीके और भी हैं, बर्बाद करने के तरीके और भी हैं, यूं किसी से दिल लगी करके छोड़ देना अच्छी बात नहीं, यूं किसी से दिल लगी करके छोड़ देना अच्छी बात नहीं। हम क्यों करें उस जालिम का ख्याल, हम क्यों करें उस जालिम का ख्याल, जिसे हमारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे हमारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ, कवित्री थी ऋतु नागर। श्रोताओ, इसी के साथ साहित्यिक पत्रिका भंगिमा का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में फिर होगी साहित्य संस्कृति और

0: वेदनाओं से भरपूर भेंट। तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: साहित्यिक पत्रिका भंगिमा।

अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का था, संयोजन और प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

वेलकम। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना शान और वाजिद की आवाज़ों में। शब्द रचना शब्बीर अहमद की थी, संगीत था साजिद वाजिद का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म डेंजरस इश्क से।

गीत को आवाजें दी हैं तुलसी कुमार और राहत फतेह अली खान ने। शब्द रचना शबीर अहमद की, संगीत हेमेश रेशमिया का।

राहत फ़तेह अली खां, तुलसी कुमार और साथियों के स्वर में आपने सुना डेंजरस इश्क फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था शबीर अहमद ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रुस्तम से। गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। मनोज मुंतशिर की रचना को संगीतबद्ध किया जीत गांगुली ने।

अरिजीत सिंह और पलक मुछल की आवाज़ में आपने सुना फिल्म रुस्तम का ये गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण से।

यासिर देसाई की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। गीत को लिखा था रश्मि विराग ने, संगीत था सचिन जिगर का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। की एंड का फिल्म से गीत को आवाज़ दे रहे हैं मिथुन और दीपाली।

की एंड का इस फिल्म के लिए आपने ये गीत सुना मिथुन और दीपाली की आवाज़ में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पठान से।

0: पठान फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़ और साथियों की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: बजने दे जरा। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: दिन के 11 बजे हैं, पेश है फरमाइशी फोन इन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
2: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो आकाशवाणी।
4: हेलो आकाशवाणी
3: सर, नमस्ते।
4: नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हो आप?
4: एकदम अच्छे हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर।
3: सर, मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, गोवर्धन रोड अड़िंग से। सर,
4: क्या कहना चाहेंगे यादव साहब?
3: सर, कहना तो यही चाहेंगे, अब मौसम थोड़ा परिवर्तित होने लगा है और बारिश भी चारों तरफ पड़ने लग गई है, तो गर्मी से निजात मिली है।
4: जी हाँ, मानसून ने दस्तक दे दी है और अब मौसम सुहाना होने लगा है।
3: जी सर,
4: कौन सा गीत सुनेंगे सुहाने मौसम में?
3: जी सर, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।
4: जी,
3: और उसका एक गीत है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है।
4: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: थैंक यू सर, हमारी कॉल एक्सेप्ट करने के लिए।
4: नमस्कार।
3: वेलकम सर।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: राधे राधे सर।
0: राधे राधे। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर मैं नगला चंद्रभान दीनदयाल धाम से लव कुमार बोल रहा हूँ सर।
0: लव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है?
1: अच्छे हैं सर, आप बताइए आकाशवाणी टीम कैसी है हमारी और आप कैसे हैं?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके गांव में क्या चल रहा है?
1: हमारे गांव में कुछ नहीं सर, अब स्कूल खुल गए हैं सभी बच्चों के, वो अपने स्कूल जाने लग गए हैं
0: जी।
1: और
0: और
1: सभी लोग अपने अपने घरों में बिजी हैं सर।
0: खेती बाड़ी में क्या चल रहा है?
1: सर खेती बाड़ी में अभी तो 2-1 दिन पहले बारिश हुई है, अब यहाँ से आगे बाजरा बोने का प्रक्रिया शुरू होगी।
0: अच्छा, आप क्या करते हैं लव कुमार जी?
1: सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ,
0: अच्छा
1: ट्यूशन अपने घर ही पढ़ता हूँ।
0: जी, बताइए आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: आप अपनी फरमाइश से लगा दोगी सर?
0: हमारी फरमाइश आपको पसंद आएगी।
1: जी सर,
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। राधे राधे सर।
0: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आपका नियमित श्रोता राम कुमार रिवार बात कर रहे हैं सर।
0: राम कुमार जी, कैसे हालचाल हैं आपके?
1: बहुत बढ़िया है सर, प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं तो बढ़िया अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की जो पेशकश होती है बहुत पसंद आती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बेशुमार श्रोताओं को आप प्यार बांटते हैं प्रोग्राम के मार्फत और अपना परिवार की तरह रखते हैं सभी श्रोताओं को, तो प्रोग्राम हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए इतनी दूर बैठे ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सुनते हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं।
1: आपकी मेहनत है सर, इसका अपनापन रहता है हमेशा श्रोताओं के साथ। इतने सारे श्रोताओं को इतने कम समय में शामिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को शामिल किया जाए।
0: जी जी, देखिए आकाशवाणी का उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: बिल्कुल सर,
0: तो आकाशवाणी इस उद्देश्य पर चल करके आप सभी श्रोताओं की सेवा कर रही है।
1: बिल्कुल सर, ये अच्छा लगता है, हमारा एक परिवार है श्रोताओं का सारा, आकाशवाणी के साथ जो जुड़े रहते हैं और गिले शिकवे होते रहते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम की पेशकश होती है वो बहुत पसंद आती है। कई बार कुछ श्रोताओं के शामिल नहीं हो पाते, कुछ श्रोता नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है श्रोताओं को कि एक बार मैसेज आप करोगे तो वो शामिल हो जाएगा
0: जी।
1: और प्रोग्राम बहुत खूबसूरत पेश किया जाता है, सभी श्रोताओं को स्थान मिलता है आकाशवाणी मथुरा से, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए, आप फरमाइश बता दीजिए राम कुमार जी, क्या सुनवाएं?
1: फरमाइश में गीत है सर, बहुत ही मुझे पसंद आता है, कभी कभी फिल्म का गीत है, मुकेश जी और लता जी की आवाज में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर ये गीत मैं सभी सुनने वालों के साथ अपनी वाइफ चंद्रकला रिवार जी को भी याद करना चाहता हूँ इस गीत के मार्फत।
0: थैंक यू।
1: ओके सर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिट जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ सर। और कल तो यहाँ खूब पानी गिरा सर, शाम टाइम और सुबह खूब गिरा है सर। नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ और यहाँ पर सुनहरा मौसम है सर,
0: जी
1: ठंडा
0: जी
1: ठंडा हवा चल रहा है और चारों तरफ बादल किया, धूप भी है और उसके बाद ये मौसम बन रहा है सर और ये पानी गिरने के कगार में है।
0: जी खुशनुमा बारिश होने से मौसम अच्छा हो गया, सुहाना हो गया।

0: जी सर, जितने भी पौधे जो दिख रहे हैं सर, यहाँ पर सब हरा हरा दिख रहा है सर, और घास भी काफी उग गया है सर, और बहुत अच्छा दिख रहा है सर।
1: बताइए इंद्रभान जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है अजनबी, वो गाना है ना, भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों पे, ऐसा लगता है, गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर
1: जी।
0: सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, और सभी स्टाफ कर्मचारियों को, सभी घोषक भाई बहनों को धन्यवाद सर, बहुत अच्छा दिन है सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: मैं
1: नमस्कार।
0: राया से बोल रहा हूँ, योगेश कुमार।
1: योगेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: ठीक है भाई, मेरे पास है और
1: क्या करते हैं?
0: इतनी आदमी है, क्या करें, घर तो पड़े रहते
1: जी, फोन पहली बार किया है?
0: हैं। दूसरी बार मतलब
1: अच्छा, परिवार में सब ठीक है आपके?
0: हाँ, सब बढ़िया है।
1: कार्यक्रम सुनते हैं ना लगातार?
0: लगातार कभी कार्यक्रम
1: बताइए, आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आवाज ये गाना है, गाना तो खानेदार पिक्चर का, जब टीवी शादी यहाँ से आ रहा हूँ।
1: आपको सुनवाते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सेठ जी का नाम लेना चाहता हूँ।
1: जी।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने जो विषय लिया है वो जीवन की उतार चढ़ाव को और सुख दुख सबको व्यक्त करता है। साथ ही साथ ये जीवन की जो सुंदरता है, साथ ही साथ जीवन के हर पल को जीने के लिए हमें इन क्षणों की आवश्यकता पड़ती है, ये भी बताता है। आज इस कार्यक्रम में हमने विषय लिया है मेहंदी और जीवन के रंग। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी केवल हाथों की सुंदरता बढ़ाने वाला एक प्राकृतिक रंग नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्रेम और शुभता, साथ ही साथ उत्सव का भी प्रतीक है। जिस प्रकार मेहंदी का रंग समय के साथ गहरा होकर अपनी वास्तविक सुंदरता दिखाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनुभवों, संघर्षों, खुशियों और रिश्तों के रंगों से धीरे धीरे निखरता है। जीवन में कभी सुख का उजाला रंग लाता है तो कभी दुख की हल्की छाया। जीवन में कभी सफलता का उत्साह होता है तो कभी असफलता मिलने से सीख मिलती है। यही विविध रंग जीवन को अर्थपूर्ण, सुंदर और प्रेरणादायक बनाते हैं। तो आज के इस विषय मेहंदी और जीवन के रंग पर बातचीत का क्रम जारी रहेगा, लेकिन आइए सुन लेते हैं मेहंदी से जुड़ा हुआ ही एक प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बातचीत कर रहे हैं विषय मेहंदी और जीवन के रंग पर। जीवन एक रंगमंच है दोस्तों, और हर रंग उसकी एक नई कहानी कहता है। इन रंगों में यदि किसी रंग को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाए तो वह है मेहंदी का रंग। मेहंदी केवल हाथों और पैरों की शोभा बढ़ाने वाला प्राकृतिक श्रृंगार नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास, सौभाग्य, शुभता, उत्सव और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है। भारत में विवाह, तीज, करवा चौथ, ईद, रक्षाबंधन और अनेक मांगलिक अवसरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसकी भीनी भीनी सुगंध और गहरा होता रंग मन में आनंद, उत्साह और अपनापन भर देता है। मेहंदी का सबसे बड़ा गुण यह भी है कि उसका रंग तुरंत नहीं चढ़ता, उसे समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। जितना अधिक धैर्य रखा जाता है, उसका रंग उतना ही गहरा और आकर्षक बनता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, और हमारे जीवन पर भी यही बात लागू होती है। जीवन में सफलता, सम्मान और खुशियाँ भी एक दिन में प्राप्त नहीं होती। निरंतर परिश्रम, संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और इन सभी के बाद ही जीवन अपने वास्तविक रंग दिखाता है। बातचीत का क्रम और भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं मेहंदी से संबंधित ही एक और प्यारा सा गीत।

इसी विषय पर हमारे एक श्रोता हैं जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले लिखते हैं, जिस प्रकार मेहंदी का उपयोग हजारों वर्षों से त्वचा और बालों को रंगने के लिए किया जाता है, हजारों वर्षों से दुनिया भर के लोग त्वचा, बालों और कपड़ों के रंगने के लिए साथ ही साथ मेहंदी की पत्तियों का उपयोग करते आ रहे हैं। वैसे ही जीवन को इंद्रधनुषी रंग से सजाने के लिए निरंतर छोटी छोटी खुशियों की तलाश कर जीवन के क्षणों को सजाकर हमें चलना होता है। कोई रंग फीका पड़ गया तो अपनी मुस्कान से उसे सजाना होता है। अगर सार के रूप में कहा जाए, जिस प्रकार मेहंदी के रंग में कभी हल्कापन होता है और कभी गहराई, उसी प्रकार जीवन के अनेक रंगों से सजा होता है हमारा जीवन, जिसमें कई रंग होते हैं। बचपन मासूमियत का रंग है, युवावस्था सपनों और उत्साह का रंग है, संघर्ष अनुभव का रंग है और बुढ़ापा ज्ञान तथा संतोष का रंग है। लेकिन जीवन के इन सभी रंगों का अपना एक अलग महत्व है, यानी हर रंग अपना अलग महत्व और स्थान रखता है। यदि जीवन में केवल खुशियां ही हो तो उनके मूल्यों का एहसास कभी नहीं होगा। दुख, असफलता और कठिनाइयों से ही हमें मजबूत बनाती है, साथ ही साथ सफलता का वास्तविक आनंद हमें जीवन के अनेक रंगों से ही सीखने मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी हमें यह भी सिखाती है कि बाहरी सुंदरता तभी सार्थक होती है जब उसके साथ भीतर की सुंदरता भी जुड़ी हो। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके संस्कार, व्यवहार, प्रेम, करुणा, ईमानदारी और विनम्रता में छुपा होता है। जैसे मेहंदी की खुशबू दूर तक फैलती है, वैसे ही अच्छे कर्मों की सुगंध समाज में लंबे समय तक बनी रहती है। बातचीत का क्रम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

या दोस्तों, आज इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम बात कर रहे हैं मेहंदी और जीवन के रंग इस विषय पर। इसी क्रम में यदि मेहंदी और शादी इस बात में बातचीत की जाए तो ये देखने और पढ़ने मिलता है, भारतीय विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और अनेक भावनाओं का पवित्र मिलन है। इस पावन बंधन में अनेक रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें मेहंदी की रस्म सबसे रंगीन, आनंदमय और भावनात्मक मानी जाती है। मेहंदी केवल हाथों और पैरों पर बनाई जाने वाली सुंदर आकृति ही नहीं, बल्कि प्रेम, सौभाग्य, समर्पण, खुशहाली और नए जीवन की मंगल कामनाओं का प्रतीक है। शादी से एक या दो दिन पहले आयोजित होने वाली मेहंदी की रस्म पूरे परिवार में उत्साह, उल्लास का वातावरण बना देती है। घर आंगन गीतों, हंसी, नृत्य और संगीत से गूंज उठता है। दुल्हन के हाथों पर सुंदर सुंदर बेल बूटे, फूल, मोर और कलात्मक डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं, जिससे घर में भी हंसी खुशी का माहौल होता है, साथ ही साथ उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। कई बार दूल्हा दुल्हन के नाम भी मेहंदी की डिजाइन में छिपाए जाते हैं, जिन्हें ढूंढना भी एक मनोरंजक परंपरा बन जाता है। भारतीय लोक विश्वास के अनुसार दुल्हन की मेहंदी जितनी गहरी रचती है और उतना ही प्रेम सम्मान अपने जीवन साथी तथा ससुराल से मिलता है, ऐसा एक कहना भी होता है लोगों का। यद्यपि यह केवल एक मान्यता है, फिर भी यह रिश्तों में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का सुंदर प्रतीक बन चुकी है। मेहंदी का महत्व केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है दोस्तों, इसमें प्राकृतिक औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यह शरीर को शीतलता प्रदान करती है और विवाह जैसी व्यस्त एवं भावनात्मक तैयारियों के बीच दुल्हन को मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव कराती है। इसी कारण प्राचीन काल से ही मेहंदी का प्रयोग शुभ अवसरों पर किया जाता है। और आइए इसी क्रम में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो विवाह शादियों में इस प्रकार बजाया जाता है, जिसके बिना विवाह शादी अपूर्ण माने जाते हैं।

या दोस्तों, यदि सार की बात की जाए तो बस हम यही कहना चाहेंगे, मेहंदी हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता का संदेश देती है। यह सिखाती है कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा, अच्छे कर्मों के साथ जीवन भी सुंदर, सुगंधित और अर्थपूर्ण बन जाता है। इसलिए हमें जीवन के हर रंग को स्वीकार करना चाहिए, साथ ही साथ प्रेम, सद्भाव, संस्कार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सुंदरता है और यही मेहंदी और जीवन के रंग, इस विषय का वास्तविक संदेश। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना नक्श अजीज और जोनिता गांधी की आवाज़ों में फिल्म ड्रीम गर्ल से। गीत लिखा था कुमार ने, संगीत मीत ब्रदर्स का।

श्रोताओ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे जेम्स की आवाज में फिल्म गैंगस्टर से। इस गीत को लिखा मयूर ने, संगीत प्रीतम का था।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म आंटी नंबर वन में। गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और हार्डकोर। इन्हीं के साथ राजा हसन की आवाजों में ये गीत, फिल्म का नाम बचना ए हसीनो। गीत रचना अन्विता दत्त की, संगीत विशाल शेखर का।

0: कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे शिल्पा राव और वरुण जैन को फिल्म स्त्री 2 में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं ब्रजलाल नागर।

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं ब्रजलाल नागर।
1: मोहन मान के ही मती छे मैं जसुदा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं ब्रजलाल नागर के गाए ब्रज लोकगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस

गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज संध्या 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स लंदन से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं हमारी प्रसारण ऐप न्यूज ऑन AIR पर। इस क्रम में आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, विषय रहेंगे खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में और जल संरक्षण। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मनभावन भी आप सुन सकते हैं। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत करेंगे अटल राम चतुर्वेदी। समय रहेगा संध्या 7:05। शाम सुहानी, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। सुहानी तराने सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। अपराह्न 1:15 पर आप सुन सकते हैं झलकी भूत का इलाज, श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे अपराह्न 1:30 पर। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित और ओपी सिंह की होगी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित होगा अपराह्न 2:30 पर। अपराह्न 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। सांध्यकालीन सभा का शुभारंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ, गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं झलकी घर परिवार। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार 11:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है इस मास का गीत, स्वर आंशुना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा के, गीत रचना ब्रह्मानंद की, संगीत नरेश मल्होत्रा का।

लीजिए, प्रस्तुत है इस सभा के शेष और संध्याकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: इस मास का गीत अभी आप सुन रहे थे अंशुना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा की आवाज़ों में। गीत ब्रह्मानंद का था, संगीत नरेश मल्होत्रा का।
1: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम। हम आपको सुनवा रहे हैं धर्मवीर अज्ञानी की लिखी झलकी, भूत को इलाज, या झलकी के प्रस्तुत करता है हरीश त्रेहन।
2: चौसकटू की माँ सकटुआ रोटी

0: खाई गयो के ना अबई?
1: अजी हम बे अबई खाते लिल गया परांठे बू और काउ दिना बखते रोटी खात होएगो अबई तो बाकी सुल्ला की बैठक में ताश मार उड़ रही होएगी जोड़ीदारन के संगे।
0: अरे शकरुआ की माँ बड़े बूढ़े ने एक कहावत कही है, खाली दिमाग शैतान को घर होते पारे कल्लई नकलते। अब बिना योग्यता के कोई नौकरी तो धरी ना है, हल्की पतरी प्राइवेट में टिके ना है। चीज सबई चाहिए भैया, बढ़िया खाएबो, बढ़िया पहरबो, बढ़िया ओढ़बो, बढ़िया बजाएबो और घूमबो। ने कसर पड़ जाए तो घुन्नाम तो हम आऊ।
1: सही कह रहे हो।
2: ए जी सब बर्तन जूठे पड़े मैं काय में रोटी खाऊ?
1: जब भूख लगते काए तब सौ जगह ते लीलवे घर को भागते और पेट भरो फिर ढूंढे ते गांव में नाए पामते। सवेरे की खाए के फिर सांझ को आए धमकते। तू पट्ठा है रोए तो नेकादो शरम लिहाज है कि ना? जे बूढ़ो डोकरा करती करत मर जाएगो और तू यारन के संग तासन में लगे रहते। जाओ जा वहीं, यारी तो लिलाई देंगे तोए।
2: मुंड मत मारे, लाखा है दूध और रोटी खांदे शांति थी।
0: कैसा कह रहे हो ए? लाखांदे शांति थे। अरे कछु अगार पिछार का तो ख्याल कछु है ना?
2: अब तुम दो जने रोटी खाए लन देंगे कि पहले तुमको पैसा लाए दूं कमाई के?
1: अच्छा, एक तो घर में बैठार के पट्ठा को ले लाए रहे हैं और ऊपर से धमधमी और झेले दे बढ़वायो लार साहब का उनको हवालदारी के लिलाए दूंगी पनपति है।
2: जी धरिए ती फनपति और मैं चलो, जितनो खात खाऊं बातें ज्यादा तो खून जर जातु है। त्याई रोज की उल्टी सूदी बकवास थी, कहूं सरकारी नौकरी लग जाती तो तुम दो जने मेरी आरती उतारते। आरती नौकरी का खिलौना समझ राखी है आजकल ने, घर फूक तमाशो देखतु है। रिश्वत तैबे को तुम पे फूटी कौड़ी निकरतना है। मे संग छोरा आज मौज ले रहे हैं और यहाँ मोज तो रोटी तक चेनती ना है।
0: चौके तू तो अकेला घर में है और जिन बालकन को तो मैं कुआ में धकेले आऊ, खेत बेच के तो रिश्वत दे दू। हाँ
1: और का, तुम बालकन ने लेके फिर भीख मांगियो? जी अपनी बहू है लेके नौकरी पे मौज मारेगो। दुनियान के बालक शहरन में जाए के फैक्ट्री सेक्ट्री में ते कमाई के थोड़ी ला रहे। हाँ, बेसबू सरकारी अफसर तो हटेंगे पर जाके संग गांव में को डोलेगो बेफालतू, गुटकाए को सकटेगो, सिगरेटन को धुआं चिमनी बनाए के कूड़ा देगो। जा तू जा डोले ऐसे खेल ताश मार। अब तू असल को होए तो हमारी पनपति ने खाइयो मती ना, अब तो तू चैन के अंगा ले लियो। जा हम तो देखें।
2: पलटू भैया राम राम।
3: आहा राम राम सकती भैया राम राम।
2: का है रोए?
3: अरे भैया पहले ले बैठ जी पीड़ा ले, हमारो कहा होएगो? फिलहाल तो मैं तेरा इंतजार कर रहे हूँ। मैं तो एक खबर सुनामनो चाह रहे हो भैया।
2: ये सो कहा समाचार है भैया?
3: तू भग्गा है तो जानत होएगो?
2: आहा का भयो भग्गा को सो?
3: भयो का वा पे भूत आएगो बतामत है।
2: अच्छा
3: सबरो गांव वाके जोरे ठाड़ो ए मेला सो जुड़ रहे हो ए, तमासो देखे तो चल।
2: अच्छा भग्गा पे कोचड़ बैठो ए, अपनो परिचय और इच्छा तो बताए रहे होएगो?
3: हाँ सब कछु बताए रहे हो ए, भग्गा को ताऊ पांचा है पांचा।
2: अच्छा
3: जो जमुना में कूद के पिछली साल मर गयो काओ?
2: हाँ
3: यो कह रहे हो बतामत है कि मोकू गंगा न भाई के थान बनवा।
2: अच्छा
3: नहीं तो मैं सबरे घर को मट्टी में मिलाए दूंगा मट्टी में।
2: ठीक
3: अब सबरे घर वाले ठाड़े कांप रहे हैं भैया।
2: ओ

0: ये आइडिया 100% काम करेगा, आ गई समझ में?
1: तेरी का समझ में आ गई बात रे, काय को आइडिया 100% काम करेगो, नेक हमऊ तो जाने।
0: देख भैया पलटू।
1: हाँ भैया बताए।
0: तोते आज तक मेरी कोई बात छिपी तो ना है?
1: सांची कह रहे हो भैया।
0: और न मेरे घर की छिपी?
1: बिल्कुल ना छिपी।
0: तू सब बातन को जानवे समझवे वारो आदमी है। मैंने अपने डोकरा डोकरी ते निरीपोत कह लाई कि तुम मेरी नौकरी को काउ पैते 1,00,000 रुपया रिश्वत को लाई दे, तो 2 साल में मैं कछु तनखा में थे और कछु ऊपली कमाई में थे सब हाल सिलटाई दूंगो।
1: अच्छो
0: फिर सरकारी नौकरी वाले के ब्याह में 1,00,000 तो नगद छोरा के हाथ पे मिलने ही मिलने, जो बातें आजकल सब जानते हैं।
1: बिल्कुल जानते हैं भैया।
0: पर हमारी डोकरा डोकरिन की तो मत मारी गई है मती।
1: कैसे भैया?
0: अब तू बताए कहा करूं? हार के तेरी जा भूतवारी बात सुन के मैंने तय कर लियो है।
1: कहा तय किया भैया?
0: कि मैं हूं नकली भूत को सहारो लेके अपनी इच्छा पूरी करूंगो।
1: हाँ, अच्छा तो जे है 100% बारो तेरो आइडिया?
0: हाँ भैया जे ये मेरो प्लान। के प्लान सफल होएगो के ना है? पर तो मेरी पूरी मदद करनी पड़ेगी जामे, बोल करे तो बताए।
1: देख लाला सकटू, भूत की नाटकबाजी तो तेरी सफल है जाएगी। तेरे घर के और काउ तरीका ते मानवे बारी उनाए, पर मैं तेरो संग जब तक दे सकतू। कब?
0: कब?
1: जब तेरो लक्ष्य पाएवे को रास्ता ठीक होए।
0: चो भैया जामे गलत कहा है, अपनी और अपने घर की उन्नति सब कोई चामे।
1: अरे सकटुआ, मैंने तो को उन्नति न करवे बारी कोई बात तो ना कही। मैं फिर कह रहा हूँ रास्ता सही ना है तेरो, लक्ष्य तो ठीक है। तेने कही कि रिश्वत दूंगो, नौकरी पकड़ूंगो। पहली बात भैया, रिश्वत देवो और लेवो दो कानूनी जुर्म है।
0: अच्छो
1: दूसरी बात, जो मेहनती और योग्य आदमी है बिन के संग जी तो विश्वासघात होएगो ना।
0: अच्छो
1: जाते खुले आम अन्याय भयो के ना भयो।
0: अच्छो
1: जी तेने सोची है कबो? वे 1 साल में जा संसार को तबाह करके डार देंगे भैया।
0: हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है।
1: सुन भाई सकटू, मैं तेरे भूत के नाटक को सफल करवा दऊं तो तू उन रुपयन ते कौन सो काम करेगो बताए? आज फैसला कर ले।
0: भैया पलटू, जो तू कहेगो सोई काम करूंगो, पर अब बात जतन की पहले बात शुरू कर, जाती रुपया आमनो का है हाथ में, समझो कि ना है?
1: कान उरे को लापनो, नहीं तो कोई सुन लेगो। तू जाने नायका दीवारन के कान होते हैं भैया।
0: अच्छा,
1: सुन
2: अजी सकटू के दादा। अरे ओ सकटुआ के दादा,
3: का है काय को रात में चिल्पो मचा रखी है?
2: हाँ। देखो तो सही।
3: अरे का है गो?
2: जी का भयो छोरा को आले आल रोटी खाए के नी को सोयो तो जी तो गाड़ी पे गाड़ी और बर्तन भाड़े में खूब मोर दे रहे
3: हैं। का भयो? का भयो जाकू? अरे अरे जाको तो भगा जसो हाल है गए ओए। सुन सुन भगवान, तू याकू कोठे में बंद करके रखियो।
2: अच्छा
3: मैं काऊ शाने दीवाने को देख ले आऊं। आऊंगा भाई।
4: अरे लोरे काका, तुम पलटू भैया को बुलवाओ, वो सब बातन को जानकार है, वो बतावे वो कहाँ तकलीफ है याकू।
2: भाजी नेक जल्दी लाओ, पलटू घर पे ही समझ पाएगो। हाय का भयो मेरे छोरा है।
1: अरे अम्मा घबरावे मती, तेरो सकटुआ ठीक है जाएगो, कोई बात ना है। हवा को चक्कर है, अभी ठीक है जाएगो। नेक तू गंगा जल लाए के दे।
3: गंगा जल ला भगवान।
2: अच्छा अब लाओ। ले बेटा ले, पलटू ले बेटा, मेरे छोरा पहलो जैसो कर दे, तेरो एहसान मानूंगी बेटा, तेरो एहसान मानूंगी।

0: हाँ बेटा पलटू जाए, मेरो चाहे मेरो सब कुछ चला जाए पर यार नहीं ठीक करते बेटा, नहीं ठीक करते।
1: कोई चिंता करबे की बात ना है, अब तुम सब शांत है के बैठ जाओ, ने
0: बैठ जा भगवान यहाँ आ जा।
2: ओम जटा शंकर भूतनाथ शंभुनाथ कैलाश पति छोड़े मती, गलगट गलगट भूत मारू जिंदा मारू, गलगट गलगट बोल नालायक तू कौन और कैसे हावी भयो छोला पे।
3: मैं भग्गा कोपता उपाचा हूँ, मैंने तेरे छोरा ते कही के हमारी भूत नगरी में चल, माँ पे सिगरी भूत प्रेत अनपढ़ है, तू पढ़ो लिखो है उनको पढ़ाए के मुक्ति दिवाए के आ जाई थी, मैं जाय ले भी आयो हूँ, छोड़ूंगो ना जाय लेके ही जाऊंगो।
1: काऊ शर्त पे पांच आताऊ
2: तू जाए छोड़ सका तू है के ना, हम तेरी सभी शर्त मंजूर करेंगे।
3: एक शर्त पे जाकू मैं छोड़ सकतू, अगर जाको बाप लोहरे काका अपने गांव की तिराई बारी टम्पू अड्डी पे पांच कमरा बनवाई दी और बामे जिस कटुआ हमारे गांव के बालकन को पढ़ावे और गरीबन की छोई छापरिन को मुफ्त पढ़ावे, तो मैं आज के बाद कबऊ जाके जोरे नायांगो सुल्लई।
0: कहो लोहरे काका,
1: मंजूर है शर्त?
4: खूब सोच समझ के मंजूर करियो,
1: क्योंकि जब मामले में जिंद भूत दोबारा मोको नाय दे तो बोलो बेग भरो गंगा जल हाथ में लेके पांच पेंड, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी ना है, तुम पीछे रो मत फिरो कहूँ। हाँ
5: बेटा पलटू, कमरा तो पांच ना है छह बनवाए दूंगी, पर इतनी जल्दी कैसे होगी, बंगते पैसा टका लेवे में भलाए दिना लगेंगे, कचुकर की फसल के दाम आ जाएंगे।
0: अरे तू चुप कर भगवान, बीमारी कटते है हाँ, बीमारी कट जाएगी, मैं भोरे भवानी दादा पे थे कर्ज ले लूंगू, हाँ जो है कैसु बहुत जल्दी स्कूल बनवा दूंगो भैया, पर भैया मेरे यहाँ बेटा को मेरे छोरा कुछ ठीक कर दे रहे हाँ।
1: तो लाओ गंगा जल लाओ।
0: गंगा जल लिया भगवान?
5: अच्छा
1: ठीक है, अब पांच पेड भरो और कहो पांचा ताऊ तेरी इच्छा पूरी करी जाएगी, तू अब छोरा को पीछो छोड़।
2: अरे पाचा भैया तेरी इच्छा पूरी करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, हमारे यहाँ छोरा को पीछो छोड़ दे देता।
5: पीछो छोड़ दे।
1: अब जा गंगा जल को सकटू के ऊपर छिड़क दियो।
0: ऐसे छिड़क दो?
1: छिड़को
0: भैया।
3: अरे आज जी भीड़ कैसे हमारे घर है रही है।
1: अच्छा अच्छा अब सकटुए अकेलो कमरा में छोड़ दियो, अब सब बाहर जाओ भैया, जाके
0: छोरा बैठा तो चलते रहे जाओ भैया जाओ।
1: के भाई पांचा ताऊ अब तो तू खसे के ना है बहू।
3: भैया पलटू त्यो जीवन भर एहसान मानूंगो, तेने मोकू घर वारिन ती मदद दिलवाए दई जीते जी, नहीं तो मेरी जवानी तासन के खेल में चली जाती।
1: सकटुआ
3: हाँ।
6: अभी तक आप सुन रहे थे जल की भूत का इलाज। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, और स्वागत है ओपी सिंह साहब का।
1: जी, मैं भी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। देवराज जी, आपको भी प्रणाम करता हूं, और इस बात के साथ के हम नियमित तौर पर अब मिलने लगे हैं।
0: जी,
1: शुक्रवार को 12:30 बजे हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ पत्र भी कभी कभी आ जा रहे हैं। तो ये एक सफर जो चला है, अब धीरे धीरे कारवां बनता चला है। देखिए,
0: और जी हाँ, सिंह साहब आपने जुड़ने की बात की, तो हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। लेते हैं फोन कॉल्स।
2: श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ।
0: स्वागत है, अपना परिचय दीजिए।
2: सर, मैं आपका प्रजरी श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से। सर
1: जी, यादव जी कैसे हैं आप?
2: जी सर, नमस्कार सर, हम अच्छे हैं। आपसे भी जानना चाहते हैं आपका हाल और आकाशवाणी टीम का हाल।
1: बिल्कुल, श्रोताओं के साथ आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो हमारा हाल तो यही है कि आप बताएं कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। अशोक जी,
2: मथुरा आकाशवाणी के प्रत्येक कार्यक्रमों को मैं सुनने का प्रयास करता हूँ, और उनका आनंद भी उठाता हूँ, साथ में साथ लाभ भी उठाता हूँ। अपराह्न 12:00 बजे से 3 जुलाई शुक्रवार को एक सजीव कार्यक्रम आया था, जिसमें हमारे राहुल तेवतिया जी डॉक्टर साहब ने बातें की रहे टीकाकरण अभियान के ऊपर।
1: जी जी, एक ऐसा कार्यक्रम जो निश्चित तौर पर हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो टीकाकरण का है, तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। और उसमें हमारे साथ रोहिता सुतेवतिया जी थे, जो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं। उन्होंने अच्छे जवाब, अच्छे सुझाव हमारी सोसाइटी में कैसे हम टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर के जा सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो अशोक जी, आपको अच्छा लगा
2: ये? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, और प्रेजेंट की समस्याओं से, जैसे कि जो 14 साल की बच्चियों के लिए टीका लग रहे हैं, उसमें कुछ भ्रांतियां थी, लोगों के दिलों में कुछ संशय था, और उन्होंने विस्तार से उसे दूर भी किया, और साथ ही साथ हर श्रोताओं को फोन कॉल के माध्यम से जुड़े उससे, और उनकी भ्रांतियों को दूर किया, और अच्छे से उनका उसके लाभ से अवगत कराया। और मैं आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाते हैं, और डॉक्टर जी भी अपने अमूल्य समय देकर आकाशवाणी से श्रोताओं से जुड़कर उनको, उन्होंने उनकी समस्याओं को दूर किया, इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: यानी कुल मिलाकर आकाशवाणी का जो प्रयास है वो सफल रहा, आपको पसंद आया कार्यक्रम और उपयोगी भी रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: निश्चित सर, बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम था। और एक कार्यक्रम हमने और सुना था सर 29 जुलाई को, हाउ लीला, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जो ब्रज भाषा में था, उसे सुनकर भी बहुत आनंद आया था। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए मैं आकाशवाणी मथुरा को बारंबार धन्यवाद देता हूँ।
1: चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप फोन के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, थैंक यू सर।
0: हेलो, नमस्कार, श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: जी धन्यवाद सर। सर, मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
0: जी
3: चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राना, सिहोरा।
1: जी, कैसे हैं?
3: जी सिंह साहब नमस्कार,
1: प्रणाम कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहते हैं कि इस वीक जो हमारे कार्यक्रम आप तक पहुंचे, उस पर आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है, तो बताइए।
3: महोदय, पहले तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि शिकायतों का पिटारा खोलूं या तारीफों के पुल।
1: नहीं नहीं, आप शिकायतें पहले लीजिए, तारीफें तो होती रहेंगी, आपकी शिकायतें हमारे लिए बहुत प्रेरणा का कार्य करती हैं, बताइए।
3: महोदय, क्या है कि आपके केंद्र से हर रोज एक कार्यक्रम जाता है, भूले बिछड़े गीत, सुबह 7 बजे। हम बड़ी उम्मीदें लेके रहते हैं कि हमें भूली बिछड़ी आवाजें मिलेंगी, लेकिन नहीं मिलती। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ ऐसी आवाजें जो हमें सुनने को मिले, अगर आप कहें तो उन आवाजों को और उन नामों को आपको बता दें।
1: जी जी, नहीं, कोशिश करेंगे कि हम अपने जो मित्र लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुबह प्रेषित करते हैं, चलाते हैं, तो उन तक आपकी ये जो शिकायत नहीं बल्कि सुझाव ही हम इसको कहेंगे कि भूले बिसरे हैं, तो थोड़े आप, मैं समझता हूँ पुराने गीतों की ही बात कर रहे हैं, पुरानी फिल्मों की ही बात कर रहे हैं, तो वो ही वहाँ बजाई जाए, तो हम कोई स्वीकार है, और आज हम उनसे बात करेंगे
0: जी।
1: तो निश्चित तौर पे अगले कुछ कार्यक्रमों में ये सुझाव वहाँ परिलक्षित होंगे, और आपको पुरानी फिल्मों के गाने ही सुनने को मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे
0: जी। सिंह साहब, मुझे लगता है इनका

0: कहने का आशय ये है कि ये वो आवाजें सुनना चाहते हैं जो रेडियो पर कम सुनाई देती हैं।
1: जी जी जी
2: अब जी, आप समझ रहे हैं
0: जी
1: भूली बिसरी से मतलब यही है कि जिनको हम भूल चुके हैं, बिसरा चुके हैं, तो वो उसको फिर से जीवन में लेके आए। तो कार्यक्रम का उद्देश्य तो यही है, लेकिन हमारे युवा साथी कुछ उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहे जहां महेंद्र सिंह जी जाना चाहते
0: जी जी
1: तो वो वहां तक की यात्रा पूरी करें, वहां तक पहुंचे। ये सुझाव आपका मान्य है और इसको हम जल्द से। जी जी जी
2: सर, मैं इसी विषय में फिर से थोड़ा बोलना चाहूंगा कि देखिए, कुछ ऐसी आवाज है कुछ गायक कलाकारों की जो गायक गायिका है जिन्हें हम लोग भूलते जा रहे हैं, उनको तरोताजा किया जाए। तो वो आवाज इस प्रकार है, जरा सुने मेरी।
1: हाँ।
2: जैसे रूना लैला हुआ, वारी जयराम हुई।
1: हाँ।
2: और सुमन कल्याणपुर हुई, जोराबाई अम्बाला, उमा देवी, सुरैया। हाँ। प्रीति सागर, गीता दत्त, बेगम अखतर, शीतलकर, सुलक्षणा पंडित, राजकुमारी, शमशाद बेगम, सचिन देव बर्मन, श्याम पलक। हाँ। महमूद, के एल सहगल, यशुदास, चंद्रानी मुखर्जी, पंडित प्रदीप, शोभा गुरडू, दिलराज कौर, नूर जहां और परवीन सुल्ताना।
1: चलिए,
2: ये आवाज बहुत कम मिलती है।
1: चलिए, ये जो आपने नाम गिनाए हैं इनको हम थोड़ा सा देख करके देवराज जी,
0: जी
1: एक लिस्ट बना करके कम से कम हमारे जो युवा साथी हैं बता दीजिएगा कि भाई भूले बिसरे गीत में ये नाम अगर जाए तो शायद श्रोताओं को कार्यक्रम की सार्थकता शायद।
0: जी जी बिल्कुल। और चौधरी साहब, आपकी हम ये प्रशंसा करना चाहेंगे कि आपने इतनी लंबी फहरिस्त बना रखी है इन महान कलाकारों की।
1: जी जी,
0: इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
2: लोगों से मिला है हमें सब कुछ, रेडियो जो हमारा सच्चा साथी रहा है।
1: चलिए चलिए, आपने प्रतिक्रिया दी, सुझाव दिया, आज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: और किसी कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
2: इस सप्ताह बहुत सारे कार्यक्रम सुने सर
0: जी,
2: केंद्र से सभी कार्यक्रम अच्छे जा रहे हैं और आपकी मेहनत सार्थक सिद्ध हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो।
3: हेलो, नमस्ते बाबू। नमस्ते बाबू जी,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए।
3: राया से।
0: राया से, क्या शुभ नाम है?
3: योगेश कुमार।
0: योगेश जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया दें।
3: कार्यक्रम तो बढ़िया है, पर एक नाटक आता था पहले, काकी नाम से, 25-30 साल पहले करी गई।
0: नाटक का शीर्षक क्या बताया आपने?
3: 30 साल पहले नाटक को
0: जी,
1: तो आप उसको फिर से सुनना चाहते?
3: हाँ जी।
1: चलिए, अगर हमारे अर्काइव में पुराने कार्यक्रमों की जो लिस्ट है या जो प्रिजर्व किए गए हैं संग्रहालय में, अगर उसमें होगा तो जरूर कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम आप तक फिर से मिलिए, कार्यक्रम में सुनवाया जाए। आपने इस कार्यक्रम को सुना है पहले?
3: हाँ, सुनाया, गांव में रहते थे, छोटे छोटे से बच्चे जो सुनते थे पार्क के नाम से।
1: चलिए, अगर उपलब्ध होगा तो जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि हम तो इसीलिए बैठे हैं कि कार्यक्रम नए हो या पुराने, हमारे श्रोता जो सुनना चाहते हैं वो आकाशवाणी के माध्यम से सुने। तो आपकी अगर ये फरमाइश पूरी हुई तो जरूर करेंगे
0: जी। सिंह साहब प्रयास करेंगे, आकाशवाणी का जो संग्रहालय है हमारे यहाँ जो प्रिजर्व हैं, आर्काइव प्रोग्राम्स हैं, उनमें अगर ये प्रोग्राम मिलता है तो अवश्य आपको सुनवाया जाएगा।
1: कुछ नए कार्यक्रमों के बारे में कहेंगे?
3: नए तो बहुत अच्छे हैं, सभी प्रकार के नाटक अच्छे, हमारे कार्यक्रम अच्छे हैं।
1: चलिए बढ़िया,
3: नाटक भी अच्छा है, सब भी अच्छे
0: हैं जी। और कुछ कहना चाहते हैं?
3: और तो जी कहते हैं सुबह सुबह दिक्कम संबंध नहीं, साके बोलते हैं, साके 1948
1: सक्षमत
0: जी।
3: हाँ,
1: ऐसा है, शक संबत वो है जो जिससे सरकारी कार्यक्रम सारे चलते हैं, तो विक्रम संबत है और संबत तो बहुत है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम सारे शक संबत के माध्यम से ही होते हैं। तो आकाशवाणी की परंपरा है कि उसमें शक संबत ही बोला जाता है, उसमें आकाशवाणी की परंपरा में तो जहाँ तक हमें याद है वो शक संबत से ही चलता रहा है और अभी भी वही चल रहा है उसमें। चलिए, आप जुड़े और फोन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।
0: राधे जी। सिंह साहब, ये तो हमारे श्रोताओं ने फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी बात की,
1: बिल्कुल,
0: और अब आपके हाथ में एक व्हाट्सएप संदेश लगा हुआ है, उसको पढ़ दीजिए।
1: हाँ, हमारे श्रोता जो राही जी है, प्रकाश राही जी गोवर्धन से
0: जी।
1: उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य के कार्यक्रम तो काफी कुछ आपके सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम निकट भविष्य में ये रास्ते जिंदगी के अगर आप कुछ सोच पा रहे हो तो मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे कार्यक्रम हम एक दो शीर्षकों से लेकर के आना चाह रहे हैं। उसमें एक कार्यक्रम ऐसा है जो ब्रज 84 कोस, जो हमारा पवित्र ब्रज धाम है
0: जी,
1: इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पौराणिक हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो

0: अध्यात्म के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो संत निवास करते
1: जी
0: हैं। तो जो कुछ भी है यहाँ की भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का खान पान, वन उपवन, नया और पुराना,
1: जी
0: तो ब्रज क्षेत्र में जो कुछ भी है वर्तमान उसमें, उसको लेकर के हम एक सीरीज प्लान कर रहे हैं
1: जी
0: जो किसी न किसी जगह पर
1: केंद्रित
0: हाँ
1: होगी।
0: एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर के आएंगे। इसी तरीके से जो राय जी ने कहा कि ये रास्ते जिंदगी के, इसको भी हम सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में, क्योंकि पहले ये गुरुवार को कार्यक्रम होता था,
1: जी
0: वहाँ हमारा स्वास्थ्य का कार्यक्रम जा रहा है, तो किसी न किसी दिन उसी समय पर हम एक सीरीज इसको अब ऐसा शुरू कर रहे हैं कि विकसित भारत एक संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस पर जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उस पर जिला प्रशासन की सोच है, उस पर और जो बहुत सारे लोग समाज में रह करके अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ के रूप में कर रहे हो, चाहे व्यक्तिगत संस्था से कर रहे हो, या व्यक्तिगत संकल्पों के साथ जुड़ करके कर रहे हो, बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो समाज में दिखाई दे भी रहे हैं
1: जी
0: लेकिन जिनकी चर्चा अब कम हो पा रही है। तो रेडियो के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम जो समाज में पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, ऐसी पहलें, ऐसे संकल्प हैं जो लोगों को जोड़ करके उसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, चाहे हम वृक्षारोपण की बात करें, चाहे समाज में एकीकरण और सद्भाव की बात करें, क्योंकि बिना सकारात्मकता और बिना जन पहल के, बिना सहयोग के, तो देवराज जी आप जानते हैं कुछ
1: बिल्कुल
0: कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। लेकिन इसकी पहल भी लोग कर रहे हैं, तो उसको जोड़ करके एक कार्यक्रम हम ये रास्ते जिंदगी के माध्यम से किसी न किसी दिन, चाहे वो बुधवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम हम सजीव जो है साप्ताहिक तौर पर जरूर लेकर के आए, ऐसा प्रकाश राय जी जो सोच रहे हैं, हम भी उस पर ये बताना चाहेंगे कि ऐसा हमारी भी ऐसी सोच है।
1: जी। और सिंह साहब एक व्हाट्सएप संदेश और भेजा है हमें चंद्रशेखर शर्मा जी ने, और जो छाता से भेजा है ये लिखते हैं कि पिछले 3 जुलाई को हमने एक सजीव कार्यक्रम सुना जो टीकाकरण पर आधारित था। 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनके लिए टीकाकरण पर जो कार्यक्रम था वास्तव में बहुत उपयोगी कार्यक्रम था। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम था। आकाशवाणी ने ये कार्यक्रम प्रसारित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं
0: जी।
1: सभी।
0: जी बिल्कुल, जो HPV वैक्सीन वाला ये कार्यक्रम है सरकार
1: जी
0: की बहुत अच्छी पहल है, और जैसा कि उस कार्यक्रम में जो हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रोहिताश जी थे,
1: जी।
0: उन्होंने बताया कि इस कॉस्ट कितनी है, अगर प्राइवेट रूप में इसको आपने लगवाया है,
1: जी
0: इस कार्यक्रम को यूज किया है, तो वो उसकी लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए की कॉस्ट वो
1: बिल्कुल,
0: बता रहे थे।
1: और साधारण व्यक्ति के लिए उसको अफोर्ड कर पाना बहुत
0: बहुत
1: मुश्किल होगा।
0: मुश्किल है। तो ये जो है हमारी जितनी भी CHC हैं जो दसों
1: जी
0: ब्लॉकों पे हैं, हमारी जिला जो अस्पताल है
1: जी
0: उसमें सोसैया अस्पताल वृंदावन में, कोसी में एक CHC अलग से है, तो बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो ऐसी बच्चियां जो पारिवारिक जीवन में 14 वर्ष के बाद जाएंगी, जीवन के बाद बहुत संभावना इसकी रहती है।
1: जी
0: दूसरी ऐसी कैंसर का प्रकार है जो महिला में होता है, जो छाती और ब्रेस्ट कैंसर के बाद आता है,
1: जी
0: तो उससे बहुत बड़ी निजात एक पारिवारिक जीवन में मिलने वाली है, और आज अगर हम अपनी बच्ची को वो लगवा देते तो ये एक बड़ा नेक काम है, बड़ा
1: बिल्कुल
0: महत्वपूर्ण काम है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है, ऐसा पहले भी लोग कह गए, आज भी हम मानते हैं कि स्वास्थ्य बड़ा धन है, तो उस धन को सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है इसमें।
1: और वो कहते हैं ना कि अगर स्त्री स्वस्थ है पूर्ण रूप से
0: जी
1: तो वो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और स्वास्थ्य निर्माण अच्छा परिवार का
1: जी
0: वो रहे तो ये एक बहुत बड़ी काम जीवन में हो जाता है इसमें। तो अभी तो मुझे लगता है समय इतना ही है देवराज
1: जी।
0: जी
1: बिल्कुल, समय हो चला है, और अब हम कार्यक्रम में विदा लेने से पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम का नंबर। हमारे श्रोताओं के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135, और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाकर हमें फोन कर सकते हैं। और जो श्रोता व्हाट्सएप से अपना संदेश भेजना चाहते हैं वो 94 122 25 575 नंबर पर अपना संदेश भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं रख सकते हैं
0: जी, पत्र भी लिख सकते हैं
1: जी।
0: ये व्हाट्सएप और टेलीफोन की बात हुई लेकिन पत्र अभी बंद नहीं हुए हैं, जो भाई हमारा करना चाहते हैं तो उसमें यही है, फोन कॉल्स की बात, श्रोताओं के साथ ये कार्यक्रम का नाम है, लेकिन पता रहेगा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन कोड है

0: 2 8 1 0 0 0 3। तो मथुरा वृंदावन रोड डाल करके आप पत्र भी लिख सकते हैं। अभी विदा लें देवराज जी।
1: जी, अगले सप्ताह तक के लिए हम श्रोताओं से करते हैं नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

राज्यपाल का याज्ञिक उदित नारायण और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गदर में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत उत्तम सिंह का।

आप सुन रहे थे ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म जीनियस से। इस गीत को लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत हिमेश रेशमिया का।

आप सुन रहे थे सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म जानशीन से। इस गीत को लिखा टिन्नू सिंह ने, संगीत विधु का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट

0: विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,88,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत

0: दीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
1: द सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
3: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
6: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
7: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
5: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गाई

0: गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजनबाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गीत रचना जयदीप साहनी की, संगीत सलीम सुलेमान का।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं अलका याग्निक, अभिजीत और सपना मुखर्जी की आवाजों में ये गीत फिल्म जुदाई से। गीत लिखा समीर ने, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और कमाल खान की आवाजों में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम मैंने प्यार क्यों किया। गीत रचना समीर की, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और

0: कन्वीनियंस के साथ शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे एआर रहमान, फहीम अब्दुल्ला और इरशाद कामिल को फिल्म तेरे इश्क में। और इसी की सीध के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्या 5:30 पर अपनी सांध्यकालीन सभा में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में पीड़ों का कितना बड़ा महत्व होता है। मनुष्य के जन्म से लेकर और अंतिम समय तक हम सबको लकड़ी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हवन और अंतिम समय भी आप सभी जानते हैं कि लकड़ियों की आवश्यकता होती है। वृक्ष परमार्थ के लिए बने होते हैं, उनके लिए अपने लिए वो कुछ नहीं करते। जिस प्रकार नदी सबके लिए होती है, सबको जल प्रदान करती है, उसी प्रकार पेड़ भी हम सबको शुद्ध वायु देते हैं। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और आवश्यक कदम होता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को

हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और साथ ही बरसात में मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित करने में भी पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। तापमान को नियंत्रण भी करते हैं, हम सबको छाया भी प्रदान करते हैं, और बाष्प के माध्यम से हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखकर हमें बरसात के रूप में जल भी प्राप्त कराते हैं। जल संरक्षण और मिट्टी से बचाव भी पेड़ों के माध्यम से होता है। हम सबका कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल नीम, पीपल, बरगद, आंवला जैसे देसी पौधे लगाएं। समारोह में पौधे दें, जन्मदिन, शादी या किसी अन्य उत्सव पर उपहार के रूप में पौधे प्रदान करने की आरंभ करें। साथ ही पेड़ लगाने से ज़्यादा आवश्यक है पेड़ों की देखभाल करना। जिस प्रकार एक बच्चे की देखभाल की जाती है, उसी प्रकार पेड़ों की देखभाल होती है, तभी पेड़ होते हैं। कहने का आशय ये है कि जीवन में लकड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अपनी दृष्टि घुमा के देखिए कि लकड़ी की आवश्यकता समय समय पर किसी भी रूप में होती ही रहती है। तभी तो कहा गया है, वृक्ष कबहु न फल वकें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धर्यो शरीर। वृक्ष हम लगाते हैं तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए फल मिलते हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी जो पेड़ लगा गई, वो चाहे वो अमरूद हों, चाहे वो आम हों, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के फल हों, हमें प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उस कर्तव्य के तहत जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने किया है, हम भी करें और अपने अगले आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं और साथ ही अपने लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी हम सबको पेड़ों के माध्यम से मिलती है। ये बात हुई कुछ पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या?
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बना

0: अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: घर परिवार प्रस्तुत है एसपी सिंह की लिखी झलकी। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश सिंह।

0: आ गए बीबी के गुलाम, मेरी प्यारी छोटी भाभी। भैया यानी ये जोरू के गुलाम आज नीचे ही अपनी प्यारी बहन भाभियों के साथ चाय पियेंगे। क्यों गुलाम जी?
1: मार खाएगी शैतान कहीं की।
0: लो जी चढ़ गई अटारी पर, हम तो कुछ हैं ही नहीं, हमारे लिए चाय तक नहीं बनाई। जाओ भैया तुम भी जाओ, तुम्हारा भी बीबी बिना जी नहीं लग रहा होगा। अगर अभी नहीं गए तो देख लेना, रात के खाने में सबको तेज नमक ही खाना पड़ेगा।
2: अरे चुप भी कर, जा बेटे तू ही ऊपर जा, पता नहीं क्यों तेरी बहू हम सबसे नाराज सी रहती है।
3: माँ जी यह तो आप गलत कह रही हैं, हम सब यहाँ क्या गैर हैं जो हमें छोड़कर अकेले ऊपर चाय पी जाएगी। यहाँ इस घर में वही रानी बहू हैं जो अटारी पर चढ़ी रहती हैं, हमारे साथ कभी भी घुल मिलकर नहीं बैठती। बस सारा रिश्ता विजय लाला से ही है, हमसे तो कोई नाता ही नहीं।
0: नहीं भाभी, वह पढ़ी लिखी ऊंचे घराने की हैं, उनके भाई जनरल मैनेजर हैं, वे सभ्य लोग हैं, हम क्या जाने रहने की तमीज। चाय तो भाई डाइनिंग टेबल पर पी जाती है। तुम बड़ी भाभी एकदम फूहड़ हो, बैठ जाती हो पसर कर पलंग पे, तुम्हारे साथ कैसे पी सकती हैं वो चाय।
1: खबरदार आशा जो आगे कुछ बोली, बहुत जवान चलाना सीख गई है, जब यहाँ ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी। राधा को देखा है, कितना सुनाते हो तुम सब उसे, एक शब्द भी विरोध में बोली है वह कभी।
0: हाँ जी वह आपकी राधा नक्षत्र है और आप उनके चांद। जाओ भाई ऊपर, बड़े भैया अब तक आते ही भाभी के साथ कभी कमरे में नहीं घुसते, एक तुम हो कि शर्म नहीं आती।
3: सही बात तो कह रही है आशा दीदी, अम्मा जी आपने ही विजय को छूट दे रखी है। देखो बीच वाले देवर भी ऐसा नहीं करते, अगर अभी इसे बीबी के गुलाम बनकर रहे तो जिंदगी नहीं चलेगी।
1: तुम लोग तो बस

0: राधा, तुमने बुरा तो नहीं माना?
1: नहीं जी, जब आपके घर वालों को मैं बुरी लगती हूँ तो मायके ही चली जाती हूँ। हमारे घर में तो इतनी शांति रहती है कि कहीं हाय तौबा या बेहूदगी दिखाई तक नहीं पड़ती। ये आशा दीदी कितना बोलती हैं, मैं तो कभी अपनी भैया भाभी से ऐसी बदतमीजी से बोल ही नहीं सकती। बड़ी भाभी भी तो उन्हें शह देती रहती हैं, यहाँ तो मुझे बाहर की लड़की समझकर पराया ही माना जाता है।
0: राधा, छोड़ो भी इन बातों को, इसे हमारे घर की रीति ही समझ लो। ये सब लोग तुम्हारे साथ घुल मिलकर बैठना चाहते हैं, तुम तो शायद इन्हें अभी समझ ही नहीं सकी हो जो इतनी कटी कटी रहती हो। अरे, हमारी दूसरी भाभी जब आई थी तब हम उन्हें भी चढ़ाते थे, पर कभी भी बुरा नहीं माना उन्होंने, हमेशा हंसती ही रहती थी।
1: लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब मुझसे जलन मानते हैं।
0: तुम्हें इन सबके साथ हिलमिल कर बैठने की आदत डालनी चाहिए, तुम उगती नहीं अकेले ऊपर बैठे बैठे। तुम्हारे घर में तो मुझे ऐसा लगता है इंसान नहीं मशीनें रहती हैं, सभी अपने आप में लीन, किसी को किसी की फिक्र नहीं। जहां आदमी होंगे बोलेंगे हंसेंगे और लड़ेंगे भी। अच्छा जाओ, एक कप चाय ले आओ। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं मंगवाता हूँ चाय।
1: नहीं नहीं, मुझे लाने दो, वरना वो लोग बोलेंगे कि बीबी ने सिखाया होगा।
0: नहीं, तुम नहीं जाओगी। बड़ी भाभी, आशा, अरे कोई है, मेरे लिए चाय बनाकर भेजो।
2: क्यों, अपनी महारानी से नहीं कह सकते?
0: महारानियां तो बैठकर राज करने के लिए होती हैं। चल नौकरानी, तू ही चाय बना।
2: देख लो माँ, मान लेना भैया, छोड़, कान छोड़ना।
3: इतनी बड़ी लड़की के कान पकड़ता है, शर्म नहीं आती तुझे?
0: बड़ी भाभी,

0: अब तुम मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती। पहले उठकर मुझे खाना देती थी, अब बैठी रहती हो। जब तुम मुझे नहीं पूछोगी तो बनूंगा उसी का गुलाम। मैं तो खाने का गुलाम हूँ, जो मेरा पेट भरेगा मैं तो उसी का ही गुलाम बनूंगा।
1: लगता है महारानी से लड़ाई हो गई है, तभी आ गए नीचे भाभी के पास थाली के बैगन।
0: लड़ाई हो मेरे दुश्मनों की, फाड़ में जाओ तुम सब औरतें, मैं खुद ही बना लेता हूँ चाय, और कहो तो तुम सबको बनाकर पिला दूं। बस तुम लोग सज धज कर बैठी रहो, और मर्दों के घर आते ही तानाकशी करो, खूब लड़ाई करो। ठीक है, कल से ही मैं घर पे ही नहीं आया करूंगा, बाहर होटल में चाय पी लिया करूंगा, फिर कुछ मत कहना।
1: किस लिए गुस्सा होते हो विजयलाला? चाय मैं अभी बना देती हूँ, मूड क्यों खराब कर रहे हो? जाओ, अगर फिल्म जाने का मन है तो चले जाओ, अब भी समय है, 6:45 ही तो बजे हैं।
2: भैया आज ही चले जाओ, नहीं तो कल मजले भैया भाभी बिजनौर से आ रहे हैं, और गजेंद्र भैया भी दिवाली की छुट्टियों में कल आ रहे हैं, फिर जाना नहीं होगा।
0: शैतान कहीं की, पहले ही ना लड़ती तो क्यों देर होती। राधा, ओ राधा, आओ नीचे, चलो जरा घूम के आते हैं।
1: हाँ नहीं भाभी, चाय नाश्ता मैं ला रही हूँ, तुम झटपट तैयार हो जाओ।
3: अरे अभी तो इतना लड़ रहे थे और अब लाड़ हो रहा है, पता नहीं ये लोग कैसे हैं।

0: ये लीजिए, ये टॉकीज भी हाउसफुल। देख लिया आपने अपने घर वालों का रवैया? अरे अगर पहले ही जाने दिया होता तो क्यों देरी होती? पहले लड़ते हैं फिर प्यार करते हैं, ये भी कोई बात है? सब नाटक करते हैं।
1: ओ राधा, ये नाटक नहीं, सच पूछो तो यह भी उनका मजाक और छेड़छाड़ है। तुम्हारे विवाह को कुल 2 माह हुए हैं, धीरे धीरे समझ जाओगी कि इनके दिलों में कपट नहीं है। कल छोटी भाभी आ रही हैं, देखना हम सब कैसा तंग करते हैं उन्हें। और सच पूछो तो वह भी खूब आनंद लेती हैं, देखा नहीं तुमने? मैंने बड़ी भाभी के मुंह पर टिकट फाड़ कर फेंक दिए थे, वह तो बुरा नहीं मानी।
0: सब बकवास है, मुझे ऐसे बेहूदे मजाक अच्छे नहीं लगते।
1: खैर छोड़ो, आओ तुम्हारे भैया भाभी को दिवाली की शुभकामनाएं अग्रिम दे आए। परसों दिवाली है, घर में चहल पहल हो गई तो जाना मुश्किल हो जाएगा।
0: क्यों, दिवाली के दिन भी मैं अपने घर नहीं जाऊंगी क्या?
1: ऐसी बात नहीं है राधा, तुम्हारी पहली दिवाली है, तुम्हारे कारण तो बिजनौर वाले भैया भाभी आ रहे हैं। देखना गजेंद्र आएगा तो कितना मजा आता है यहाँ।
0: तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा मजा, मैं तो जरूर मायके जाऊंगी उस दिन।
1: अच्छा भाई, परसों की बात परसों देखेंगे, चलो बाजार घूमते हुए तुम्हारे घर चलते हैं।

0: अरे रामू काका, कैसे हो? और ये रुआंसी सी सूरत क्यों बना रखी है?
1: बीबी जी, आप आ गए? आप ही चल के देख लीजिए, मालकिन काफी बीमार हैं, पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। सब अपने अपने मजे में मस्त हैं। आप ही कुछ कीजिए बीबी जी, आप ही कुछ कीजिए।
0: ठीक है रामू काका, तुम चलो, मैं देखती हूँ। ओ माँ, कैसी हो? सच तुम लोगों में से कोई भी मुझे देखने नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि आज फिल्म देखने निकले तो मुझे ये यहाँ ले आए।
2: अरे बेटी, तू आ गई, अच्छा किया अच्छा किया। ये सामने अलमारी की चाबी रखी है, जरा मुझे दे दो। बेटे विजय, ये 1200 रुपए हैं राधा की पहली दिवाली के लिए। मेरी तबीयत खराब है, सो मैं बाजार से साड़ी नहीं ला पाई, तो खुद ही अपने लिए दिवाली की साड़ी, फल और मिठाई ले लेना। क्या करूं, मजबूरी है। और ये जोड़ों का दर्द सर्दी शुरू होते ही।
3: माँ जी, हम रुपए लेने नहीं, आपसे इसे मिलाने आए हैं। जब राधा के भैया कार में ताश खेलने जा सकते हैं तो हमारे घर सामान भी ला सकते हैं। मेरी माँ इस तरह

0: से नहीं लेगी। दिवाली का शगुन कायदे से भेजा जाता है।
1: क्या करूं बेटा, सब अपने आप में मस्त हैं। न बड़ा सुनता है न छोटा। बहू को तो ताश खेलने और किसी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं है।
2: बीबी जी, ये लीजिए चाय।
3: लो विजय, चाय पियो। ये लो।
0: चलो राधा, देर हो जाएगी।
3: अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना माँ। चुप हो जा बेटे। माँ चुप हो जा।
0: अरे चलो भी राधा। अच्छा माँ जी, नमस्ते।

0: Vete.
1: देख लिया तुमने, तुम्हारे घर में कैसी शांति है। तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी शांति। किसी को किसी की परवाह नहीं। बीमार सास को छोड़कर ताश फेंकना जरूरी है। तुम्हारे भैया कार में दुनिया में तो घूम सकते हैं। मैं तो स्नेहवश आ गया था। जब उन्हें फुर्सत नहीं तो हम भी इतने गिरे हुए नहीं हैं।
0: छोड़ो भी विजय अब।
1: क्यों भाई, मेरी तरफ से कुछ चाहिए दिवाली का तोहफा तो अभी ले लो। साड़ी तो अम्मा तुम्हें देंगी ही। आज के दिन बड़े भैया सबके लिए कपड़े लाते हैं। धनतेरस जो है। हाँ, कोई और तोहफा चाहिए तो बोलो।
0: नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
1: अच्छा राधा, तुम घर जाओ। मैं सामने विनय को उसका पत्र दिया हूं। आज शाम को उसके बॉस ने मुझे उसे देने को दिया था। मैं बस अभी एक मिनट में घर आया।
2: ये वाली कैसी रहेगी? फिरोजी कलर की?
3: अरे साड़ी तो बस दो ही है इसमें, भैया दो ही लेके आए।
2: नहीं, इसका कलर ज्यादा ठीक है।
3: वो वाली वापस करा दो।
2: अम्मा, यही राधा भाभी पर अच्छी लगेगी।
4: अम्मा, नई भाभी बिल्कुल गुड़िया सी लगेगी।
2: हाँ माँ जी, नई बहू है और है भी काफी गोरी। गुलाबी रंग खिलेगा, आप यही ले लीजिए।
4: पर है भी तो 1000 रुपए की, वो 700 रुपए वाली ठीक रहेगी।
2: नहीं अम्मा, तुम मेरा सूट ये 300 वाला मत लो। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम भाभी के लिए ले लो। पहली दिवाली है इस घर में उनकी।
0: एक वो घर है जहां पैसा है, शोहरत है, पर सब दिखावा है। जहां परिवार के सदस्यों के लिए किसी को फुर्सत नहीं है, प्यार नहीं है। सच ही कहता है विजय, वो घर मशीनों का घर है। यहां कितना प्यार है, कितना त्याग है। सच, गलती मेरी ही है। अब मैं इन सबके साथ घुल मिल के रहूंगी, सबके साथ मिलजुल के रहूंगी।
5: नमस्ते नई भाभी।
2: ओ गजेंद्र भैया, आप हैं?
5: हाँ जी, हमने सुना कि जोरू को गुलाम अपनी जोरू के साथ फिल्म देखने गए हैं, तो अब हमने सोचा कि उन्हीं के कमरे में सफर की थकान उतार लें। नीचे तो सो नहीं सकते, बड़ा शोरगुल है।
2: क्यों घबराते हो देवर जी, पढ़ाई कर लो, आपको भी जल्दी से जोरू का गुलाम बना देंगे। हमें पता चला था कि हमारे प्रिय इकलौते देवर छुट्टियों में आ रहे हैं, तो बस हम उनके स्वागत में फिल्म छोड़कर चले आ रहे हैं।
5: वाह भाभी, बड़ी जल्दी ही रंगी हमारे रंग में।
2: देख लो।
1: भाई ऐसी हंसी की क्या बात है, हम भी तो सुने। और तू तो कल आने वाला था, आज कैसे अटपका?
5: हैरान करना चाहता था, पर तुम तो अपनी
2: जोरू के साथ गुलामी कर रहे थे, है ना?
1: अरे वाह राधा, तुम तो।
5: क्यों भाभी, सारी फुलझड़ियां हंसी की आज ही छुड़ा लोगी या कुछ दिवाली के लिए भी रखोगी?
2: अरे भैया, उस दिन तो पटाखे छूटेंगे, पटाखे।
6: अभी तक आप सुन रहे थे SP सिंह की लिखी झलकी घर परिवार। इसमें भाग लिया देवेंद्र प्रसाद शर्मा, नवनीत भटनागर, नीलम सिंह, मनीष श्रीवास्तव, साधना भार्गव, रेणुबाला द्विवेदी और मनीषा माथुर ने। इस झलकी को प्रस्तुत किया राजेश सिंह ने।

0: योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा का उन्नत रूप है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिन की गारंटीकृत योजना गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान किया गया है। स्वरोजगार योजनाओं के लिए सरकार के द्वारा 10 से 50 लाख रुपए का लोन भी दिया जा रहा है। इसमें 15 से 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये योजना चलाई जा रही है और भी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबंध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात

साथियों, आपने सुनी झलकी। गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजना के तहत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीबों की आजीविका सुधारने, उन्हें मजदूरी देने व खुद को व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में मुख्य रूप से दो श्रेणियों, मजदूरी वेज एम्प्लॉयमेंट और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बांटा गया है। मजदूरी रोजगार योजना के तहत विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन वीजीबी रामजी एक्ट

0: की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:15 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। इस कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे चर्चा खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। दूसरी चर्चा आप सुनेंगे जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण और पर्यावरण का संबद्ध विषय पर। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अपनी ही पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। संध्या वंदन कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 6:45 पर। इसमें आप सुनते हैं कुछ गैर फिल्मी भक्ति संगीत। एक बार इसको पुनः सुन लीजिए। संध्या वंदन कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मों से भक्ति संगीत के गाने। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में 7:05 पर आप सुन सकते हैं ब्रज काव्य मकरंद। प्रस्तुत करेंगे अटल राम चतुर्वेदी। प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से लेकर आएंगे। 7:30 पर आप सुनेंगे ICC वोमेन्स 20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के मध्य लॉर्ड्स लंदन में मैच का आंखों देखा हाल। कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकते हैं सात बजकर 31 मिनट पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। देशगान आप पुनः सुन सकते हैं 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज आप सुनेंगे निकाह फिल्म के कुछ गीत। सुहाने तराने हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से लिखेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और अंग्रेजी समाचार 11:05 पर आप सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं देश गान।

आप सुन रहे थे देशगान, स्वर थे शारदा बेलांकर के, गीत हरिओम दुबे का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ होता है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जल संरक्षण और संवर्धन को एक प्रमुख मंत्र है, जाको अर्थ है कि बारिश के पानी को व्यर्थ बहवे ते रोकें, वह छोटे चेक डैम, मेड़बंदी और तालाबन के माध्यम से वहीं जमीन में सूखने देनो ताकि भूजल स्तर बढ़े। भैया बारिश के मौसम में हमें न सिर्फ खरीफ के काजे पानी मिले है, बल्कि अगर हम हिसाब से जाकर संरक्षण करें तो रवि के मौसम में हूँ हमारी खेती को जी पानी लाभप्रद है सके है। भैया जल संरक्षण के काजे खेत के चारों ओर ऊंची मेड़ बनाए गए, बारिश के पानी को खेत में ही रोक दियो जाए है, जाते मिट्टी को कटाव रुके है और नमी बनी रहे है। गांव और खेतन के ढलान पे छोटे स्ट्रेच या गड्ढे बनाए जाए हैं, जाते अतिरिक्त पानी जमीन में रिसकें, भूजल स्तर को बढ़ावे है। भैया खेत में छोटे तालाब खोद के बारिश को पानी इकट्ठो कियो जाए है, जाको उपयोग सूखा के समय सिंचाई को कियो जा सके है, जा तरह ते जल संचयन के अनेकन लाभ मिलेंगे। जब पानी को स्थानीय स्तर पे सहेजो जाए है तो कुआ, बोरवेल और तालाबन में साल भर जल उपलब्ध रहेगा, जाते सिंचाई में लाभ मिलेगा, जाते मिट्टी को कटाव रुके है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बेहतर हुई है। भैया किसान और ग्रामीणन को पानी के काजे दूरस्थ स्रोत या बारिश पे अत्यधिक निर्भर न रहना पड़ेगा, तो भैया खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में जी वाक्य किसान भैया और ग्रामीणन को हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जावाद के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं ऐसा ही एक लोकगीत।

पानी की खातिर कर दई तेरे गाम सगाई। अरे तेरे गाम को मीठो पानी फूले लाए समाई, और तेरे गाम को मीठो पानी फूले लाए।

लोकगीत भैया, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और पर्यावरण को आपस में गहरा संबंध है जी। तीनों एक चक्र की तरह काम कर रहे हैं। यदि एक असंतुलित होए है तो पर्यावरण को पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होए है। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी और जल के संबंध के बारे में। स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी में पानी को सोखवे और संजोवे के काजें रखवे की प्राकृतिक क्षमता होए है। मिट्टी में मौजूद यही नमी पौधा फसल और पेड़न के पनपने को मुख्य आधार है। भैया, जब मिट्टी को कटाव हुए है तो वो बहके नदी और झीलन में जमा है जाए है, जाते जल निकायन की गहराई कम है जाए है और बाढ़ को खतरा बढ़े है। जब मिट्टी संरक्षित होगी और वनस्पति पौधे होंगे तब बारिश को पानी बहवे के बजाय रिस के जमीन के अंदर जाए है, जाते भूजल स्तर ऊपर बढ़े है। भैया, जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई मिट्टी के क्षरण और कटाव को रोके है। सही मात्रा में पानी को उपयोग मिट्टी में लवणता और क्षारीयता को बढ़वेते रोके है, जाते मिट्टी की उर्वरता बची रहे है। मिट्टी एक प्राकृतिक फिल्टर को काम करे है जी। वर्षा जल को साफ करके भूमिगत जल स्रोतन तक पहुँचावे है। मिट्टी ही सूक्ष्म जीव कीड़ा मकोड़ा और वनस्पतियन को घर है। भैया, मिट्टी और जल की जा बात के बाद पहले सुन लें जी लोकगीत मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में, फिर करेंगे जल और पर्यावरण के संबंध की बात।

मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में भैया ले रहे हैं जा लोकगीत को आनंद। अब बात जल और पर्यावरण के संबंध की। भैया, जल ही पर्यावरण में हरियाली, पौधे और वन्य जीव के जीवन को मुख्य आधार है। जल चक्र पृथ्वी के तापमान और जलवायु को नियंत्रित रखे है। पेड़ पौधे और जंगल मिट्टी को पकड़ के रखे हैं और बारिश के पानी को रोके हैं। जब पानी मिट्टी में रिसे है तो नमी बनी रहे है। यही नमी पर्यावरण को हरो भरो और स्वस्थ रखे है। जाते मौसम चक्र सामान्य चले है तो भैया बात जी है कि जल एवं मृदा संरक्षण पर्यावरणीय स्थिरता की कुंजी है। अब सुनो अगला लोकगीत। स्वर हैं शालिनी शर्मा की।

भैया ने सुनो जी लोक गीत, स्वर दियो हो शालिनी शर्मा ने, डोरीलाल गोला के स्वर में सुनो जी अगलो लोकगीत।

डोरीलाल गोला के स्वर में भैया ने सुनो जी लोग गीत। भैया जाई के संग आज के जा कार्यक्रम को यहीं पे दें हैं विराम। सब भैयान को हमारी राम राम।

आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

रविंद्र जैन और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था गंगा सागर। आइए सुनते हैं आशा भोंसले, महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल और साथियों को फिल्म अवतार में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों को फिल्म सीमा में। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं अटल राम चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ब्रज काव्य मकरंद।
1: आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हूँ कवि श्रोमणी श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी प्रीतम जी की आषाढ़ और सावन माह की वर्षा ऋतु से संबंधित कछु रचनाएं। आयो है आषाढ़ वाली जब ते जगी है आस, प्यास भरी अखियां ये बिछी पिए पथ में, प्रीतम प्रवास ते जो पतियां हूँ आन लगी, प्राण पगी बतिया की कहो कहा कथु में। नाचे लगे मोर चहूं और घोर शोर सुन, मन की मरोर करी मैन समरथ में, हिय की हुलास द्वार खोल के किवार देखे, त्यों ही दिखे आत प्यारे पिया बैठे रथ में। आवन सुनो है मैंने जब तेजू सावन को, गावन लग्यो है जिए त्यों ही मलहारी ने, प्रीतम अटान पे घटान की छटान झुकी, झूम झूम करे लगी मनु मनु हारी ने, कोकिन कोहक ही है हुक सी उठान लगी, नेह दर्शान लगी मेह की फुहारी ने, प्यारी ने सजन लागी सजन मिलन हेतु, मान हूं तजन लागी मैन की दुलारी ने। आए आज ज्यों ही प्रिय प्रीतम जू मेरे भवन, त्यों ही घन श्याम गिर दर्शन लागोरी, साज थी सेज साज सुभग सुरुचि सार, सरस सुधासो सन्यो सरसन लागोरी, सुवत सुहाग राग सुखद सिहाय गाई, चंचला लगाई ही है हर सन लागोरी, परसन लागो जवे प्रीत कर मीत मोही।

वरसन लागोरी। मुर्गाहू बन में ते जाने कहां दुरे जाई, बोलत ना बेन चेन जासो जिय में परे। दादुर दरेर की दुहाई ना सुनाई देत, जाई झिल्लिन की ना कानन की कान भरे। जुगनू जमात बक पात जनू गई जर, बर गई पौन जो ना भौनन की ओर ढरे। प्रीतम प्यारे को जु आवन भयो है तऊ, सावन को बादर उठ आदर क्यों ना करे। पायो हो जु त्रास अजो पिए के ना पास हिते, आस गई पूर अब तासो तू हरसी जा। दुबिको दर कौन से दया के द्वार खोले, ब्यार ओ फुआर ले जु ब्योम में दरसी जा। गरज हो हमारी सुन अरज गरज एरे, लोक पे लरज झूमि भूमि को परसी जा। एओ घन मीत मेरे प्रीतम लिहाज कर, गरीब निवाज आज ने कुतो बरसी जा। तेरी ही मिलन आस त्रास बनी आज हाई, प्यास सी लगन देखने कुतो तरसी जा। प्रीतम प्यारी की मलार मनुहार हेर, हिये मैं हो लास भर भामते हरसी जा। पावस प्यारे हे दयावस दया के निधि, विधि को विधान मान मो मन परसी जा। एहो घन श्याम वन मेरे घर, घिर के घुमर के गरज के बरसी जा। छाए हो जु छेल छोर छितहु को छोर किते, आए ना अजहू आई अब तो दरसी जा। तेरी ये स्नेह लता लुरी मुरी झुरी जात, चिरी चोंच चातक सीता पे तो तरसी जा। प्रीतम प्रवीण मन मोर तोर आस रहो, कहो मान नहीं नेकु मो तन परसी जा। एहो घन श्याम बन मेरे घर, घिर के घुमर के गरज के बरसी जा। आओ जु स्नेह और धारी बार धार ले जु, धरा की धरोहर कोने कुतो चुकाओ जु। मुर्गा बेचार इनकी मरी सी परी है कुंक, सूख रही दूब दया दान दे सिहाओ जु। प्रेम के पिपासे पीऊ बोलिए पपिया रहे, तिन पे तरस लाए त्रसा को बुझाओ जु। प्रीतम प्रवासी प्राण प्यार इनकी आए, अब नेह कर गेह गेह मेझर लाओ जु। कारे कारे बदरा ये चदरा से तने आई, बाजत मर्दंग जो गर्जन सुहानी के। रिम झिम रिझन सी परत फुआर कवो, बरसत में मनो नेह की निशानी के। प्रीतम मयूर मन झूम झूम नाच रहो, झोटन झमक मनो विद्युत बोरानी के। झूलत हिंडोरा हेम मंदिर में आज पिए, बाके बिहारी संग श्री राधा महारानी के। कैदो हेम मंदिर में सिकुरी सिहाई घन, नाच मन मोद भरो मैन सज धज में। कैदो पीत पदम मन माहि दीपो नीलम, ये खिल रहो अलि के पराग सले लज में। प्यारी प्रीत पुंज में जु प्रीतम स्नेह श्याम, पाई के दौरत की विलासता सहज में। झूम झूम झूलत के उमंग रंग झूला में, श्री बांके बिहारी आज वृंदावन ब्रज में। कौतुक अनोखो आली देखो आज कुंज बीच, प्यारी गई अंक पिया कर केली यो ललाम। रत की ना रीत विपरीत की ओ चाहो मन, भयो मनो मुठी में जू रति के अधीन काम। प्रीतम के प्राण पिए पौड़े पुन सेज ही है, सुषमा ल जानी तब उपमा के रूप धाम। सरसिज पे सोयो के चंचरी क चारु के धो, राधा हेम मंदिर में नीलम नगीना श्याम। एरी रेन सेन में ना मैन चैन लेन देत, पावस की सेन भेज जी आहुल सात है। गर्ज गर्ज घोर घिर गरज बिना ही येजु, बदरा निगोरो बदरा ही बतात है। बार बार बढ़ जय पे तड़ जय तड़ित वीर, नीरसी समीर पीर उर में उठात है। हो तो बिनु प्रीतम के गिन गिन काटो दिन, तापे ये

0: बरसात बरसात है, घन गरज गरज घन घोर घटा गिर, आवत घूम घूम ब्रज धाम की ओर ही, चली चमक चमक चंचल चपला उत, इत झूले कदम तरु लाडली हो रही, सखी गावत है राग मधुर पियू कोकिल, कहूं गज समगत ले नाचत मोरही, ठंडी पवन चलत नन्नी बुंदिया झरत, ठाड़ो जमुना तट प्रीतम चित चोराही।
1: अभी आप सुन रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे अटल राम चतुर्वेदी भैया। आषाढ़ सावन भादो ये महीना होए बरसात के, और इन महीनों में अगर प्रियतम प्रदेश में हो तो ब्रजांगना कहाँ सोचे हैं कि आयो आषाढ़ सुनो सजनी, कि आयो आषाढ़ सुनो सजनी, कि रजनी दिन घिर घटा घन छायो, छायो विदेशहि काम चरित्र, पर अंदेशो लग्यो पर संदेशो न आयो, भाई भली अपनी बस के धो, भाई भली अपनी बस के धो, कहूं कोई सो तूने सेज लुभायो, भयो कहा उनके मन माए कि पावस आयो पिया नहीं आयो। दूसरी सखी जो सखी बात कर रही बातें कहे कि अरे वीर बा प्रियतम को कोई दोष ना आए, जा पगडंडी पे है के या खेत में है कि वो गए है, बा में आज पानी भर गयो है, पगडंडी बिल्कुल दिख ही ना जा रही, कि भूमि हरी भई गेल गई मिट, कि नीर प्रभा भयो विवाह है, कि भूमि हरी बही केल गई मिट नीर प्रभा भयो विवाह है, कि कारी घटानु अंधेरो कियो दिन रैन में भेद कछु न रहो है, कि ठाकुर भोन ते दूसरे भोन लो जाते बने ना विचार महा है, कि कहा करे वीर विदेशी हमारो ब विदेशी विचार को दोष कहा है। ऐसी बात ब्रजांगना व सखी तक कर रही ही, तो भैया दखर दखर जिया करे मनुआ रहे उदास, फखर फखर पुरवा चले पिया नहीं है पास, सावन भादों को महीना हो प्रिया प्रदेश में हो तो वह नई नवेली ब्रजांगना के मन में अनेकों विचार आमे हैं। ऐसी हमारी ब्रजांचल की रीति है, और अब यही के संग आज को
2: नौकेंद्र ये बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
6: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
6: चलो
5: कहाँ
6: एडमिशन कराने हैं,
7: खाता हुआ एक्टिव।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
10: प्लेटो का कथन है

0: बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है, और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
2: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
3: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
4: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए की इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण

0: भूमिका अदा करेगा।
1: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव और टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर के व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक

0: अब एक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कथे मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीम है जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। और आप
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गीत जिसको पसंद किया है पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। यमतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपत साहू। मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवान, शीरकोट जिला बिजनौर से। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजरा भाई। चंडीगढ़ सिटी से शैफाली, शैफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से अवताप अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लोवना अंसारी और आलिया अंसारी। जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेवी, आराध्या, राजा नंदगांव छत्तीसगढ़ से। सिद्धार्थ नगर दुर्यापुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक, शहरी बंडे रकुला से बलदेव, दामोदर, अरुणा। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से और दुबिया नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था नमक हलाल। इसी गीत को पसंद किया था उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीत का। और अब हमें जो संदेश मिले हैं

कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राही नगर

गंज डोडवारा से शमसुल खान, अदनात खान, फैजाल खान, तबिश आबाद और अनु खान, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव और सत्यम, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबिया आलिया और आयान बाबू, बुलढाड़ा मालाड़ से वासुदेव और रमेश राव, ग्राम पंचायत कालेगाम जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, कुमार संचित, प्रथमेश सरवद, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। और ये संदेश हमें मिला है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केश रिधान और तुलसी मस्किन, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर, शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शंभू प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ, सायना और निवान शर्मा, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और समत हाशमी परिवार, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर और मनहर उदास को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हीरो। अब हमें जो संदेश मिले हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री, वर्षा और सुमन, हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा, सिरटे जिला सांगली से, इशरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ, ईशान, आजम, अरहान, गनगोला, दातागंज जिला बदायूं से, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जायद अली सैफी, आबाद खान, जोहान सैफी, लीवा मलिक, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश शैन,

सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय और इनके परिवारिकजन। उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश गीतका और कमला रानी बोधराज, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल। और ये संदेश हमें मिला है गांव नगला पोला से रमेश, पत्तो, धनीराम, भूरी, जानू, छोटू भैया और इनके परिवारिकजन, नगीना,

छोटू भैया और इनके परिवारीजन, नगीना और इनके सभी मिलने वाले साथी, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

चोर उठे देर उसे समार के है सीना उभार के लगाए पसीनों की गलियों के फेरे जाओ जी जाओ।

போதில் செய்தே உசித்த பாருக்கிறேன் இன்னாம் பாருக்கிறேன்.

0: 江湖。
1: आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को, फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। इसी गीत को पसंद किया था एस एम जावेद, अंजुम और नजमूल और टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वेटी छाबड़ा, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन राजा और गौसिया फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी ने

मिलकत परवीन अब्बासी, सहनबाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परवान। और अब इस गीत के साथ ही आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आपने सुना। फिल्म का नाम था क्रोधी। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

आप सुन रहे थे शांति माथुर के स्वर में यह देशगान, और आइए संबे स्वर में आइए सुनते हैं एक और देशगान।

सामवेद स्वरों में गाए इस देशगान के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आइए

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को। एक ही फिल्म से कार्यक्रम संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने निकाह फिल्म के कुछ गीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को है। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिनभर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री

0: पांच साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की

0: एकीकरण और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पंकज उदास और साधना सरगम को आपने सुना। फिल्म का नाम था मोहरा। हिमालय की गोद में इस फिल्म में सुनते हैं मुकेश को।

आप सुन रहे थे मन्ना डे और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था श्री 420। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन से, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है।

0: बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000 to 1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
1: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
0: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है। जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
1: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई पर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं। और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है, लेकिन विकास केवल कारखानों

0: और प्रयोगशालाओं से नहीं होता। विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
1: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में। तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट, रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
1: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे, प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ ना मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने

0: लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग काम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश की है, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किया। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी, और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं, तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ो मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हें को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में, हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सके।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है और

0: बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ, एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
1: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहते हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
4: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरति जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है, तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
4: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल। के बीच में। इसी से

0: बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो

0: बुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
1: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मांदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: for the front foot but for direction. As Wall waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one. And she's pulled it on. George Wall has dragged this one from outside the off stump. Inside edge. Smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces. And that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for 1. Vineet.
1: जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आमदा थी हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक या रन लेने की, और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा लगा, स्टंप से जाके टकरा गई। बेल युवा हैं, अभी 25 बरस की हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं, हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उनके ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उसकी वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बिगड़ी। शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पे कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई, और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया, टिप्पा खाया, और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी। लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, ये महत्वपूर्ण है, अब शिकंजा कसा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर उतरा था बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, और कुछ असर नजर भी आया इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर, वो हड़बड़ाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके। मेलिनी काफ़ी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में, इस बीच ये गेंद और इसको सीधा ड्राइव कर दिया, उस ओर कोई फील्डर है ही नहीं, चार रन स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: दिलचस्प क्रिकेट, इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं, जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं, बहुत बैटिंग उनके पास है। बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। इस बीच ही गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, गेंद को अपना संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही हैं और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंसी स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का ज़माना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है, अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई।

0: लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद स्टंप्स पर, स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। अच्छी लगातार कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाया गया। थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहां पर जो फील्ड कर रही थी, बैथ मूनी। 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा। स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उस एक रन को पूरा किया। तो कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 1 विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Very evidently, Australia looking to maximize the power play. They're going just under 10 runs an over in these 3 overs so far, 29 for 1. Georgia have all the batter out, dragging one on. Molyneux waits. It's Phoebe Litchfield who's come in. I don't know why we've been saying Molyneux since the new batter came in. One more to the total. Tucked away around the corner. And total moves up to 30 now. We're in the 4th over. And England dearly would want to pick up not one but at least 2 more wickets quickly in the power play if they want to put some roadblocks. And one gets the feeling Sophie Eccleston will have a big role to play in this game as we wait and watch. Mooney waits now for the next one. Again, just making some room, driving straight past the bowler and the fielder at mid-off. 4 runs.
6: Ye laga Abha ka choka.
5: Slower ball that one, and picking it very quickly was the experienced Beth Mooney. What a batter she is, on the move and hitting it with the full face of the bat, elbow up, so absolutely no problem for Mooney. And that means there is 4 more to be had. 34 for 1 now Australia, and Mooney's moved up to 13, just a little over runner ball. Litchfield is on 6. That first ball boundary certainly helping her, and Lauren Bell with a little bit of a worried look on her face. Young Lauren Bell, as Vineet said, fairly early in her career, but the moment you see Lauren Bell, her face is often a reflection of her emotions. Very, very reflective, very happy when she gets a wicket, and concerned writ large. Amy Jones, the keeper, now getting a helmet and standing up to the stumps to try and prevent Beth Mooney from leaving the crease. Bell goes in, bowls to Mooney. Mooney looking to work it on the onside. Struck on the pad, taken by the keeper from behind the stumps. No run possible. 34 for 1. In the middle of the 4th over now. Litchfield on 6. Phoebe Litchfield, another one of the young budding stars of Australian cricket. Very accomplished, has certainly performed well in all formats that she plays for Australia. And Lauren Bell with a skip and a jump into her run-up comes in bowls, and Mooney lofts this one high over the top and will get runs and will get 4 of them. 2-3 bounces, the ball rolls into the boundary cushion. So Mooney not letting up, she's up now with that boundary to 17, and the total is 38 for 1.
6: ये लगा आभा का चौका।
5: Remember that England got only 39 runs in their power play. Australia already almost there now, 38 for 1 in the 4th over. Nicely lofted shot, the ball plugging a little bit in the outfield and then rolling into the cushions. Mooney waits for

0: For Bell, who's gone for 9 in this over, once again making some room, exposing her stumps and carving the ball out on the offside. And they will come back for just the 1 run. Mooney goes to 18 and the total now moving up to 39 for 1. Only 2 fielders, remember, during the power play allowed outside the 25-yard circle. And Lauren Bell, having gone for 10 in this over, has now given away 21 runs in her 11 deliveries. Comes in, bowls again. Down the leg side, will be called wide off the keeper's pad. The ball ricochets, but good work towards the short fine region. Umpire now signalling wide. And that's extra runs for Australia. 2 more, in fact. So 41 now, the total moves up to 110 runs separate Australia from a 7th Women's T20 World Cup title. What domination. Even though Australia have been missing silverware for a couple of years now, they look like they've got one hand on the trophy already. Bell bowls and nicely worked away in the gap. This will run away and will get to 4 runs. Yes, it is. 4 more.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Beth Mooney on fire. She's on to 22 and another expensive over has been completed.
2: 4 over samapt ho gaye. Ek baat to farak padta hai, jab aapke paas koi bahut zyada vishal score ka dabav na ho to fir aap zyada hausle ke sath batting kar sakte hain. Pitch mein koi bahut zyada parivartan nahi hua hai is pari mein pehli pari ki tulna mein, aur gend abhi bhi phas rahi hai, ruk kar aa rahi hai is pitch par, aur isi wajah se wo pehla wicket bhi mila tha जब वो आउट हुए थे. तो वो इसी तरह से हुई थी कि गेंद टिप्पा खाने के बाद फंस गई, पिच में रुक गई और बाहर थी ऑफ स्टंप के, और उसमें जो मूवमेंट था फिर नीचे भी रह गई थी थोड़ी, और फिर इस तरह से उसको खींच लिया, प्ले डाउन हो गई और स्टंप्स पे जट के टकराई थी गेंद. लेकिन इरादे मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया के और इसीलिए तेज़ी के साथ वो करती हैं. डीन वापस बॉलिंग करने के लिए आ गई हैं. उनकी पहली गेंद को ड्राइव किया. इंग्लैंड भी स्टंप्स को अटैक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, यथासंभव लगातार स्टंप्स की सीध में गेंद करने की कोशिश है. लेकिन युवा लॉरेन बेल कुछ ज़्यादा वाइड इधर उधर की गेंदें करती रही हैं. अगली गेंद को स्वीप कर दिया उस ओर फील्डर, अब पहुंच रहा है, पहुंच से दूर, 4 रन.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के उन क्षेत्रों में ही स्ट्रोक खेल रहे हैं जिस ओर फील्डर दूर हैं या हैं ही नहीं. और वैसे भी 2 ही हैं बाउंड्री लाइन के पास. एक मिड विकेट की तरफ हटकर स्क्वायर फील्डर है लेग साइड में, और एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर. और ये पावर प्ले का फ़ायदा वो उठा रहे हैं. अभी इसमें गेंदे शेष हैं. एज ऑफ द क्रीज से ये गेंद की कट करने का अंदाज, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर है, फाइन लेग की बाई तरफ लेकिन दायरे के अंदर, 25 गज के. कोई रन नहीं मिलेगा. 2 डॉट बॉल, 1 चौका. 5वां ओवर चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 151 रन, 49 रन 1 विकेट पर. अब लेग साइड का फील्डर अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर कर दिया गया है. अगली गेंद को एक कदम बाहर निकला, हाफ वॉली पर उठाकर खेला, और इस बार क्या 6 रन मिल जाएंगे. 6 रन.
1: ये लगा आभा का छक्का.
2: और इस छक्के के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ. पहले 50 रन ऑस्ट्रेलिया की पारी के बहुत तेजी के साथ आए हैं. फीबी लिचफील्ड एक अर्धशतक पहले ही बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि बहुत सारे मैचेस में वो नहीं खेली गई हैं, खिलाई गई हैं. लेकिन हौसले, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, इस तरीके के कुछ स्ट्रोक लगे तो फिर चेहरे लटकते और बुझते हुए नजर आएंगे. इंग्लैंड को हौसला रखना पड़ेगा. 11 रन के ऊपर से ज़्यादा का इस समय रन रेट है, 11.79. अगली गेंद और बहुत लेट के लिए अंतिम समय तक क्रीज की गहराई में लगभग पीछे चली गई थी और लगभग स्टंप्स के करीब पहुंच गई थी, और गेंद चली ही तो गई थी स्टंप्स के पास. इस तरह से वो जो स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल आना इस पिच पर, मानना पड़ेगा आत्मबल, आत्मविश्वास, संकल्प, तीनों चारों को. और नज़रिया है, क्रिकेट खेलने का अपना अपना नज़रिया. एक मिड विकेट और ऑफ साइड में कवर पॉइंट बाउंड्री पर 2 खिलाड़ी बाहर है, बाकी सब दायरे के अंदर. अब धीमी गेंद, कोण बनाती हुई, एंगल डिलीवरी मिडिल स्टंप पर. उसको रक्षात्मक रूप से पुश भर कर दिया, आके दबा भर दिया, बैट से टकरा नहीं दिया,

0: पांचवा ओवर समाप्त हो गया 55 रन 1 विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Australia look to be in a real hurry here, Vineet. Maybe they've got an early flight, I don't know, 55-1. Dominating England's bowlers. The loss of Georgia Wall not putting any change whatsoever to their approach, which has been dominating. Lindsay Smith continues, pulled away towards wide-ish long on. They'll take one and the total will move up to 56. Mooney goes to 23, Litchfield on 16. And long faces in the England crowd. There are three players in this England team who have already gone through the pain of losing to Australia in a World Cup final. One of them is Heather Knight, Nat Siver-Brunt, and Heather and Danny Wyatt. This one struck her on the pad. There's a big appeal, but umpire Rathi is unmoved. I think the ball probably pitching outside the line of leg stump. Looking for the reverse sweep, there was Phoebe Litchfield, making no contact. Lindsay Smith bowling and varying her pace. That's what I think England haven't done. Lauren Bell in particular has bowled pretty much at a standard pace. Smith bowls again. This one's wristily pushed away on the offside. This is turning out to be a decent start to the over. Just the one run, ensuring that they try and keep the Australian batters at bay. Three balls of the power play to come. Here's Smith bowls again, nicely holding her length back a little bit and defeating the batter in the air, but able to adjust was Litchfield, pushing it away towards wide-ish mid-on for a single, 57-1. Litchfield 17, Mooney on 23. Two balls of the power play to come, after which England will have some relief in terms of placing a couple of fielders, and I suspect we'll see Eccleston into the attack immediately after that. Short ball pulled away on the onside. There could be runs, four runs.
5: ये लगा आभा का चौका.
4: Just a little bit of length, back and short of a length, and pulled away authoritatively by Beth Mooney. What a cricketer. In complete control and really timing it beautifully. 61 now for one. And the last ball of the power play is now coming up. Australia showing how to play the power play. And they've knocked off 61 of the target already. Nicely worked away on the onside for a single. Will keep the strike. Six overs bowled. Power play complete. 61-1. Australia in the driver's seat.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: तो 6 ओवर पूरे हुए, ड्रिंक्स मैदान पर हैं, खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं। 4 खिलाड़ी मात्र खोए थे इंग्लैंड ने, लेकिन रन केवल 150 बना पाए थे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में इस पिच पे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं। हौसला बुलंद है उनका और वो आक्रामक शैली से खेल रहे हैं। कई बार अपने स्ट्रोक्स को चेंज करना पड़ा है, चेक करना पड़ा है, क्रीज छोड़ के बाहर भी निकली हैं खिलाड़ी। बैटर्स जो इस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ताबड़तोड़ रन बना दिए। इंग्लैंड ने बनाए थे 39 रन 2 विकेट पर पावर प्ले में, और ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए हैं 1 विकेट पर। इतना फर्क है। और कहा जाता था कि बैटिंग पहले करें या फील्डिंग पहले करें, क्या सही रहेगा फाइनल्स में। और पहले बैटिंग करने का जब अवसर मिला तो पिच की दुश्वारियों को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चेंजेस, गति में परिवर्तन और स्टंप्स को अटैक करने का वो जो उनकी रणनीति

0: की थी उसका मुकाबला ठीक से इंग्लैंड कर नहीं सकी, अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाए क्योंकि प्रकाश केवल 4 विकेट ही गिरे और उसके बाद भी वो पेस को फोर्स नहीं कर पाए। अब यहां से ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त रात का समय जुगाड़ना चाहेंगी और इसीलिए कुछ तेजी से खेल रही हैं। स्मरण रहे कि इंग्लैंड में 9:30 बजे से पहले दिन सूर्यास्त नहीं होता और इसीलिए पहले वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ तो 60 ओवर का खेल हुआ करता था, तो सूर्यास्त का समय लगभग 9:30 के आसपास का है लंदन में, जहां के 2 प्रसिद्ध मैदान हैं। ओवल में दोनों सेमीफाइनल हुए और लॉर्ड्स में इस समय फाइनल चल रहा है। 151 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए और 62 रन वो पहले ही बना चुका है 6 ओवर में। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, क्या कर सकता है इंग्लैंड यहां से? और सो एकलस्टन की बात कर रहे थे प्रकाश वाकनकर, एकलस्टन ने वो एक शानदार कैच वोल्फर्ट का पकड़ा था जब 43 रन बन चुके थे, को विकेट नहीं गिरा था, अपने कद का फायदा उठाकर। उनकी बॉलिंग भी बहुत कारगर साबित हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से रन बनाने पे आमदा हैं ऑस्ट्रेलिया, आज अग्नि परीक्षा होगी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन कैंप डीन की जगह लगाई गई, चार्ली डीन की जगह कैंप आई हैं और वो बॉलिंग करेंगे। बैटिंग अच्छी की उन्होंने आज और देखें क्या करती हैं। लेफ्ट हैंडर मूनी सामने हैं उनके और खेला है गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद हवा में है लेकिन उस ओर फील्डर है कहाँ, दूर से आना पड़ेगा उठाने के लिए, तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही हैं। और रन उन 2 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन 1 विकेट पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर। नेट शिवन ब्रंट नॉट आउट रही 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर, और फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों पर 44 रन बनाए, एकमात्र बैटर जिन्होंने कुछ हौसला दिखाया। कैंप चली, उनकी ये गेंद स्टंप्स के पास से की थी, कलाइयों को ऊपर उठाकर, कोहनी को ऊपर उठाकर मोड़ा भर जगह निकाली और तेजी से दौड़कर दोनों बैटर ने अपने सिरे बदल लिए। ये जो लॉन्च फेज होता है 1-6 पावर प्ले में, कितने रन किस टीम ने ज्यादा बनाई हैं, ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले में औसतन 9.53 का औसत रहा है, इंग्लैंड का भी 8 और 9 के आसपास रहा है, दोनों शीर्ष पर रही हैं पावर प्ले की बैटिंग में। और गेंद की अंतिम समय तक प्रतीक्षा की, पंजों पर ऊपर उछली, कलाइयों को मोड़ दिया, एक रन मिल जाएगा, 2 फील्डर हैं लेकिन उसको रोकें उससे पहले। कैंप की ये गेंद लगभग 92 थी, स्लोअर डिलीवरी करने की कोशिश, स्टंप्स पे कर तो रहे हैं इंग्लैंड, लेकिन देखिए नज़रिए का कितना फ़र्क पड़ता है, आप किस सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं वो फ़र्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का अपना अंदाज है खेल के मैदान पर, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो। लगातार स्टंप्स के पास आकर गेंद कर रही हैं, बॉटम एज लगी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, बहुत ही फाइन, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: वॉवल सीम से की थी, गेंद की रफ्तार कम की थी लेकिन इतनी वाइड थी और इतनी नीचे रह रही थी और उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी, अपने बैट को दबाया उस वाइड गेंद पर, सिरा लगा, बॉटम एज निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है, और उसको लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉर्ड्स के उस ओर जहां की वो मीडिया सेंटर है। कैंप चली, 2 गेंदे शेष हैं इस ओवर में, लगातार धीमी गेंदे कर रही हैं, मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन में कितने रन आज इस पिच पर दोनों ही टीमों ने बनाए हैं। मूनी और लिचफील्ड की ये जोड़ी है, अब तक केवल 1 विकेट गिरा है, लिचफील्ड ने रन बनाए हैं और इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 किया था इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में। गेंद की लंबाई कुछ ज़्यादा रख रहे हैं, कोई स्विंग तो है नहीं, नॉट स्विंग के लिए कोई ऐसी रफ्तार भी है, इस बार गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, अपने आप को व्यवस्थित किया, कलाइयों को मोड़ दिया, फुर्ती में नजर आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ आनंद फानंद में इस मैच को ख़त्म कर देना चाहती है, ओवर समाप्त हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: बड़ी मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है?

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: Australia going along at little over 10 runs and over, 72 for 1. And here's Eccleston, first ball worked away on the onside. They've taken one, think of the second and change their mind. Litchfield goes to 20, Australia 73 for 1 now. Required run rate just about a run a ball. And if Australia continue like this, unless there is a mini collapse and England can strike now, and not just one wicket, I think England need a couple to try and come back into this game. Can Eccleston provide that? Left arm over, experienced bowler, tossed up, turned out towards the wide-ish mid-on region for a single by Beth Mooney. More fielders in the deep now permitted, of course. Four fielders in the ring, five will be in the deep. Capsie is out at long on. Eccleston bowls and driven on the offside, but straight to Nat Siva-Brunt at short mid-wicket. There is no run. 74 for 1 in the 7th over, chasing 151 to notch up their 7th title. Australia this time making some room, pulled away fine, swept beautifully. Initially I thought it hadn't been timed, but it was placed and timed well by Litchfield, and that gave up 4 more runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Swept very well indeed. Proactive movement. In fact, that's been a feature of the Australian batting so far, has been the proactive footwork of the Australian batters, achieving angles that otherwise wouldn't be available. And England facing annihilation here. This one's inside out, driven out towards the deep cover boundary. She was looking to go a little bit straighter over extra cover, the ball taking the outside part of the bat, and as a result just a single. 79 for 1, Litchfield 25, Mooney 37, and Australia now require less than a run a ball, and we're not even completed halfway stage yet. Pushed away on the offside nicely by Mooney, in control, very sensible cricket. 8 overs complete, 80 for 1.
3: ओवर समाप्त हुआ है आठवां, और किसी भी तरीके का इस अनुभवी बॉलर ने गति का परिवर्तन नहीं लिया अपने इस पहले ओवर में. एकलस्टन ने 51-52-53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही बॉलिंग की.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
4: तुम हो ही भुलक्कड़.
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: अब बचे हुए रन केवल 5.92 के औसत से ही बनाने, यानी कि 6 से भी कम रन बचे हुए ओवर्स में उस गति से ही बनाने शेष हैं, क्योंकि पहले ही 10 के औसत से वो खेल रही हैं. पहली गेंद और उसको लगभग पुल के अंदाज में बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया, एक रन मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को. 81 रन एक विकेट पर, टारगेट 151 का है. क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति आपको इस समय लॉर्ड्स में दिख जाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा फैन, सब लॉर्ड्स की ओहरी तो आ गए हैं. कितना बड़ा अवसर है ये, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर. कंधे का इस्तेमाल किया पटका गेंद को गिब्सन ने. गिब्सन से लगातार बॉलिंग कराई है, नई गेंद का इस्तेमाल भी किया है गिब्सन ने. आज थोड़ा देर से तलब किया है.

0: अब 70 गेंदों पर 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। लिचफील्ड 25-19 गेंदों पर और मुनी ने 39 रन बनाए 26 गेंदों पर। यह 9वां ओवर है जिसकी तीसरी गेंद आ रही है। काफी स्टंप छोड़कर लेग स्टंप की गार्ड लेकर खेल रही हैं, सीधा ड्राइव किया, ऐसा एक बार को लगा कि टाइम नहीं कर पाई हैं। फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाई, उनसे रुके कि नहीं, 4 रन्स।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जैसे अब तो ये एक तरफा मुकाबला हो गया है, जैसा चाह रही हैं वैसा खेल ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स, और इसको पहले ही समझकर अपने आप को पोजीशन किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से 4 रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए एक रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये 9वां ओवर चल रहा है, 86 रन अब एक विकेट के नुकसान पर। सोफी डिवाइन, टू हू और वरिष्ठ खिलाड़ी, कुल मिलाकर 3 रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में। कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद, शॉर्ट तो थी लेकिन स्टंप से इतनी ज्यादा दूर नहीं थी। अपने पैर फैलाकर जगह निकाली उस स्ट्रोक के लिए और फिर खेला उसको ऑफ साइड में। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, 56, आप समझ सकते हैं। एक बाएं हाथ का स्पिनर 53 की मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था और ये मीडियम पेसर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग कर रही है 56 की स्पीड से। घूम कर खेला और रन लेने के लिए बाहर निकल आए। क्या इसमें रन आउट का अवसर होगा, अंपायर से पूछा जा रहा है। अंपायर आमतौर पर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है प्रकाश, निर्णय ले लेते हैं तुरंत और बता देती हैं वहीं पर कि आउट है या नहीं है, तीसरे अंपायर के पास नहीं भेजती हैं और लगता है कि विकेट मिल गया है वहां पर। हालांकि निश्चित रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि सही है कि या नहीं है, अंपायर का रिव्यू इस समय चल रहा है कि ये रन आउट है या नहीं है। फिसलाया, बैट को आगे बढ़ाया, अच्छी तकनीक, ठीक उस समय जब बैट आगे सरक रहा था, क्या ऊपर हवा में उठा है, क्या ग्लव से वो जो हटाया था वहां पर, बेल्स को जब हटाया था तब तक बैट अंदर पहुंच गया था। मुझे लगता है बैटर के पास एक अवसर बन गया है क्योंकि बैट ऊपर भी नहीं उठा है और जब वो हटाया था, तो भाई तकनीक जब आप अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी पहुंच में बैट आगे बढ़ा दिया और बिल्कुल नीचे घास पर चिपकाते हुए पिच के ऊपर रखते हुए उसको फिसला दिया, उनकी पहुंच बढ़ गई और इसलिए विकेट कीपर के पास जो एक अवसर था वो जाया होता रहा। हालांकि अभी प्रतीक्षा की जा रही है औपचारिक निर्णय की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 87 for 1, a close call for a run out, looking for the second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now. And just watching that replay, very close thing, short again from 88 for one. Is where the total has moved now, requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control. Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. 4 runs.
1: Ye laga abha ka choka.
6: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. Probably her third or fourth boundary there, using her feet, keeper standing up, but that doesn't deter young Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slower ball there. 92 now for one, needing just 59 more runs. Slower ball, full toss, hammered away, and that will be a one bounce 4 at 5 on.
1: Ye laga.

0: Joker.
1: Back-to-back boundaries, Lichfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time on the stumps, not able to beat the fielder at mid-on, and the total stays 96 for 1. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Lichfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for 1. Lichfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for 1.
2: वोट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगी या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी जीतेंगी। तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली है। कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इम्प्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है। 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है सातवीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी। अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल, 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन। लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर, और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है, और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहां पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन 4 रन अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं 4 है अथवा 6 है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा, और ये 6 रन।
0: ये लगा आभा का छक्का।
6: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला।

0: था उसको और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में। आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर, 6, 7, 8, 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, 82.5, 11 ओवर समाप्त हो गए 107 एक विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 90-run partnership between young Phoebe Litchfield and the experienced Beth Mooney has powered Australia into a position where one feels it's a question of only the formalities now. In how many overs will Australia win this title and how many more wickets can England get, if any? These two are on a mission, and start of a fresh over from Eccleston, lofted over the infield, beautiful shot inside out from Beth Mooney, takes her to 48, 4 more runs.
6: ये लगा आभा का चौका।
5: They're in a real hurry, the Aussie women, batting superbly, and England bowlers have absolutely no answers to how they are going to respond as Australia continue the juggernaut. Nelson on the board, 111 for 1. So most fours in this World Cup. Wyatt Hodge 42, Smriti Mandhana 30, and Beth Mooney now just one shy on 29. Eccleston in again, bowls, and a lovely ball. The arm ball just straightening and beating Beth Mooney. The first time really in this innings that we've seen an England bowler defeat an Australian batter. Beautiful ball, just went past the outside edge. Siva Brunt for a moment thought there might be an opportunity, there wasn't. Mooney waits on 48. Eccleston bowls, worked away to short mid wicket. This is good. Just two or three balls here, but certainly trying to put a little bit of a break on the Australian rate of scoring. They need much more than that, do England. They need wickets in a hurry here. Eccleston bowls, Mooney pushes on the offside. They go off for a single. Two England fielders collide. I think that's the story of England's performance today. Two fielders going for the ball and both of them running into each other. 112 for 1 now. That was Danny Wyatt Hodge. 112 for 1. On the offside, it was pushed away. And I think that was Freya Kemp and Wyatt Hodge who ran into each other. 112 for 1. The fifth ball of the 12th over. Eccleston bowled and looking for a reverse sweep again was Phoebe Litchfield. Good take by the keeper, Amy Jones, and no runs. 95 of 61 is this partnership, dominating partnership, and Litchfield's done the bulk of the scoring. Eccleston bowls down the leg side, will be called wide, we'll wait for the umpire. Yes, it is. Another wide, another run. 113 for 1 now, and the last ball of the 12th over has to be re-bowled by Sophie Eccleston, who's gone for 14 runs so far with one ball to come. Reverse sweep attempted, and once again she misses it. She holds her head, does Eccleston, wondering how she hasn't got through. 12 overs complete, 113 for 1.
7: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो धीरे धीरे मंजिल मकसूद की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एक्लस्टन की फास्टर बॉल देखने को मिली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उस पर बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को।

0: बहुत ज्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला, 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं। अब यहां से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है। मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के, दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर अच्छा तालमेल सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम, और इसके साथ ही मूर्नी का अर्धशतक पूरा हुआ केवल 38 गेंदों पर 50 रन, नौवां अर्धशतक है उनका विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है, और 31st विमेन टी20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है, और इस टूर्नामेंट में मूनी का तीसरा अर्धशतक है। मूनी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए ओम जी, तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही है मैन ऑफ द मैच होंगी, क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया, क्यों बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैत मुनी 38 गेंदों पे 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा, अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहां फील्डर है, धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद, क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी, लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से, शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी, अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए, हालांकि शैली शुरू से ही रही है, मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है। ये 13वां ओवर चल रहा है, लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी, अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे, कमाल की साझेदारी। ओ बोल्ड कर दिया, चार्ली डीन ने विकेट ले ही तो लिया, और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में, लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी, और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
1: Forty-eight is what Phoebe Lichfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless, of course, the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Wall dragged a ball back onto her stumps from outside the off stump. Last couple of overs, the England spinners just beginning to find a little bit of bite and make a little bit of an impact, but it's too little too late, one feels. Australia now need just under 5 runs an over, and they've got 8 wickets in hand. So the question is, how soon Ellis Perry, the champion Australian, is at the non-striker's end. First ball of a fresh over, worked away on the onside. They wanted a single. Perry wasn't interested. Mooney's on 50. And it's a question really of how does Beth Mooney play from here.

0: चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है।

0: अब आस्किंग रेट रह गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। ना मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं भाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही है। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची, कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो और वो भी नॉकआउट स्टेज में, तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने, केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7 से 14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मुनी हावी रहे, गेंद बॉलर्स के ऊपर उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज, तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी T20 के फाइनल में, T20 के फाइनल में होगी। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चेज थी, लेकिन डीन, चार्ली डीन ऑफ स्पिनर नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑस्टम के बाहर बीट किया, फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की ये गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नजर नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेंद को खेला बाहरी मोटे सिरे से, लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर, यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो अवसर गंवा देने के बाद पिछले सालों में अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है। 34 गेंदे 21 रन, स्टंप्स छोड़कर अलग खड़ी हो गई और फिर उसको ऑफ साइड में खेला, गेंद हवा में थी फील्डर के पास और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहां पर गेंद को जब ड्राइव किया था तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे कोई कैच की संभावना हो सकती है, लेकिन गेंद को उठाकर रनआउट के लिए थ्रो किया क्योंकि कुछ विलंब के साथ बैटर वहां पहुंच रही थी। काफी बागे निकल गई थी नॉन स्ट्राइकिंग छोर से अगली गेंद और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ऐसे में ही स्टंपिंग्स होती हैं, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, कोई संपर्क नहीं बैट से और अब केवल 20 रन चाहिए और एक अतिरिक्त गेंद और करनी पड़ेगी। इनामी राशि 83 करोड़ से भी अधिक है और जीतने वाली टीम को 22 करोड़ से अधिक मिलेंगे, हारने वाली को 11 करोड़ से कुछ ज्यादा। लगातार स्ट्रोक के लिए जगह बना रही हैं और स्क्वायर बैट से खेलने की कोशिश कर रही हैं और हर गेंद पे सिंगल दौड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। फासला कम हो रहा है, 3.56 का औसत चाहिए। 10 चौके लगा चुकी है मुनी अब तक, लिचफील्ड ने 6 लगाए फिर आउट हो गई, अर्धशतक पूरा नहीं कर सकी। इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था शिव ब्रंट ने 5 लगाए थे। डीन की ये अंतिम गेंद, ऊंचा स्ट्रोक खेला ओवर द टॉप फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका
0: और इसके साथ ही ओवर भी पूरा हुआ।

0: पाया और अल्ट्रा एज की प्रतीक्षा की जा रही है, कुछ समय लगता है ये देखने के लिए कि अगर एज है तो फिर LBW नहीं हो सकती क्योंकि बैट पहले टकराया था। अपनी इनिंग्स को पेस करती इंग्लैंड, सबको अवसर भी नहीं मिला बैटिंग का। बैट के करीब गेंद आएगी अभी और क्या उस पर डिविएशन है, ऐसा नहीं लगता कोई डिविएशन है। तब तक पैड पे पहुंच चुकी थी, तब अल्ट्रा में कोई डिविएशन नजर आ रहा है तो बैट पे तो नहीं लगी, अब बॉल ट्रैकिंग पे दारोमदार है।
1: अंपायर्स कॉल कुड बी लाइकली बिकॉज दिस वाज फायर्ड इन बाय एकलस्टन, बट शी सीम्ड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। वंस द बॉल ट्रैकिंग कम्स ऑन वी विल नो everything running in slow motion, anticipation on everybody's face, and I think in their heart of hearts everybody knows it's going to make no difference really to the result. The question is, will Mooney have to depart or will she continue? Three, four frames on our monitors here. Nat Sivabrunt, the England captain, Beth Mooney, the Australian batter against whom the appeal is, and the split frame of the third umpire's view, but this is taking far too long. As has often become the case now in international cricket, technology, but quick decisions is not something that technology is delivering, one has to say, except when it comes to the new ball. Now this will tell us, it's pitching in line, one red, two reds, three reds, means Beth Mooney has to depart. 16 overs have been completed, it's 140 for three.
0: अच्छा रेफरल लिया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था और ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही हो क्योंकि लेग स्टंप का गार्ड लेकर वो बैट मुनी खेल रही थी। बेहतरीन पारी, 49 गेंदों पे 64 रन, 10 चौकों की मदद से एकलस्टोन की गेंद पर LBW आउट हुई बैट मुनी और बहुत संभावना है कि वो प्लेयर ऑफ द मैच साबित होंगी। 140 पर ये तीसरा विकेट चला गया ऑस्ट्रेलिया का और 16 ओवर का खेल पूरा हुआ। एक तरफा हो गया मैच, लेकिन लॉन्ग रूम से कितनी इच्छा रहती है खिलाड़ियों की इस लॉन्ग रूम से निकलना, इट गेट्स ऑन योर नर्व्स, इतना आसान नहीं होता। क्रिकेट के जानकार, वैभवशाली और प्रतिष्ठित लोगों की नज़र आप पर होती है। ड्रेसिंग रूम ऊपर है, आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। एशले गार्डनर, क्या खिलाड़ी हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। स्मिथ बॉलिंग करेंगी, सामने है पैरी। पैरी तीन मैचों में क्या प्रदर्शन रहा है, तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं इस वर्ल्ड कप में, बॉलिंग नहीं की आज। मिडलर ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा था, अचानक खेल में कुछ शिथिलता आई है, हालांकि वो रेफरल में काफी समय जाया हुआ। गेंद काफी फुल लेंथ की थी, अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: अब केवल 7 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लौ जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पैरी ड्राइव कर रहे थे, अपिश ड्राइव मिड ऑफ पर, दायरे के अंदर वो कैच हुई।
1: गुड कैच बाय एकलस्टन देयर, was traveling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the set batters, but I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
0: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल जमाना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। लुक एट

0: एकलस्टन द्वारा। सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है, ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरेंस में ज़्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या ना लगी वो भी मॉनिटर पर स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है यूं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट,
1: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
0: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टन ने अपना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है, किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
1: पॉइंट इज एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ 2-dimensional इमेज, यू नेवर कैन गेट अ 3-dimensional इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम, इट कैनॉट लीड द गेम इन माई ओपिनियन, बट हु केयर्स।
0: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहां से ड्राइव करके इस बार रन मिला है, नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
1: सॉरी विनीत, यू नो इन द अर्लियर डेज बिफोर दैट रूल वाज अबॉलिश्ड देयर यूज्ड टू बी अ सॉफ्ट सिग्नल फ्रॉम द अंपायर, I think that was a better way because then you needed conclusive evidence to overturn the umpire's soft signal. But that is no longer the rule.
0: और जब वो soft signal दिया जाता था मार सुर्खियों में रही ये खबर कि soft signal की क्या जरूरत है, ऊपर भेज ही रहे हैं आप, तो ये चलती रहती है, कश्मकश होती रहती है, ICC नियमों में बदलाव करती चली जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफ़ा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है, और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नज़रिया था कि उसने आउट दिया, और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 3 विकेट पर।
1: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Elise Perry is on 13, Ash Gardner is on 1. And of course that innings from Beth Mooney of 64 and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield, Mooney on 64. Both got out just after Australia had stamped their authority. And now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. ...146 for 3... 17 overs... lofted over... pulled back in... dragged back in... probably is a better way of putting it... limits the scoring to 2... Gardner goes to 3... and the total now 148 for 3... 2 to tie... 3 to win... 7th... T20 Women's World Cup Trophy... awaits... Australia and the celebration... Eccleston ball swept... this one's running down to the boundary... this could be it... 4 runs and Australia have won. So-

0: लगा आभा का चौका.
1: So as many had predicted, Vineet, it clearly was Australia's day. They were dominating. They dominated from the beginning, and that marks the end of the Women's T20 World Cup with a win for Australia. Their drought is over. Their seventh title is theirs.
2: बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना. जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया. दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया. शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टंप्स पे अटैक किया, धीमी गेंदे की गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं. कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है. तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है. लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी. आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट. तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच.
3: प्लेयर ऑफ द मैच

0: All right, so finally history is made, and as we always saying that this was England's ground, but now Australia has a stamp of it. Seventh time champion, Australia has won the World Cup 2026 ICC Women's, and this is actually a lovely moment for all the cricket lovers. This was actually anticipation everybody was having, and finally the news is that Australia has won ICC Women's World Cup 2026. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and we have our experts.
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस एक बार फिर से कराते हैं. चेतन शर्मा जी, बहुत अच्छा मैच रहा है ये, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं. बड़ी जल्दी से आपके, अगर मैं कहूँ कि आप इसको किस तरीके से समराइज करेंगे इस फाइनल को.
2: देखिए, जैसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बारे हम बात कर रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है, दे वांट टू प्ले दैट, और वही हुआ. देखिए, आपने मैच खत्म किया, 7 विकेट से आपने मैच जीता, आपने 17.1 ओवर में उस मैच को खत्म कर दिया. तभी तो बार बार हम मनीष कह रहे थे 180. आप सोचिए 180 रन होते तो यहाँ पर आपको द मैच देखने को मिलता जो सभी फाइनल्स में देखना चाहते हैं.
1: राइट, देन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी उनके व्यू लूंगा. मोना पार्थसारथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वैशाली माथुर, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई.
3: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम थी.
1: ओके,
3: इंडिया.
1: ओके, आई थॉट कि इंग्लैंड को आप ज्यादा सपोर्ट कर रही थी.
3: उनके स्पिनर्स अच्छे थे, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, बट बाय हार्ट मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही
1: थी. नॉट बैड.
0: एंड चेतन, एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू when we were sitting in the green room, when Australia won the toss, if hypothetically if they would have chosen to bat first, I think things would have been little more interesting. What do you say?
2: Definitely they would have. जैसे उनकी बल्लेबाजी 190 रन तो जरूर बनते हैं, जो 186 की बार बार बात कर रहे थे ना गीतांजलि, वो आज रिकॉर्ड तोड़ते, बिकॉज दे गॉट ए पावर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिलीव कर रहा था कि इंग्लैंड के स्पिनर्स काफी हद तक कुछ कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर. मुझे नहीं लगता आज, ठीक है उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन रन भी ठीक ठाक थे. मतलब अगर 180 रन बनते तो अलग बात थी, लेकिन 150 पे लड़ना जो चाहिए था इंग्लैंड को, वैसा उन्होंने लड़ाई की नहीं. उनके गेंदबाजों ने उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं की जो हम सोच रहे थे.
1: मोना, आपसे मैं हिंदी फिल्म की, बॉलीवुड के एक पिक्चर के गाने के बोल के साथ सवाल पूछना चाहूंगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में, आखिरी अपनी जोड़ी तोड़े से भाई टूटे ना.
3: मोनी और मोनी,
1: बिल्कुल लिचफील्ड की जोड़ी.
4: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अब बेथ मुनी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको बरकरार रखा, और ये अनुभव है जो निर्णायक मुकाबलों में, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में है तो कंटेस्ट रह ही नहीं जाती, उसके लिए आपको बहुत ही अपना ए गेम जो होता है वो दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और किसी भी मोमेंट से वो मैच का पासा पलट सकते हैं. और आज तो खैर इंग्लैंड ने वैसा कोई मोमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ही जिस तरीके से कहा गया लोप साइडेड फाइनल रहा है, और चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा अपना बनाए रखा, और फीबी लिचफील्ड की जैसे

0: पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा मूवमेंट था और आज अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरी है। बेथ मूनी का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है, तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इसने ये टूर्नामेंट जीता।
1: जी, और हमारे स्टूडियो में हमारी डोमिनेंस हमारे कॉलर्स की हमेशा बनी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो हमसे जुड़ना चाहेंगे। नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085। अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करेंगे 011 लगाना बहुत ही जरूरी है। क्या बात होती है हमेशा जब हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, दो तीन चीज़ें वैशाली बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फर्म क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड टीम को, कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम को। अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम उनकी सॉइल पे हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेगी और पाँचों मैच जीती आई है। एज अ क्रिकेटर आपका असेसमेंट क्या है, क्या हो जाता है जब इतनी ज़्यादा नोन कंडीशन पर आप खेल रहे हैं उसके बावजूद काफ़ी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस?
2: सबसे मेन होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो। आप अपने ही गेम, अपने ही ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, एंड उसके बाद जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेयर खेलना। एंड जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग जो भी आपका पार्ट है, आपको वो प्रोफेशनली अच्छे वे में करना चाहिए, उसको पूरा 100% देना चाहिए। जो आज इंग्लैंड टीम का जो मिसिंग था, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छा था, बट बैटिंग में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। सो ये एक बैटिंग जो जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं उसी की वजह से आज वो रनर्स अप बने।
1: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़े विन के बाद पहला कॉलर हमारे इस कार्यक्रम का। नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार मैडम
1: जी, नाम बताइए अपना।
3: मैं महाराष्ट्र अकोला से सचिनपुरी बात कर रहा हूँ।
1: जी सचिन,
3: ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सचिन, क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप?
3: मुझे इतना सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अटैक है वो इंग्लैंड के पास वैसा अटैक नहीं था क्या? इंग्लैंड की कहाँ से गलती हो गई, क्योंकि पहले छह ओवर में 62 रन और एक ही विकेट था उनका।
1: जी,
3: इंग्लैंड के बल्ले गेंदबाजों से कहां गलती हुई, और इंग्लैंड के पास 180-185 रन का टारगेट होना चाहिए था।
1: जी बिल्कुल, ये टारगेट तो हम काफी टाइम से बात डिस्कस कर रहे हैं, अगर इतना टारगेट होता तो अभी कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। चेतन, जैसा हमने कहा हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो कॉल करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक राइट ऑफ द बैट आपसे डायरेक्टली मैं पूछ लेती हूँ, इससे पहले बहुत सारे और कॉलर्स पूछें, दोनों टीम्स में से क्या क्या पर्टिकुलर असेसमेंट आपके हिसाब से बेहतर की जा सकती थी, खासकर अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें?
4: देखिए गीतांजलि, सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की क्या थी कि आपने पार्टनरशिप पनपने दी। पहली विकेट आपने जल्दी आउट करने के बाद दूसरी विकेट की साझेदारी 100 रन की थी। देखिए जब 150 रन टोटल आपका बोर्ड पे हो और आप 100 रन की साझेदारी पनप देने देते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धार नहीं थी। रेगुलर इंटरवल्स पे जो हम विकेट्स की बात करते हैं वो विकेट्स निकालने में आप कामयाब नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जैसे हम मिड शो में बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा इंग्लैंड का, वो स्पिनर्स ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुझे लगता है कि जब ऐसे टोटल के ऊपर आप 100 रन की साझेदारी बनने देते आप मैच वहीं हार गए। उसके बाद ठीक है आपने लड़ने की कोशिश की बट वो लड़ाई बनी नहीं। और जो पहले उन्होंने हमारे कॉलर ने बात की 180 बनने चाहिए थे, वो डेफिनेटली, वो तो हम पहले से कह रहे हैं 180 होते माइट बी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती इंग्लैंड के लिए।
1: चेतन, बार बार ये बात आ रही थी कि आफ्टर से अबाउट फ्यू ओवर्स थोड़े से क्रैक जरूर आते हैं ग्राउंड में, तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं दिखा कहीं पिच में? आपको लगता है देयर वाज यू नो
4: ऐसा दिखा नहीं मुझे, या कुछ स्पिनर्स के लिए मदद मुझे नजर नहीं आई। कुछ गेंदें जरूर नीचे रही थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय मुझे लगा कि हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं था। एंड देन सबसे बड़ी बात क्या है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने सेटल ही नहीं होने दिए गेंदबाजों को। देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे थे ना पावर गेम की, ऑस्ट्रेलिया की पावर गेम की, उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने सेटल नहीं होने दिया और मन बना के रखा था कि हम 20वें ओवर तक नहीं जाएंगे, इसको खत्म करना है तो कम से कम 15-16 ओवर में खत्म करेंगे, एंड दे फिनिश्ड इन 17.1, दैट्स अ ग्रेट थिंग।
5: तो मोना, आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या खास बात है कि अपनी धरती पर तो ठीक है जीतते हैं लेकिन बाहर किसी विदेशी धरती पे जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं?
0: और सिर्फ ये क्रिकेट तक सीमित नहीं है, अक्रॉस द गेम्स, आप क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी खेल में, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ 2010 जब 8 गोल से ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जीत कर गई थी, तो एक माइंडसेट है। मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है और वो काफी प्राउड

0: फील करते हैं अपने देश के लिए खेलना, और वो तो हर टीम करती है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भरा जाता है ना कि हमें उतरना है तो हमें जीत के लिए ही उतरना है, और मुझे लगता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्रेडिट जाता ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, लेकिन इंग्लैंड ने जो अपने देश के अपने ग्राउंड पर खेलते हुए निराश किया उसमें बहुत बड़ा जो एक हाथ है वो मुझे लगता है अगर आप फाइनल जैसे मैच में 16 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें 11 वाइड बॉल दे रहे हो, मतलब दो ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए सामने वाली टीम को, तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं। और फाइनल जैसे मैच में प्रेशर हैंडलिंग, जैसे वैशाली कह रही थी प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉर्ड्स पर खेलते हुए 2009 के बाद पहला वर्ल्ड कप जीतने का एक जो प्रेशर रहा होगा इंग्लैंड के ऊपर वो कहीं ना कहीं हावी हो गया, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से विकेट थोड़े एक दो गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो पहले उस तरीके से हुआ होता तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी होती।
1: जैसा कि परंपरा चलती है आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं जीत के बाद द वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज होते हैं ग्राउंड पे, अभी वही हम जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। वैशाली, ऑस्ट्रेलिया की टीम की क्या खास बात है आपकी जुबानी?
2: जैसे मोना ने बोला कि माइंडसेट तो ऑफ कोर्स है ही, उसके साथ वो जो भी 100% है वो देते हैं और वो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस से देते हैं, क्योंकि वो एक मैटर करता है कि आपने जो सीखा है जो आपने प्रैक्टिस करी है वो आप कितना यहाँ पर कितना अपनी टीम को दे सकते हैं, और वो 100% देते हैं हर एक प्लेयर। एक कहते हैं कि कुछ एक दो दिन किसी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। एक टीम वर्क है यहाँ पे, तो ये ऐसा टीम वर्क, एक साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये बहुत रेयर किसी टीम में देखा जाता है।
0: और किसी टीम में एक मैच विनर होता है, किसी में दो होते हैं, ये तो पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर से भरी हुई है। तो एक दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, दूसरे दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, तो ऐसी टीम को आप बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम।
3: जी बिल्कुल।
4: और जो डिस्कशन होगा ना अभी मैच के बाद, कहते हैं ना रिव्यू होता है, आप वर्ल्ड कप हारे क्यों, जैसे अभी मोना बात कर रहे थे कि आपने 11 व्हाइट बॉल्स और एक नो बॉल, और वो जो 4 रन 22 के आए हैं वो नो बॉल के ऊपर आए थे, तो इसका मतलब आपने 16 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, और आपने 11 व्हाइट्स और एक नो बॉल तो आपने 12 गेंदे एक्स्ट्रा डाली हैं, तो 12 गेंदे एक्स्ट्रा डालने का मतलब ये हो गया 2 ओवर, तो अगर आप कैलकुलेशन करें इस समय मनीष, 17.1 ओवर, 2 ओवर 7 मिला लीजिए 19.1 ओवर, और रन्स आप माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब इंग्लैंड ये 150 पे भी मैच जीतता था अगर आपने एक्स्ट्रा रन्स और एक्स्ट्रा गेंदे ना की होती।
1: और आपकी बात को थोड़ा सा और पुख्ता करता हूँ, क्योंकि ये रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक रील आई मेरे पास इंस्टा में, तो भारत की टीम के एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे कुछ साल पहले, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ही वहां जाके इतना तीखा बाउंसर मारा और 2 विकेट वो ले गए। आप लोग जानना चाहेंगे वो फास्ट बॉलर कौन थे?
2: बिल्कुल बताएं।
1: आपकी बाई तरफ बैठे।
3: ऐसे एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हमारे पास क्रिकेटर्स लाइक चेतन शर्मा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं जितनी हम शेयर कर सकें या उनसे जान पाएं। चेतन, बात क्योंकि आज प्रेडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होगी, बट यहाँ पर थोड़ी देर में हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम है वो हमारी भारतीय टीम के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहेगी। उनके लिए फेयर होगा ये बात करना कि हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली हम विमेन टीम्स की बात करें, इस वक्त आपको क्या नजर आती है?
4: देखिए, बहुत अच्छी टीम है। अगर आप नॉर्मल बात करें वर्ल्ड कप में, मुझे जो थोड़ी सी समस्या नजर आई कि एक तो 16 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स होते हैं, इंजरी की वजह से 16 प्लेयर हो, आपने 4 मैचेस के अंदर ही 16 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं था या आपको विश्वास नहीं था प्लेयर्स के ऊपर। आप 15 के 15 प्लेयर्स 4 मैचेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम आप देखते हैं, तो इसका मतलब सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, या प्लेयर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने जब बदलाव होते हैं ना टीम के अंदर, तो हर समय क्रिकेट में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप देखिए यही भारतीय टीम है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आई है, यही टीम थी जो हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, इट्स नॉट ए इजी थिंग, यू नो, उनकी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी फील्डिंग के खिलाफ आपने 170 रन बनाए, तो थोड़ा सेटअप पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हार जीत एक पहलू है क्रिकेट का, मैं कभी नहीं कहता कि आप गए हो और आप हर समय वर्ल्ड कप जीत के ही आइए। देखिए, दूसरी टीम्स भी आई हैं, वो भी लड़ने आई हैं, वो भी लड़ाई करेंगी, लेकिन जो

0: away from how important that is. So it's a great group to travel with. We've been on the road for 5.5 weeks, and you know, plenty of people have come over from halfway across the world to watch the final, some a couple of days ago, some a few weeks ago. So we feel the love and feel the support here and back home.
1: Word on your new captain as well, obviously pretty exciting to come and win this tournament. What's she been like?
0: Yeah, Soph's been amazing. She's just calm and composed and doesn't look too flustered, I think. She's put her own spin on the captaincy and been a great leader. I think she's been a great leader in Australian cricket for a long time. People probably just haven't been able to see that, and we're fortunate we get to see it firsthand. And you know, the girls have really got around her, and it's just amazing icing on the cake for what's been a pretty amazing tournament for us as a group.
1: Well, Beth, you've got a lot of silverware to look after. Put it in the home and cherish it well. Well done again.
0: Thank you.
2: Well, it's Beth Mooney all the way, a player of the series and player of the match as well. And she made 238 runs in the series. Actually, she did, Mona, very, very well.
3: बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिनकी हम पहले से बात करते आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है और उसके साथ मैच अवेयरनेस और विकेट के पीछे विकेट के आगे दोनों तरफ का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया था डैनी वेयर्ट का, वो बहुत ज़बरदस्त कैच था। और आप देखिए 3000 से ज़्यादा वनडे में रन बनाए हैं, 3200 से ज़्यादा T20 में रन बनाए हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल गोल्ड मेडल जीता था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो काफ़ी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ दुनिया भर के मैदानों पे रन बना चुकी है, कई फाइनल खेल चुकी हैं। तो उनके लिए क्या कहा जाए, सोने पे सुहागा है कि एक जीत और।
2: जी बिल्कुल, और हमारे पास तो सोने पे सुहागा हमारे कॉलर्स स्टूडियो में आते रहते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नमस्ते।
4: हेलो, नमस्ते
2: जी, नाम बताइए अपना।
4: जी मैम, मैं संत दिल्ली से।
2: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं
4: जी आपको। डोली भाई को, और मेरे दो सवाल, और एक सवाल तो ये जो होती है या और भी है ना
2: जी। अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी आवाज़ हम सब सुन पाएंगे अच्छे से। बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो आज के खेल के बारे में, जीत के बारे में, और ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाने के बारे में बात करना चाहते हैं। वैशाली, चूंकि सब बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस क्रिकेटर्स की होनी चाहिए, आपने काफ़ी बार प्रेशर की भी बात की, और बार बार हम यही बात मानते हैं, जैसे अगर आप जॉर्जिया वॉल को ले लें, बहुत ही अच्छा उनके लिए तो टूर्नामेंट रहा है, बट आज देखिए उनका जो रन है 9 रन बनाए हैं 6 बॉल पर उन्होंने। तो ये इतने बड़े जब प्लेयर्स हो जाते हैं, इतना अच्छा टूर्नामेंट जाता है, और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजिशन पर है, उसके बावजूद कैसे, समटाइम्स यू नो आई कांट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज।
5: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो, लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है। तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर। आप विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, वो सबसे मेन होता है लीड। क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा, वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है, एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, एंड कौन से बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा बैटर के सामने लेके आना, वो भी माइंडसेट आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है।
6: राइट देन, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद आइए देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है।
4: जी नमस्कार, हेलो।
6: हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले।
4: जी सर, मैं कर रहा हूँ दिल्ली।
6: जी आपकी आपकी तरफ से ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज़ आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सहारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, वो हैं 011 दिल्ली का कोड, और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085। चेतन भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हो, लेकिन श्री चरनी टॉप विकेट टेकर हैं, 14 विकेट्स लेकर, मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो

0: हेनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर, लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ। ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौके अगर देखे जाएं तो स्मृति मांधना तीसरे स्थान पर हैं, अ ग्रेट हिटर, अ वेरी एलिगेंट प्लेयर, 30 चौके उन्होंने लगाए हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा, मैं चाहूंगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात चरनी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की, आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए। और चरनी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस आप जीत पाएँ। और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही, अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं, तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडिल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं। स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को, कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है, हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। कितने ऐसे सुपरस्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला। देखिए खो जाता है कभी कभी, वर्ल्ड कप के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए, तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की, और वहाँ पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके खराब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है, वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नजर आएंगे, जब आप कंबाइन चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहाँ हुआ, ये रीजन था कि आपने 1 मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए, वो 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ।
2: जी, और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज हम तक पहुंचे। हेलो,
3: सबको नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ।
2: वेंकट सर, कैसे हैं आप?
3: जिला सूर्यापेट तेलंगाना से।
2: जी वेंकट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
3: चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है।
1: जी बताइए।
3: नमस्कार, पहले
1: नमस्कार जी।
3: ऑस्ट्रेलियन टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले इनको कांग्रेट। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेन्स हो क्या वुमेन्स हो, गैप्स में शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, हवाई शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। हमारी टीम मेन्स हो या वुमेन्स हो, हवाई शॉट्स अधिक से अधिक हवाई शॉट्स खेलते हुए आजकल विकेट्स खो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चन है आपसे।
1: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो लगातार दो वर्ल्ड कप्स में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले 2 साल के चैंपियंस कौन है? भारतीय टीम है। और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है, ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपन्स, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
2: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये जरूर मोना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
4: देखिए T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिक कर खेलना है, लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों

0: वो देखिए तो जो फल्क्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर ही हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये जरूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो। और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की, वहां ये बात आती है कि जो अलग अलग किस रेस्ट की जरूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
1: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफी चर्चा हुई कि वेदर शी इज फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
0: देखिए जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है और अभी बात होने लगे कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है। तो ये सब तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं। और जो अक्सर मैं सुनती हूँ खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता। तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा, उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है। और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो, वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पे उतरता।
1: वेरी ट्रू।
2: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
3: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों के पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ। एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है। तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रील्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं।
1: जी बिकॉज चेतन, आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज्यादातर जो है वो जीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है? बिकॉज दे एवरीबडी हैज अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज कर सकते हैं।
4: देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है सोशल मीडिया, या मीडिया को कोई चीज अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, और ना ही ध्यान देने की जरूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती। बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीजें जो चल रही होती है मार्केट में, बिकॉज आई वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रशियन सेलेक्टर्स, तो 90% चीजें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती, जो अंदर चीजें हैं। तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज तो मालूम ही नहीं है और ना ही कभी वो जिंदगी में बाहर आएगी, और क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस। बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज ए लीडर, शी इज नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड ए साइड। एंड कैप्टन और लीडर में, कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है। वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है। हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें, कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने कैप्टन हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया। कपिल देव इज नंबर वन, नंबर टू इज महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज रोहित शर्मा, नंबर चार इज सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे, और वो बने ओनली 4 कैप्टन इन सो मेनी ईयर्स। तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता। तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में, तो

0: भूख लगता है। देखिए बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिताकर आए तो आप राजा है, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहें नहीं वो अच्छे नहीं खेले, इंडिया अच्छी खेली थी लेकिन वो किस्मत खराब थी, इंडिया हार गई। नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दे डिजर्व टू विन, दे वॉन इट, दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप एंड दैट शुड कम इन आवर फैंस। कि नहीं अच्छा है ठीक है, हाँ जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं, गलतियों पे यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ, वुमेन्स इंडियन टीम के साथ, और वी यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स, दैट्स इट।
1: राइट देन, याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, और ये डिस्कशन जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया, 17.1 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक, इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे। 2010 में, 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं। चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं, और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो है हमारे नए कॉलर, और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं।
2: हेलो हेलो,
1: राइट देन, आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की, 5 विकेट ली, बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस उनके बन गए मेरे ख्याल से, उससे बेहतर कर तो सकती हैं, लेकिन यादगार वो रहा। श्री चरणी भी 4 for 19, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बोलर्स की बात करें तो, ये एक अचीवमेंट है भारतीय बोलर्स के लिए।
3: बिल्कुल, और राधा यादव भी है, आप शायद ऐड करना भूल गए उसे भी, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट, एंड वहां पर दीप्ति शर्मा ने जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी, तो यहाँ पर दिखाता है कि आप जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ। एंड अगर मैं बात करूँ श्री चरणी की, एक यंग प्लेयर है एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद, जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है, दोनों यंग प्लेयर्स हैं, तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहाँ से वो उनको गेन करना भी बहुत जरूरी है।
2: मोना, जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज, और यू बीइंग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल। कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
4: देखिए, ऐसी तो बहुत सारी है, जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी। मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में, तो कोई लड़कियां वहाँ खेलती नहीं थी, लड़कों के साथ वो खेलती थी, और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की, उस तरीके की वो शॉट लगाती थी, और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो काफ़ी सारी, जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपकी सामने आने लगती है और बहुत मोटिवेशन। अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए। तो कहां हमने सफलता हम सब देखते हैं लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
2: आई एम श्योर।

0: हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलर हम अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार सर। मैम
0: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: हम आकाश कुमार बोल रहे हैं बिहार पूर्वी चंपारण से।
0: जी आकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
1: सर मेरा पहला सवाल है सर कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड का फाइनल जब जब होता है सर, उसका भी दबाव से इंग्लैंड के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया का दबाव रहता है, इसी वजह से एक तरफा मैच चला जाता है क्या?
0: जी एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में, लेकिन एक चीज मैं चेतन जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कहा आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं, इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड

0: जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट, व्हाट्स द प्रोसेस? पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, द यंगस्टर्स हु वांट टू रियली कम इन, दे कांट रियली अफोर्ड मच, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू टेल देम?
1: देखिए आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा. अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है. कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है. देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है. तो अभी तो कहते हैं ना हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है. तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा. इमटेरियल आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर जाकर बच्चा खेल सकता है. देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज्यादा समस्या है कहीं भी. अगर अच्छा क्रिकेटर है उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है. उनका नाम होता है, कोचेस का मेहनत करते हैं. देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहाँ जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री. लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं. बहुत मुश्किल काम है,
0: मैमथ टास्क.
1: या तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, दिस बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. एक जमाने में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं. तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूं कि देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट जहां आपको मिलती है. इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट. और जब से ये 3-3 टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ 3 टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज अपना टैलेंट दिखाने के लिए. देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते तो मतलब या तो आपके कहते हैं ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ और या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं. तो अदरवाइज टैलेंट को तराशना, इट्स वेरी इजी फॉर द कोच कि पता करना कौन से लड़के में वो हुनर है और उन प्लेयर्स को जाने नहीं देते कोचेस, तो पकड़ के रखते हैं उनको.
0: चेतन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और मैं तो हर समय ढूंढता रहता हूँ ऐसे प्लेयर्स, कहीं भी मिले तो वी विल ट्राई एंड पास ऑन द मैसेज टू द स्टेट्स एज वेल एज टू द क्रिकेट अकेडमीज. इवन हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अकेडमीज चलाते हैं कि ये लड़का अच्छा है इसको रख लीजिए, बिकॉज मैं तभी कहा ना अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं छोड़ेगा और वो मैटर ही नहीं करता कि उस बच्चे के पास पैसे हैं कि नहीं है.
0: That's great to hear.
2: राइट देन, प्लेयर ऑफ द मैच ये डिस्कशन आप सुन रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो विजयी ट्रॉफी पकड़ाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को, जो बन गई है वर्ल्ड चैंपियंस और 7वीं बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है. 2010, 2012, 14, 18, 20, 23 और अब 2026 में वो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात की जब चर्चा चली चुकी है तो वैशाली मोना आपसे जानना चाहेंगे, इंग्लिश विलो, चेतन भाई तो बता ही देंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विलो जो लकड़ी है वो आती है इंग्लैंड से, पूरे वर्ल्ड ओवर में चेतन भाई वो विलो जो है फैलती रहती है. लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बल्ले अब इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स जो हैं वो उन बल्लों को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खेल रहे हैं. वैशाली सबसे पहले आप.
3: जी बिल्कुल, क्योंकि एक बैट के अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कैसे स्ट्रोक्स हैं एंड उसको अगर हम जब टैप करते हैं बॉल तो वो कितना आपको बैट पे बाउंस देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैट को चेक करना और आपका आपके हिसाब से उसका बैलेंस कैसा है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक प्लेयर का बैलेंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है एंड उसके साथ उनका जो बैट का वेट होता है, हर प्लेयर का बैट का वेट अलग अलग होता है, तो वो एक और वहाँ पर वो कौन से बैट के साथ कंफर्टेबल है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए, तो ये मैटर करता है. एंड इट्स गुड कि अभी आजकल काफ़ी अच्छे इंग्लिश बिलो बैट आ गए हैं तो आप भी यूज करिए।
2: इंडिया आते हैं और वहां से फिर इंग्लैंड जाते हैं और साउथ अफ्रीका जाते हैं। मोना, आर यू सरप्राइज्ड?
4: नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति आई है उसमें मेजर

0: फोकस पॉइंट है वो ये है कि भारत में खेल साजो सामान निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इतना सारा, वो अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो उस पर काफ़ी फोकस है। और मुझे लगता है कि अभी पीछे एक सम्मेलन भी हुआ था स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स का, तो शायद मेरठ के बल्ले तो पहले से बहुत फेमस है, कश्मीर विलो, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि अब विदेशी खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, और भी खेलों में जो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिले।
1: जो आपने बात की मोना जी, मैं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इंडिया का वर्ल्ड में आई थिंक सो नंबर वन है। मतलब जिस तरह के आप, इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट तो है ही है, उसके साथ आप फुटबॉल की बात करें, मतलब जलंधर एंड मेरठ आर द टू प्लेसेस जहां पर बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, और भी होती होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं, बिकॉज हमारा क्रिकेट में मनीष बेसिकली वी टॉक अबाउट जलंधर एज वेल एज मेरठ। तो बट जब हम इन फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं, हम देखते हैं कि जिस अमाउंट पे फुटबॉल्स बन रही हैं, जिस अमाउंट में हॉकीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स आप किसी कंट्री में, मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, आई कीप गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आपको हर जगह पर इंडियन इक्विपमेंट नज़र आता है, पैड्स, ग्लव्स, जो वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है ना, बैट को आप थोड़ा साइड पे रख दें, वो तो मतलब मैसिव है इंडिया का जो मार्केट है, एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि जो चीज़ें हैं वो जब हम जाकर देखते हैं कि भारतीय कंपनीज की इस्तेमाल होती है वर्ल्ड वाइड, इट्स अमेजिंग। वो आपका ना दिल को बड़े सुकून मिलता है, मज़ा आता है देखकर कि आज हमारी वो इक्विपमेंट जो हमारे समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था ना मनीष, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था स्पोर्ट्स, मतलब था, अगर मैं थाई पैड की बात करूँ, चेस्ट गार्ड की बात करूँ, उस समय हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, और आज देखिए हमारे देश से हर चीज़, हर वर्ल्ड के हर कोने में वो इक्विपमेंट सप्लाई हो रही है। तो इट्स अमेजिंग एंड इट्स रियली प्लेजेंट फॉर आईज, यू नो, जब हम जाते हैं वर्ल्ड वाइड हर जगह, मतलब वर्ल्ड में क्रिकेट इक्विपमेंट की बात करूँ, इंडियन इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड।
2: एंड यू नो, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि क्रिकेट एक रिलीजन है, खासकर हमारे भारत में, और बहुत पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को। और जैसा हम पहले कह रहे थे चेतन, आप भी बोल रहे थे बार बार कि लोगों को एक थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी भी होती तब भी बी विद योर टीम टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड नॉट पुल देम डाउन। बिकॉज जब हम इनसिक्योरिटीज की बात करते हैं ना, तो ये बात भी आती है जब क्रिकेटर्स को पता चलता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक ये भी चेतन डर रहता है ना कि हो सकता है टीम से ड्रॉप ना कर दें,
1: नहीं
2: उतनी सिक्योरिटी दी जाती है उनको।
1: बिल्कुल गीतांजलि, क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी गुड टू ए लिमिट। मतलब ये नहीं कि आप पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए कि किसी के, ठीक है, देखिए अगर आप खराब खेलेंगे आपका क्रिटिसिज्म बनता है। इवन हम जब कमेंट्री करते हैं या हम स्टूडियो में होते हैं, हम भी तो बात करते हैं ना, किसी ने खराब शॉट खेला और उसकी वजह से आप मैच हार गए, तो यू क्रिटिसाइज, यू जस्ट स्टे टू द क्रिकेट ओनली। जब देखिए फैंस हैं तो हर चीज है, हम फैंस की बहुत इज्जत करते हैं, बट जब वो क्रिकेट एंड क्रिकेट के बाहर चीजें चले जाती हैं ना, वो दुख लगती है। आप क्रिकेट की बात क्रिकेट तक सीमित रखे, उसने खराब शॉट खेला, उसने खराब गेंदबाजी की, खराब फील्डिंग की, एक्सेप्टेड, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट, दैट हर्ट्स, दैट्स इट।
3: मैं समझ सकता हूं कि मध्य रात्रि हमारे भारतीय समय के अनुसार हो चुकी है, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कब ट्रॉफीज जो हैं वो दी जाएं। ऑस्ट्रेलिया को विनिंग ट्रॉफी, इंग्लैंड रनर्स अप रही अपने ही घर में, लॉर्ड्स जो गढ़ है क्रिकेट का, कहा जाता है कि अब इससे बड़ा कोई वेन्यू नहीं है, वहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से परास्त कर दिया गया। बेथ मुनी विकेट कीपर बैटर 64/49 और उनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। एंड ऑफकोर्स फोबे लिचफील्ड ने 48 रन की जो नॉक खेली और 100 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में, वो एक आसान सी जीत तय कर गई ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध।
2: और अब हमारी साझेदारी होने वाली हमारे एक और कॉलर के साथ। हेलो
4: हेलो शिशि, गुरु गौरंग गदाधर नित्यानंद अद्वैत हरे कृष्ण राधे राधे, नमस्कार। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभाष है, और मेरा प्रश्न है कि मैं प्रेम प्रदीप दास बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ परशुराम क्षेत्र बैंगलोर से।
2: प्रश्न पूछिए।
4: ये कि अभी जो आप हमारे जो टीम का जो मेंटल मेकअप देखा है ना, जो ऑस्ट्रेलिया जो जिताया, जैसे टीम वर्क जो इतना अच्छा है, तो क्या हमारे टीम में क्या बदलाव ले आ सकते हैं? माने जैसे बोलते हैं ना, द टीम दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, माने उनका जो टीम वर्क में और हमारा जो इसमें जो क्या

0: बदलाव ला सकते हैं इंडिया के टीम में, इसको देख के ये हमारा प्रश्न है
1: जी। बहुत सारी डिस्कशंस, अगर आप सुन रहे हो हमारे कार्यक्रम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने क्या एडिशन हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, उस बारे में चर्चा जरूर की है। जैसे जैसे अभी आगे चर्चा बढ़ेगी आप और इस बारे में जान पाएंगे। लेकिन एक चीज मोना, बिकॉज ये परफेक्ट मौका है, आप जर्नलिस्ट हैं एंड देट टू सच अ सीजन वन, एक्सपेंशन जो क्रिकेट की हुई है, खासकर ये जो वर्ल्ड कप है, मैसिव 12 टीम्स थी, कहीं आपको लगता है ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर क्रिकेटर्स, बट जैसे आयरलैंड को बीच में लाया गया, सो व्हाट डू यू थिंक दिस एड्स एन एडेड टाइम एंड अ प्रेशर एंड टेक्स अवे द क्वालिटी लाइक यू नो सम ऑफ द पीपल वर सेइंग, और दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड मे बी मोर स्टेबिलिटी इन क्रिकेटिंग ग्राउंड?
2: देखिए, फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है साथ में, ठीक है, 48 टीमें, और बड़ी आलोचना हुई थी कि इससे क्वालिटी चली जाएगी और वो मजा नहीं आएगा जो बड़ी टीमों के बीच होना चाहिए। लेकिन आपने केप वर्दे का नाम सुना
1: जी,
2: कुरासाओ का नाम सुना, तो ऐसे अगर आप एक तरफ बात करते हैं, आईसीसी बात करती है क्रिकेट को उन टेरिटरीज में ले जाने की जहां पर क्रिकेट नहीं खेला जाता है, इतनी सारी लीग्स दुनिया भर में खेली जा रही है, तो ये जो छोटे देश हैं जिन देशों की आपने बात की, जो पारंपरिक रूप से महाशक्तियां हैं क्रिकेट की, अगर उन्हीं के बीच में वर्ल्ड कप करा लिया जाएगा तो फिर इन देशों को इस तरह के एक्सपीरियंस का मौका कहां मिलेगा। और आप देखिए कि कितनी बार हमने वर्ल्ड क्रिकेट में उलटफेर देखे हैं जब छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया है। तो अभी T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई किसी टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक फेज की बात है, मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है।
3: राइट देन, समय आ गया कि अब हम लॉर्ड्स एक बार फिर से चलें, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उस बड़ी विश्व कप की प्रेजेंटेशन सेरेमनी अब ऑन है।
4: ऑन फील्ड अंपायर्स जैकलिन विलियम्स एंड ब्रिंडा राठी। TV umpire Kim Cotton. And fourth umpire Nimali Pereira. We now invite the runners-up, England, to the stage to collect their runners-up medals from Mr. Richard Thompson and Miss Claire Connor. First up, Lauren Bell. Alice Capsey. Tilly Courtine Coleman. Charlie Dean. Sophia Dunkley, Sophie Eccleston, Lauren Filer, Danny Gibson, Danny Wyatt Hodge, Amy Jones, Freya Kemp, Heather Knight, Lindsay Smith, Izzy Wong, and England's captain, Nat Sivabrant.
5: It's okay. About 10 seconds.
6: Nat, you've run into another tough Australian side that love playing in finals. How difficult is this one to take?
7: I'm still hugely disappointed. We've had such a great competition up to this point, and I suppose to end like that feels a bit sour in the mouth at the moment. But we were outplayed today by a class Australian side that used all of their experience in a huge final. So
6: you've had a little bit of time to reflect. Having done that, what would you have done differently?

0: yeah, just so incredibly proud, and thank you for having an open mind and being willing to come on the journey, and you guys should be so incredibly proud.
1: And just lastly, so for 2020 World Cup in Australia, you ended up on the stage with Katy Perry. We didn't see you dancing there to Clean Bandit. Massive disappointment.
0: Grown up.
1: I'm sure you'll be leading the charge tonight. Congratulations once again, and all the best to your team. Have a great night, enjoy it, celebrate hard, and all the best for what comes next.
0: Thanks, Ash.
2: Congratulations to the winners of the ICC Women's T20 World Cup 2026. And there it is.
3: Well, emotions all over, and rightly so. Obviously, I think their intensity was pretty different. But the fact is that trophy has a home, that's Australia, but the memories belong to all of us, and that's the World Cup final. And tonight, I must say that it belongs to Lords, and tomorrow, because this is the Women's World Cup, and we do believe that a lot of lovely, small, young girls would like to be a cricketer. This is going to be their inspiration, so tomorrow belongs to every little girl watching and dreaming. And here in the studio, we just hope and pray that you all enjoyed our presentation from Akashwani. And before we leave, I think we'll have a quick word and ask all our experts. So we'll start from Chetan. How was the experience this World Cup, Chetan?
4: Bahut behtareen. Dekhiye, two best teams reached the finals unbeaten. And kehte hain na, jab aap bina haar ke wahan final tak pahunche hain, ek ko haarna tha, aur wo England ki bari thi. Lekin kabhi-kabhi itni mehnat ke baad jab aapko हार का सामना करना पड़ता है, दुख लगता है. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों कैप्टन्स की इंटरव्यू सुन के कि जैसे जैसे उन्होंने इनकरेजिंग वर्ड्स बोले हैं.
3: एंड क्विक थैंक यू टू मोना एज वेल, एंड यू वुड आल्सो लाइक टू से समथिंग क्विकली.
5: जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा, और जैसे कि जो सर्वश्रेष्ठ टीमें थी वो फाइनल में पहुंची, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया.
3: वैशाली,
6: एज यू सेड कि यंग्स जो भी यंगस्टर्स आएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, एंड इससे देख के काफ़ी लड़कियां और क्रिकेट खेलें एंड उस तरीके का कंपटीशन और बेटर हो. मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स और खेलें, क्रिकेट खेलें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन. एंड थैंक यू सो मच फॉर टू यू एंड मनीष जी, आपको भी.
3: No, actually, we have to thank our experts for being so gracious and always here to help us, guide us, and help the cricket overall. And I would like to thank Chetan Sharma for joining us in the studio.
4: Thank you.
3: Your presence is always magnanimous. And thank you so much, Mona Parthasarathy. Your wisdom, your knowledge brings a monumental gain to us. And Vaishali Mathur, you have been an addition to the cricket and, of course, to the studio. Thank you so very much for joining.
6: Thank you.
3: My friend Munish Jolly, it is always a pleasure having you. Why are you so quiet? Suddenly you're sleepy?
7: थैंक यू सो मच जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं. लेकिन वैशाली, जो बात आपने की उसको आगे बढ़ाते हुए, इस प्रोग्राम का समापन हम कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ प्लेयर. आई थिंक आकाशवाणी लुक्स फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ यंग टैलेंटेड वुमेन, द लेडीज, द गर्ल्स टू कम एंड बिकम स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर्स. एंड थैंक यू सो मच. और इससे पहले कि हम लोग जाएं, हमारी जो टेक्निकल टीम है, मनोज कुमार, सुशील कुमार, संजय कोटनाला जो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करते रहते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं स्वाति कपूर, अमीशा पटेल, तन्मय पंत, और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, आप सब तक ये प्रसारण बहुत मेहनत मशक्कत के साथ लेकर आए हैं. आशा करते हैं ये प्रसारण, सजीव प्रसारण, लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप सभी को पसंद आई होगी.
3: जी, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट यू मेड द वर्ल्ड कप फाइनल अलाइव फॉर ऑल आवर लिसनर्स एज वेल एज अस. सो थैंक यू सो वेरी मच. दिस इज गीतांजलि, Munish and all the team from Akashwani saying keep on enjoying cricket. Thank you for joining us.
8: Player of the match.
9: Scarlever.
10: नाही गाई, डोकं खूप दुखतंय माझं. देतेस चहा?
9: देते हैं राजा.
11: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर.

अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। सुबह 5:55 पर अपनी पहली सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।